100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि शक संवत 1948 तदनुसार 16 जून 2026 दिन मंगलवार प्रातः के 5:55 हुए हैं और अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

नव ऊर्जा, नव सृष्टि सृजन, नव हो उमंग, पवित्र हो मन। नित्य नव दिवस का शुभारंभ भक्ति भाव की पुष्पांजलि।

नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं स्वेच्छा श्रद्धा भक्ति और संगीत कार्यक्रम पुष्पांजलि में, जहाँ हम भजनों के माध्यम से अपने आराध्य को नमन करते हैं और मन के भाव ईश्वर के चरणों में अर्पित करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की वंदना के साथ।

विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश जी बुद्धि विवेक और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं, जिनके डमरू की नाद में जिनकी कृपा से हर शुभ कार्य का आरंभ होता है और जीवन की हर बाधा सरल हो जाती है।

सृजन और संहार दोनों के स्वामी देवों के देव महादेव, जिनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित होती है और जिनके डमरू की नाद में संपूर्ण सृष्टि की लय समाई है। वो जो हमें भक्ति में धैर्य, वैराग्य और आत्मबल प्रदान करते हैं।

मर्यादा, सत्य और आदर्श के प्रतीक, जिनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर कैसे चला जाए। प्रभु श्री राम, जिनके नाम में वो शक्ति है जो मन को स्थिर करती है और जीवन को दिशा देती है।

जब जब प्रभु श्री राम जी का नाम आता है तो एक अद्भुत प्रसंग हनुमान जी से जुड़ा भी जरूर याद आ जाता है। हम अक्सर वक्त और हालातों का बहाना बनाकर हार मान लेते हैं, लेकिन संकट मोचन हनुमान जी की आज की कहानी हमें सिखाती है कि जब आपके इरादे पक्के हों तो खुद वक्त भी आपके सामने झुक जाता है। बात तब की है जब लक्ष्मण जी रणभूमि में मूर्छित थे। प्रकृति का नियम था कि यदि सूर्योदय हो गया तो उनके प्राण चले जाएंगे। उनके प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर पूरा पर्वत उठाकर आकाश मार्ग से लौट रहे थे। तभी रास्ते में सूर्यदेव उदय होने की तैयारी में थे। हनुमान जी ने उनसे रुकने की प्रार्थना की, लेकिन सूर्यदेव भी प्रकृति के नियम से बंधे थे। तब हनुमान जी ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने अपने भाइयों और प्रभु श्री राम जी के प्रति कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा और अपनी असीम शक्ति से सूर्यदेव की गति को ही थाम दिया। उन्होंने समय की रफ्तार तब तक रोके रखा जब तक कि वो सही वक्त पर लक्ष्मण जी के पास नहीं पहुंच गए। हनुमान जी के सामने समय की बहुत बड़ी पाबंदी थी, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय रास्ता निकाला। और जब आपका संकल्प बड़ा होता है तो मुश्किलें छोटी हो जाती हैं। तो अगली बार जब जिंदगी में लगे कि वक्त कम है और मुश्किलें बहुत ज्यादा, तो डरिएगा नहीं, अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत कर लीजिएगा कि मुश्किलें खुद ब खुद पीछे छूट जाएं।

6:44 का वक्त, प्रातःकाल के इस भक्ति संगीत कार्यक्रम पुष्पांजलि में आज आपके साथ मैं हूँ स्वेच्छा।

एक ऐसा प्रेम जो भक्ति बन गया, राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम, जहां राधा पूर्ण समर्पण है और कृष्ण स्वयं ईश्वर। बांसुरी की मधुर तान और प्रेम के रास में ठूपी ये भक्ति हमें सिखाती है कि ईश्वर से जुड़ाव प्रेम के माध्यम से ही संभव है। तो आइए राधा कृष्ण भक्ति के रंग में स्वयं को रंग लें इस भजन के माध्यम से।

0: 6:55 का वक्त हो गया है और इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ आज की पुष्पांजलि को हम यहीं पूर्ण करते हैं। ज्येष्ठ माह का ये पावन महीना और बड़ा मंगल का आज का दिन आप सभी का शुभ हो, इसी भावना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। न्यूज ब्रेक के उस पार होगी आप सभी से एक बार फिर से मुलाकात कार्यक्रम सदाबहार गीत के साथ।
1: भजन
2: भक्ति में लीन तुम रहे।

नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। कल से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी कमर्शियल फ्लाइट प्रारंभ की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का दिन जेवर जनपद गौतम बुद्ध नगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण प्रदेश के साथ साथ देश के एविएशन सेक्टर के लिए भी ऐतिहासिक है। इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण में प्रधानमंत्री की प्रेरणा और अन्नदाता किसानों का योगदान है। डबल इंजन सरकार जो बोलती है वो करती है, जितना बोलती है उतना करके रहती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का ये अभियान निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। मुख्यमंत्री कल अपने सरकारी आवास पर हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि समर्पित करने वाले अन्नदाता किसानों से संवाद के दौरान अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में कहा कि सोशल मीडिया क्रिएटर समाज में केवल कंटेंट निर्माता नहीं बल्कि ओपिनियन मेकर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्रिएटर्स उत्तर प्रदेश की सफलता की कहानियों को देश दुनिया तक पहुंचाएं। एक सकारात्मक कंटेंट किसी महिला उद्यमी, स्टार्टअप, किसान, कारीगर या स्ट्रीट वेंडर के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स समाज को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि न्यूज को न्यूज के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, व्यूज के लिए नहीं। सत्य के साथ चलने का साहस ही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उनके वक्तव्य के से कांग्रेस का तानाशाही चरित्र एक बार फिर उजागर हुआ है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि अशोक गहलोत का बयान इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस का इतिहास राजनीतिक विरोधियों को कुचलने तथा हिंदू समाज की भावनाओं और आवाज को दबाने का रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी जड़ों, सनातन संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों से विमुख होने का परिणाम ही कांग्रेस का निरंतर राजनीतिक पतन है। उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विंड प्रोक्योरमेंट चैंपियन सम्मान प्राप्त किया है। ये सम्मान कल गोवा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के ग्लोबल विंड डे 2026 कार्यक्रम में पवन ऊर्जा की खरीद एवं उसके प्रोत्साहन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया। प्रदेश में टीवी रोगों की पहचान, उनकी जांच व इलाज में पूर्वांचल के आजमगढ़, जौनपुर, बस्ती, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर जिले दूसरे जिले से बहुत पीछे हो गए हैं। इन जिलों में 36% लोगों की जाँच हुई है, जबकि इन्हें उच्च जोखिम वाला माना जाता है। इन जिलों में के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को 18 दिन के अंदर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन अखबारों की सुर्खियों के साथ 9 बजे

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

नमस्कार सुप्रभात, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं स्वेच्छा सदाबहार गीत के इस सफर में, जहाँ हर गीत किसी न किसी याद से जुड़ा है और ये याद है सदाबहार गीत की। वो मंच जहाँ पुराने नगमे आज भी नए लगते हैं और संगीत सिर्फ सुना नहीं महसूस भी किया जाता है।

प्यार हमेशा बड़ी बड़ी बातों में नहीं होता, कभी कभी वो पुराने गानों की तरह चुपचाप दिल में उतर जाता है। एक ही धुन, एक ही बोल, और हर बार सुनने पर वही प्यार किसी नए एहसास के साथ सामने आ जाता है। शायद इसीलिए पुराने गानों में बसने वाला प्यार कभी पुराना नहीं होता,

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
3: पुरानी जींस और गिटार
2: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर।

0: हवा।
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर, तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

कुछ रिश्ते वक्त के साथ छूट जाते हैं, पर उनकी खुशबू पुराने गानों की तरह जिंदगी भर साथ रहती है। जब भी वही धुन कानों में पड़ती है तो दिल बिना पूछे उस मोड़ पर लौट जाता है जहां प्यार मासूम था और एहसास सच्चे हुआ करते थे।

0: शहर आपका, धुन आपकी। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: Got a great
2: सात बजकर 33 मिनट का वक्त, मैं हूँ स्वेच्छा आप सभी के साथ और आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत।

इन पुराने दौर के गानों से याद आता है ना एक वक्त जब पूरा परिवार एक साथ एक रेडियो सेट के साथ बैठकर गाने सुना करता था।

और जब कोई लता दीदी या रफी साहब का गाना बजता तो जैसे सारा माहौल रुमानी हो जाता था। और वो एहसास आज भी जिंदा है इन्हीं गानों के जरिए, एक प्यारा सा ट्रैक लता जी और रफी साहब की मीठी आवाज के साथ।

0: हर गाने के पीछे एक कहानी होती है, और जब वो गीत किसी अपने की याद से जुड़ जाए तो वो और भी अमर हो जाता है। मोहब्बत सिर्फ इजहार का नाम नहीं, एहसास का नाम भी है। और ये गाने ही उन खामोश जज्बातों की जुबान है।
1: कुछ हुआ क्या?

प्यार जब सच्चा होता है तो वक्त की धूल भी उसे ढक नहीं पाती, और जैसे हमारे पुराने नगमे जो बरसों बाद भी उसी मासूमियत से दिल को छू जाते हैं। और अब आज के सफर को यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है आज के गीत आपके मन को सुकून दे गए होंगे और किसी अपने की याद को फिर से जगा गए होंगे। वक्त हो गया है 7:53 और ठीक 8 बजे आप सुनेंगे समाचार हिंदी में, जो कि रिले किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। और ठीक 8:15 होगी हमारी आपकी मुलाकात एक बार फिर से कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ के साथ। तो आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि हम भी कहीं नहीं जा रहे हैं। मिलेंगे फिर यहीं पर 100.7 FM रेनबो पर। सुनते रहिए और आज के कार्यक्रम सदाबहार गीत का ये आखिरी गाना

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज़ जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
3: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
2: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और

0: संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स एट AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक हाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्करे तैयबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है। उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए

0: जाएंगे। समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जल डमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति इस समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा। वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेटनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च

सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हुर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत। सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
1: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
0: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात।
1: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ।
0: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल, सांस्कृतिक गतिविधियां और सेहत का ख्याल, अखबारों की सुर्खियां और देश दुनिया के समाचार,
1: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान। द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो,
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: जी 8:16 का वक्त, गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम शुरू हो चुका है और आपके दो दोस्त भी हाजिर हो चुके हैं। मैं हूँ स्वेच्छा और हमारे साथ एक और आवाज जुड़ चुकी है।
3: जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग स्वेच्छा, कैसी हैं आप?
2: बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
3: मैं बहुत अच्छा हूँ और जब मैं आज आया तो आज का माहौल देख के वाकई में बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को आनंद हुआ और मन को एक शांति भी हुई, क्योंकि जहाँ जहाँ मंदिरों में मैंने भीड़ देखी, सब अपने प्रभु आराध्य के आशीर्वाद पाने के लिए, उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए लगातार कतारों में लगे हुए हैं और बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ दर्शन कर रहे हैं।
2: बिल्कुल, आज का दिन बेहद खास है, बड़ा मंगल है, ज्येष्ठ माँ का बड़ा मंगल है, तो भाई हर तरफ आज कहते नहीं कि आज का दिन एक ऐसा दिन है जब कोई खाली पेट नहीं सोता।
3: बिल्कुल, और भंडारों की जो तैयारी हो रही है बहुत जोर शोर से हो रही है, चारों तरफ हो रही है और बहुत दिल से लोग बहुत मन से लगे हुए हैं कि अपने जो भक्त आएंगे उनको हम प्रसाद वितरण करेंगे, उनको देंगे। और वाकई में दोस्तों आज का ये जो सातवां बड़ा मंगल है ज्येष्ठ माह का, बहुत ही पावन और बहुत ही हर्ष वाला है, क्योंकि हर तरफ एक जोश और एक उत्साह देखने को मिल रहा है।
2: जी, तो बस इन्हीं ढेर सारी बातों के साथ गुड मॉर्निंग लखनऊ का सफर शुरुआत करते हैं। एक प्यारा सा ट्रैक आप सभी के लिए आ रहा है,
3: तो बस हमारे साथ यहीं जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन
2: लखनऊ की।
3: लखनऊ की।

0: और वाकई में दोस्तों आपसे मिलके जो दिल का हाल है वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है और भी ज्यादा खुशनुमा ये दिल हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है जब आपसे मुलाकात होती है, आपसे ढेर सारी बातें होती हैं, वो एक्साइटमेंट है। अच्छा वाकई में बहुत अच्छा लगता है ना
1: हमारे साथ, क्योंकि हमारे लिसनर्स भी इतने अच्छे हैं, वो हमारे साथ सवेरे से जुड़ जाते हैं और हमें इतने सारे मेल्स करते हैं, हमारे साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, तो भाई आपसे मिलकर हमें भी बहुत खुशी होती है।
0: तो इस खुशी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और 8:23 का समय और अब ये समय इशारा कर रहा है
2: आज का मॉर्निंग मंत्र। मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र।
0: तो स्वेच्छा आज का मॉर्निंग मंत्र क्या कह रहा है, प्लीज बताइए।
1: आज का मॉर्निंग मंत्र हमसे कहता है कि आज थोड़ा रुकिए, खुद से जुड़िए, अपने मन को सुनिए, क्योंकि अगर मन शांत है तो जिंदगी की हर मुश्किल आसान लगने लगती है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और वाकई में दोस्तों ये पॉजिटिव वाली बातें दिन को पूरी तरह से पूरी पॉजिटिविटी के साथ भर देती हैं। तो आज के अपने इस दिन की करिए खूब

0: 8:30 और 7:58 हो, ये लीजिए हो गया है 8:31 का समय। आप अपनी घड़ियां मिला सकते हैं अगर आप अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं तो, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है ये। और अब समय हो चुका है कि आज के मुद्दे को भी हम आप तक जरूर पहुंचा दें, क्योंकि कभी कभी स्वेच्छा लोगों की शिकायत होती है कि मुद्दा थोड़ा देर में पहुंचता है और लोग सुन नहीं पाते हैं और इस वजह से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि आप जो हम आपको मुद्दा दें उसमें आप पूरी तरह से शामिल हों, अपने विचार हम तक पूरी तरह से पहुंचाएं। तो आज का मुद्दा क्या है आपको स्वेच्छा बताने वाले
1: जी, आज का मुद्दा ये है आप सभी से कि आपके मुताबिक हमारी सोसाइटी में वो कौन से अनकहे संघर्ष हैं। अनकहे संघर्ष की हम बात करें तो लोग क्या कहेंगे, या फिर सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, या हमें मजबूत बन के रहना चाहिए। कुछ ऐसे संघर्ष हैं जो हर कोई झेलता है, हर किसी कोई इनसे गुजरता है, लेकिन सब महसूस तो करते हैं पर इस पर बात कोई नहीं करता। तो वो कौन से ऐसे अनकहे संघर्ष हैं, आप हमारे साथ शेयर करिए, अपनी बात हमारे साथ शेयर करिए और उस पर आपकी क्या राय है वो भी आप हमारे साथ शेयर करिए।
0: बिल्कुल बताइए, हमें आपकी मेल्स का इंतजार रहेगा और मेल्स का इंतजार तब रहेगा जब आप हमें मेल्स भेजेंगे, और मेल्स भेजने के लिए आपको हमारी प्यारी सी मेल आईडी का पता होना बहुत जरूरी है। हमारी मेल आईडी fmakashwani@gmail.com। इस मेल आईडी के माध्यम से आज आप हमारे साथ जुड़े और आज के मुद्दे पर अपने विचार हम तक पहुंचाएं। हमें आपकी मेल्स का इंतजार है और आपकी भेजी गई मेल्स को हम अपने लिसनर्स तक जरूर पहुंचाएंगे, ये हमारा आपसे पूरी तरह से वादा है। बस आप हमारे साथ ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: वाकई में दोस्तों आपसे मिलना, आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है. और जब इतने प्यारे प्यारे दोस्त होते हैं तो कुछ ना कुछ तो सूझ ही आता है कि क्या बताना है, क्या बात करनी है, क्या कहना है. सब कुछ एक एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता है, बहुत अच्छा लगता है. और हमारे शहर लखनऊ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें एक्साइटमेंट से पूरी तरह से भर देती हैं.
1: बिल्कुल हर रोज़ कुछ ना कुछ शहर में खास ज़रूर होता है और आज का दिन ही बहुत खास है. फिलहाल आप सभी को आपके शहर से जुड़ी कुछ खबरें बता दें तो जो स्टूडेंट्स से रिलेटेड खबर है कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय और भाषा विश्वविद्यालय में स्नातक और परास्नातक में एडमिशन लेना चाहते हैं UG या PG में, तो उनके लिए जो आवेदन की तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है. अब यूजी और यूजी प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट जो है वो 15 जून से 22 जून कर दी गई है. वहीं पीजी और पीजी प्रोफेशनल कार्यक्रमों के लिए आवेदन की लास्ट डेट 15 जून से 22 जून कर दी गई है. और साथ ही अब CUET यूजी मेरिट से आप बी फार्मा में भी प्रवेश ले सकेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय में. तो आप इसके लिए वेबसाइट पर जाकर, आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर दें और आप इस प्रक्रिया में 15 जून से अब ये डेट जो है बढ़ा के 30 जून कर दी गई, तो 30 जून तक आप जरूर कर लें.
0: बिल्कुल. और इसी के साथ दोस्तों लखनऊ विश्वविद्यालय ने केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया में कॉलेजों को जुड़ने के लिए अब 20 जून का जो समय है, 20 जून तक का समय वो बढ़ा दिया है. और इसकी विस्तृत जानकारी भी आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं. तो इस तरह की चीज़ें और बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो हमारे लिए, हमारे अभ्यर्थियों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम ज़रूर आप तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं. वहीं दोस्तों अटल बिहारी

0: अजपई नगर निगम डिग्री कॉलेज में संचालित बीए और बीकॉम पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने की भी अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित कर दी गई है। तो अगर आप इस कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप के पास अभी समय है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बीकॉम में 88 सीटों पर 12वीं की मेरिट से प्रवेश होंगे और आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो ₹200 आवेदन शुल्क रखा गया है
1: जी। और लखनऊ विश्वविद्यालय में ही MSc माइक्रो बायोलॉजी और MSc बायो केमिस्ट्री के परिणाम की भी घोषणा कर दी गई है, साथ ही MA वेस्टर्न हिस्ट्री और MA ज्योतिर्विज्ञान का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। तो आप सभी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए।
0: 8:40 का समय प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपके दो दोस्त रतन और स्वेच्छा आपके साथ, और आपका ये प्यारा सा साथ हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। बस आप हमारे साथ इसी प्यार के साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: तुमसा कोई दूसरा इस समय पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
1: जय दोस्तों, 8:45 का समय, आपके दो दोस्त आपके साथ जुड़े हुए हैं, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग लखनऊ, और इस प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं आपके अपने प्यारे से चैनल 100.7 एफएम रेनबो पर। और जिन लोगों ने अभी भी इसे ट्यून इन किया है, बता दें आपके दो दोस्त रतन और स्वेच्छा आपके साथ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी जानकारियों की, तो जानकारियाँ तो हमारे पास बहुत सारी हैं जो आपको देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं।
2: बिल्कुल, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ बहुत बढ़िया सा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम चल रहा है आपके बीच, और इसी एक और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी के साथ रतन जी आप सभी के बीच लाए हुए हैं। इसको आइए आप सभी सुनिए और इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा
1: दोस्तों, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा मुद्दा है जो कि बहुत ज्यादा महत्व रखता है हम सब के लिए, जहां जानकारियां और भी चीज़ों की होनी चाहिए कि हमें अवेयर होना चाहिए हर चीज़ के लिए, वहीं हमारी जो हेल्थ वाला मुद्दा है उसके लिए भी हमें अवेयर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और आम तौर पर दोस्तों, अगर बात करें तो, अगर फेफड़ों की बात करें तो फेफड़ों के संक्रमण का कारण जो माना जाता है वो माइकोप्लाज्मा निमोनिया, जो कि कुछ मामलों में दिमाग और तंत्रिका तंत्र को भी पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है। और इसमें मरीज का चलने फिरने में दिमाग चलने फिरने में जो चलना फिरना है उसका, उसके कारण वो पूरी तरह से डगमगा सकता है। शरीर में अचानक झटके आ सकते हैं और आँखों की हरकतें भी असामान्य हो सकती हैं। और ये भी इसकी जानकारी आई है कि अगर समय रहते इस बीमारी का इलाज कर लिया जाए तो इसका इलाज पूरी तरह से संभव है, और जो पीड़ित है, जो संक्रमित व्यक्ति है, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है। ये एक शोध किया गया, और ये शोध मूवमेंट डिसऑर्डर क्लिनिकल प्रैक्टिस मेडिकल जर्नल में प्रकाशित भी किया गया। और वहाँ पर ये जो शोध किया गया उसमें कुछ जो बातें हैं वो निकल के आई, और ये शोध किस तरह से हुआ वो भी हम आपको बताएंगे।
2: 42 मरीजों के मामलों का इसमें विश्लेषण किया गया था, जिसमें 69% मरीजों में पहले फेफड़ों का संक्रमण मिला, और सबसे ज्यादा मामले सेरिबेलर एक्टेक्सिया के पाए गए, जिसमें 83.4% मरीज पूरी तरह और लगभग पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं। और इसमें यह भी पाया गया है कि माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया के बाद दिमाग और नसों पर भी इसका असर पड़ सकता है।
1: तो दोस्तों, कोई भी ऐसी बीमारी होती है जो कि हमें लगती है, उसकी अगर हम बात करें कि जो इसकी लक्षण है, प्रारंभ ये कैसे होती है, तो अक्सर होता है कि इससे जो ये बीमारी जब फैलती है या फिर इस तरह का जब संक्रमण होता है, तो इसका जो प्रारंभ होता है, जो स्टार्टिंग होती है, वो होती है कि आपके पहले सर्दी होगी, फिर खांसी या फेफड़ों में संक्रमण के लक्षण धीरे धीरे मिलेंगे, और यही लक्षण धीरे धीरे एक विकराल रूप ले लेते हैं जो कि आप आगे चलकर फेफड़ों का एक बहुत ही गंभीर संक्रमण रूप ले लेता है। तो अगर आप अवेयर हैं इस तरह की चीज़ों से, और कभी भी आपको कोई ऐसी समस्या होती है कि आपको लगता है कि आपको सर्दी है, जुकाम है, तो उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, बहुत गंभीरता से लेना है कि कब वो जो आपकी छोटी सी खांसी है या सर्दी या जुकाम है वो कितना विकराल रूप ले सकता है, ये शोध हमें बताता है। तो अपने आप को अवेयर रखिए, अपने आसपास के लोगों को पूरी तरह से जागरूक बनाइए, हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, सुनते रहिए आपका अपना प्यारा सा शो गुड मॉर्निंग लखनऊ।

0: 8:55 का समय, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। और दोस्तों, आपकी बहुत सारी मेल्स आ गई हैं सुबह से ही हमारे पास, और सुबह 7 बजे से, यानी कि जब स्वेच्छा प्रोग्राम कर रही थी उसी वक्त से बहुत सारी मेल्स पहुंच रही हैं, और आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इससे पता चलता है कि आप कितना प्यार हमें करते हैं। थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए। और हमारे पास सोनू परवाना साहब की मेल पहुंची है, कह रहे हैं बड़े मंगल की बहुत शुभकामना। बुद्धिहीन तनुजान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हर हो कलेश विकार। हे हनुमान पुत्र, हे पवन पुत्र हनुमान, मैं स्वयं को शरीरधारी और बुद्धिहीन मानकर आपका स्मरण करता हूँ। आप मुझे बल बुद्धि और ज्ञान का वरदान दीजिए और मेरे सभी शारीरिक मानसिक दुखों व कष्टों को नष्ट कर दीजिए। तो ये तो आपने मांग ली दुआ, और प्रभु जरूर आप पर, हम सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें। लेकिन आज के मुद्दे पर आपने अपनी बात हम तक नहीं पहुंचाई है, तो अभी समय आपके पास, जरूर अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं।
1: जी, घनश्याम सिंह जी भी हमें लिखकर भेजते हैं, पुष्पांजलि और सदाबहार गीत सुनकर बहुत अच्छा लगा, आनंदमय हो गया मन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और गीता सेठ भी हम ये लिखकर भेजती हैं कि जिंदगी में हमें ये सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल डालो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल होता है।
0: बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात। और तालिब अंसारी जी की भी मेल हम तक पहुंची है, इन्होंने हमें गुड मॉर्निंग भेजा है, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग। और ये राजा कटरा बाराबंकी से इनकी मेल आई है, लेकिन मुद्दे पर कोई बात इन्होंने नहीं पहुंचाई है। गुलफ्सा सिद्दीकी की भी मेल हम तक पहुंची है, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे रतन भाई, मैं गुलफ्सा सिद्दीकी, संडीला से, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और एक नंबर, गाने तो एक नंबर के लग रहे हैं, मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच। बस हम यही तो चाहते हैं कि जो भी आप सुने वो आपको आनंदित करे, आपको खुश करे, आपको दिल को सुकून पहुंचाए।
1: जी, और एक बार मुद्दा हम आप सभी के बीच फिर से दोहरा देना चाहते हैं। मुद्दा ये है कि आपके मुताबिक हमारी सोसाइटी में वो कौन से अनकहे संघर्ष हैं जिसे सब महसूस तो करते हैं पर उस पर कोई बात नहीं करता, जैसे कि अब चार लोग क्या कहेंगे, या फिर आपका मजबूत होना ही जरूरी है, या फिर हमारी लाइफ परफेक्ट क्यों नहीं है। हमें ऐसे मुद्दे जिन पर, जो हमारे समाज में है तो, पर उस पर कोई बात नहीं करता, आज हम इस पर बात करेंगे। आपके क्या विचार हैं, हमें लिख भेजिए हमारी मेल आईडी पर fmakashwanilakhnau@gmail.com।
0: तो 8:57 का समय हो चुका है, और यह समय हमें इशारा कर रहा है कि गुड मॉर्निंग लखनऊ के पहले घंटे को हम यहाँ पर विराम दें, और जब तक हम इस घंटे को विराम नहीं देंगे तब तक अगले घंटे में आपसे मुलाकात कैसे करेंगे। तो बस एक न्यूज ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं आपके अपने प्यारे से शो गुड मॉर्निंग लखनऊ के सेकंड हाफ पर। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, प्रातः के ठीक 9 बज चुके हैं। अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। पश्चिम एशिया में महीनों से जारी तनाव के बीच कल अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने के लिए प्रस्तावित समझौता मसौदे पर सहमति बना ली है। लखनऊ से प्रकाशित सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने आज इसी खबर को अपनी हेडलाइन बनाया है। समाचार पत्र हिंदुस्तान ने इस खबर पर शीर्षक दिया, उम्मीद शुक्रवार से शांति की घर वापसी। समाचार पत्र दैनिक जागरण ने लिखा, अमेरिका ईरान में शांति समझौता। अमर उजाला इस खबर पर लिखता है, अमेरिका ईरान में युद्ध विराम करार, हुर्मुज जलमार्ग खुलेगा, इसराइल नहीं मानेगा समझौता। नवभारत टाइम्स इस पर लिखता है, यूएस ईरान में शांति समझौता। अमृत विचार ने इस खबर पर शीर्षक दिया है, अमेरिका ईरान में शांति समझौता, खुल गया हुर्मुज। और समाचार पत्र स्वतंत्र भारत लिखता है, पश्चिम एशिया संघर्ष खत्म, अमेरिका ईरान में समझौते के बाद हुर्मुज से जहाज की आवाजाही सामान्य होने से भारत जैसे दुनिया के बड़े कच्चे तेल आयातक देश को बड़ी राहत मिल सकती है। इस खबर को समाचार पत्र अमर उजाला ने प्रमुखता से स्थान दिया, जिस पर अखबार ने लिखा, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। समझौते की घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 5% गिरावट दर्ज की गई है। इस खबर पर अखबार ने लिखा, कच्चे तेल की कीमतों में 5% की गिरावट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला MRO केंद्र बनने जा रहा है। समाचार पत्र हिंदुस्तान ने इस खबर को प्रमुखता से स्थान दिया, जिस पर अखबार ने शीर्षक दिया, अब कुबेर भी आना चाहते हैं जेवर योगी। समाचार पत्र अमृत विचार ने इस खबर पर लिखा, जेवर एयरपोर्ट से उड़ाने शुरू, योगी बोले अब यहां आना चाहते हैं कुबेर। नवभारत टाइम्स ने इस खबर पर लिखा, अब कुबेर भी आना चाहते हैं जेवर योगी। दैनिक जागरण ने लिखा, नोएडा एयरपोर्ट की उड़ान, श्री राम मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर मामले में प्रदेश सरकार की ओर से गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सोमवार दोपहर से जांच शुरू कर दी। इस खबर पर समाचार पत्र हिंदुस्तान ने लिखा, SIT ने शुरू की राम मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर मामले की जांच। नवभारत टाइम्स इस पर लिखता है, SIT ने 8 घंटे की पड़ताल, 42 लोगों से पूछताछ। स्वतंत्र भारत ने इस पर लिखा, अयोध्या में ट्रस्ट के संदिग्ध कर्मचारियों से SIT ने की 6 घंटे पूछताछ। अमृत विचार इस पर लिखता है, SIT ने ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेज जांचे, धन राशि का रिकॉर्ड किया तलब, परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपद तबादले को लेकर आवेदन हर हाल में 20 जून तक भेजने के निर्देश दिए गए हैं। समाचार पत्र हिंदुस्तान ने इस खबर पर लिखा, बेसिक शिक्षकों के तबादले के लिए 20 जून तक आवेदन। भारत और स्लोवाकिया ने सोमवार को अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया। इस खबर को समाचार पत्र अमृत विचार ने प्रमुखता से स्थान दिया, जिस पर अखबार ने लिखा, भारत स्लोवाकिया में 11 समझौते, रक्षा क्षेत्र में देंगे सहयोग। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रीलिम्स 2026 का परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया। इसमें 13,343 उम्मीदवार सफल हुए। इस खबर को समाचार पत्र दैनिक जागरण ने प्रमुखता से स्थान दिया, जिस पर अखबार ने शीर्षक दिया, सिविल सेवा प्रीलिम्स का परिणाम जारी, 13,343 उम्मीदवार सफल। जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले नरेंद्र मोदी कैबिनेट में बड़े बदलाव की संभावना प्रबल हो गई है। इस खबर पर दैनिक जागरण ने लिखा, तृणमूल के बागी सुदीप व शर्मिला को मोदी कैबिनेट में जगह संभव। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए FM रेन।

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो।
1: नौ बजकर 4 मिनट का समय और ये लीजिए 56, 57, 58, 59 और हो गया 9:05 का समय। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ और गुड मॉर्निंग लखनऊ के सेकंड हाफ पर मैं रतन और मेरे साथ हैं
2: स्वेच्छा आप सभी के बीच। और भाई ये इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का जो प्रोग्राम है ना, ये बड़े ही अच्छे से जोरों जोरों से चल रहा है क्योंकि आप सभी के मेल्स हमारे पास सामने आ रहे हैं। इतने प्यारे प्यारे आप हमें मेल्स कर रहे हैं। अब मुद्दे पर बात भी आप लोगों ने लिखनी शुरू कर दी और बहुत सारे ऐसे मुद्दे पर मेल्स भी आ चुके हैं। एक बार मुद्दा हम उन सभी लोगों के लिए रिपीट कर देते हैं जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। मुद्दा आज का हमारा ये है कि आपके मुताबिक हमारे सोसाइटी में वो कौन से अनकहे संघर्ष हैं जिसे सब महसूस तो करते हैं पर कोई बात नहीं करता इस पर। हम सब सुबह सुबह तैयार होकर घर से निकलते हैं, एक प्यारी सी मुस्कान हमारे चेहरे पर होती है, लेकिन मन में हम कहीं ना कहीं अपनी लड़ाइयों से जूझ रहे होते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे संघर्ष हैं जो हमारे जीवन में चल रहे होते हैं, उस पर हम बात नहीं करते, किसी व्यक्ति से बात नहीं करते। पर अगर हम शांत बैठते हैं, कहीं कोने में खाली बैठते हैं या रात में सोते वक्त हमारे जो मन में लड़ाइयां चल रही होती है ना, उस पर हम कभी बात नहीं करते। तो बस इस पर ही आज हमें बात करनी है, यही हमारा आज का मुद्दा है।
1: खुलकर अपने विचारों को हम तक साझा कीजिए। हमारी मेल आईडी fmakashwani@gmail.com और इस मेल आईडी के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आज के मुद्दे पर अपने विचार अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल ये खूबसूरत सा गीत आप सबके लिए, आपके अपने प्यारे से शो गुड मॉर्निंग लखनऊ पर।

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ सिर्फ और सिर्फ 100.7 एफएम रेनबो पर।
1: जी दोस्तों, वक्त हो गया 9:11 और अब बारी है आप सभी के शहर से जुड़ी हुई ट्रैफिक अपडेट्स की। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन पर TSI विकास सिंह जी, जो कि बताएंगे हमारे शहर के ट्रैफिक का हाल।
2: वेरी गुड मॉर्निंग सर।
3: वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज वर्तमान में लखनऊ शहर में सभी जगह यातायात सामान्य गति से गतिमान है। अगर बात करें लखनऊ हरदोई मार्ग और उधर की, तो उधर छंदोइया की तरफ अगर देखें तो थोड़ा सा जो है यातायात का दबाव है दुबग्गा छंदोइया वाले मार्ग पर, और बाकी शहर में कहीं दबाव नहीं है। आज चूंकि बड़ा मंगल है और बड़े मंगल में जो है हमारे चार प्रमुख मंदिर हैं, जैसे कि अलीगंज में पंचमुखी हनुमान मंदिर तथा पुराने बड़े हनुमान मंदिर का मंदिर है, वहीं दूसरी तरफ अगर महानगर क्षेत्र की बात करें तो हनुमान सेतु जो हमारे हनुमान जी का बड़ा मंदिर है, और वहीं अगर चौक क्षेत्र की बात करा जाए तो हमारा हजरतगंज में आता है हनुमंत धाम। तो ये हमारे सबसे बड़े प्रमुख हनुमान मंदिर है जहाँ पर सर्वाधिक श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है, तो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर जो है श्रद्धालु आवागमन करते हैं। इस दौरान हम सुगम यातायात व्यवस्था के लिए यहाँ पर व्यवस्था बनाए हुए हैं। हनुमान सेतु के पास में जो हमारा पार्किंग स्थल है वो हनुमान सेतु के पीछे, और साथ ही कालविन तालुकेदार का जो ग्राउंड है वो हमने पार्किंग स्थल के रूप में चिन्हित किया है। वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो खेल ग्राउंड है वो भी पार्किंग स्थल के रूप में है, और अगर हनुमंत धाम की तरफ जा रहे हैं तो लक्ष्मण मेला मैदान हमारा पार्किंग स्थल है। तो अगर आप हनुमान जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपसे यही अनुरोध है कि अपने वाहनों को पार्किंग स्थल पे ही पार्क करें
1: जी।
3: रोड पर इधर उधर ना पार्क करें, अन्यथा लोगों को अनावश्यक रूप से इसमें असुविधा का सामना करना पड़ता है।
2: बिल्कुल सर।
3: साथ ही जो है आज बड़े मंगल के अवसर पर जगह जगह भंडारा रहेंगे, जिसके लिए हम पर्याप्त यातायात पुलिस, नागरिक पुलिस बल की व्यवस्था करके, रेसर मोबाइल आदि लगा करके पूरी तन्मयता से जो है सुगम संचालन कराएंगे। बस अनुरोध है आयोजकों से कि कृपया जो है रोड से हटकर थोड़ा सा साइड में, और साथ ही यदि आप ट्रैफिक वॉलंटियर लगा देंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो और बस यही अनुरोध है कि यातायात नियमों को पालन करें, सुरक्षित रहें और एंजॉय के साथ सुनते रहें 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: क्या बात सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका।
3: जी धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, विकास सिंह सर ने तो बता दिया कि भाई अगर आपको भंडारे आयोजित करने हैं तो बहुत प्रेम के साथ आयोजित कीजिए, लेकिन अगर आप ट्रैफिक वॉलंटियर्स लगा देते हैं तो थोड़ा सा पुलिस विभाग और यातायात विभाग को भी आसानी हो जाती है। तो बिल्कुल आप अपने कार्य को जिस तरह से संपन्न कर

0: हैं, बहुत खुशी के साथ और बहुत हर्ष के साथ संपन्न कीजिए, लेकिन ट्रैफिक रूल्स का पालन भी पूरी तरह से करवाइए जहां पर भी इस तरह के भंडारों का आयोजन हो रहा है, और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए ताकि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आम लोगों को परेशानी ना दे सकें और दोनों ही तरफ शांति का माहौल रहे और आराम से लोग सुगम यात्रा कर सकें। ट्रैफिक रूल्स का पालन करते रहिए और इसी प्यार के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, और इसी के साथ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक भी हम जरूर लेंगे और उसके बाद जब लौटेंगे तो एक प्यारा सा गीत भी
1: जी बिल्कुल आप सभी
0: बिल्कुल तैयार कर रखा है वो आपके लिए हम प्ले करेंगे। तो अभी ये ब्रेक आपके लिए।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
1: नमस्कार, 21 मिनट का समय, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपके दो दोस्त शिक्षा और रतन आपके साथ। और दोस्तों, आज है 16 जून। 16 जून अपने आप में बहुत खास ये दिन, और ये दिन इसलिए भी और भी खास हो जाता है कि आज कई ऐसे दिवस हैं जो कि आज के दिन को के महत्व को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इतिहास के पन्नों में तो ये दिन अपने आप में खास है, उसकी बातें भी हम अभी थोड़ी देर में आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन आज का दिन क्यों खास है वो आपको स्वेच्छा बताने वाली है।
2: जी, हर साल 16 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस आज है, और प्रवासी श्रमिकों द्वारा अपने परिवारों को भेजी जाने वाली आर्थिक सहायता, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं, इसके महत्व को ये दिन रेखांकित करता है।
1: दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ये दिवस प्रवासियों के योगदान और उनकी चुनौतियों को स्वीकार करता है। विश्व भर में 20 करोड़ से अधिक प्रवासी अपने परिवारों को रेमिटेंस यानी कि जो सहायता, आर्थिक सहायता है, वो भेजकर उनके जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं।
2: भारत विश्व का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश है, जहां 2023 में 125 अरब डॉलर से अधिक की रकम प्राप्त हुई, और ये दिन सस्ती और सुरक्षित मनी ट्रांसफर सेवाओं की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है।
1: तो दोस्तों, हम प्रवासियों के संघर्ष को सलाम करें और उनके आर्थिक योगदान को सम्मान दें। ये दिवस सस्ती और सुरक्षित मनी ट्रांसफर सेवाओं की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है। तो वाकई में ये एक बहुत बड़ा रोल है उन प्रवासियों का जो दूसरे देशों में रहकर अपने घर वालों की मदद करते हैं, उनकी आर्थिक सहायता करते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य की, उनकी शिक्षा की, उनकी देख रेख करते हैं। तो वाकई में बहुत बड़ा ये दिन, और हम सभी प्रवासियों के संघर्ष को सलाम करते हैं, उनके आर्थिक योगदान को सम्मान देते हैं।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
1: और वाकई में दोस्तों, हर दिन की खूबसूरत शुरुआत हम करते हैं आपके साथ यहाँ पे गुड मॉर्निंग लखनऊ के साथ, और उससे भी खूबसूरत शुरुआत होती है सुबह पुष्पांजलि के साथ, जब जिसको सुनकर आपका पूरा दिन बहुत ही खुशनुमा बन जाता है। और वाकई में बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के प्रोग्राम्स हमारे साथ आते हैं और उसमें आपका साथ होता है तो और भी अच्छा लगता है।
2: बिल्कुल। और अब आप सभी के लिए एक काम की खबर, और आप सभी को बता दें कि अभ्युदय कोचिंग जो है उसमें आवेदन की जो तिथि है उसको भी बढ़ा दिया गया है, 25 जून तक कर दिया गया है, और इसमें कक्षाएं जो है वो 1 जुलाई से चलाई जाएंगी।
1: जी हाँ दोस्तों, पहले ही जो तिथि रखी गई थी वो रखी गई थी 12 जून, लेकिन चूंकि आपकी सुविधा को देखते हुए ऐसा किया गया है तो बस 25 जून तक इसकी तारीख बढ़ा दी गई है। और यह भी बताया जा रहा है कि जो राजधानी में करीब 13 अभ्युदय केंद्रों पर ये जो परीक्षा है, ये कोचिंग जो है संचालित होंगी, जिसमें नए सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया जारी है। और इन केंद्रों पर अभ्यर्थी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए कई जो हमारे लखनऊ भर के कई कॉलेजेस हैं, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय के ONGC भवन

0: से आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल पीजी कॉलेज, कालीचरण कॉलेज, एपी सेन मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस महिला पीजी कॉलेज, भाषा विश्वविद्यालय खुनकुंजी गर्ल्स कॉलेज, महाराजा बिजली पासी कॉलेज इसमें शामिल हैं और यहाँ से आप आवेदन की प्रक्रिया कर सकते हैं। और अंतिम तिथि के बाद अगर आप प्रवेश चाहते हैं तो परीक्षा और मेरिट के आधार पर किया जाएगा। और जुलाई, जैसा कि आपने अभी स्वेच्छा ने आपको बताया कि जो परीक्षाएं, जो इसकी कक्षाएं हैं वो 1 जुलाई से प्रारंभ हो जाएंगी। तो बस आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आप वाकई में सिविल सेवा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करना चाहते हैं तो ये एक आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है।
1: बिल्कुल प्यारा सा ट्रैक, 9:30 का वक्त आप सभी के बीच।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: नमस्कार, 35 मिनट का समय, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। आपके दो दोस्त आपके साथ जुड़े हुए हैं, रतन और स्वेच्छा। और दोस्तों, आज 16 जून का ये दिन अपने आप में बहुत खास, बहुत सारी बातें अभी तक आपके पास पहुंच चुकी हैं आज के दिन से जुड़ी हुई, और भी कुछ बातें हैं जो हम आपको जरूर जरूर आप तक पहुँचाएंगे।
3: हर साल आज के दिन 16 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, वो है विश्व समुद्री कछुआ दिवस। और समुद्री कछुओं के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन समर्पित है।
2: दोस्तों, ये दिन विशेष रूप से समुद्री कछुओं के अस्तित्व को बचाने और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, पूरी तरह से जोर देता है, क्योंकि समुद्री कछुए पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं,
3: जो समुद्री घास के मैदानों और प्रवाल भित्तियों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। लेकिन प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, अवैध शिकार और मछली पकड़ने के जाल इनकी आबादी के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं।
2: और वाकई में दोस्तों, इस तरह की जब चीज़ें होती हैं जो प्रकृति का इतना अच्छा अगर पूरा संतुलन बनाने वाली चीज़ें हैं, बनाने वाले जीव जंतु हैं, और हम ही उनका कहीं ना कहीं कारण बनते हैं जब हम उनको नुकसान पहुंचाते हैं, और जो एक साइकिल बना हुआ है उसको हम डिस्टर्ब करते हैं, और उससे होता यह है कि आने वाले समय में जितनी भी सारी समस्याएं होती हैं प्रकृति से जुड़ी हुई, उनको फेस हमें ही करना पड़ता है। और भारत के तटीय क्षेत्रों, विशेषकर उड़ीसा के गहिर माथा समुद्र तट पर, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा ऑलिव रिडले कछुओं का प्रजनन स्थल है, वहां पर उनके संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं।
3: तो आइए हम सभी प्लास्टिक का उपयोग कम करके, समुद्र तटों को साफ रखकर और जागरूकता फैलाकर इन अद्भुत जीवों को बचाने में योगदान दें।
2: और वाकई में दोस्तों, इस तरह के जो दिवस हैं इसीलिए मनाए जाते हैं ताकि हमारा ध्यान अपनी आम जिंदगी से, आम बातों से हटकर थोड़ा सा उन विशेष बातों की तरफ भी जाए जहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा डायरेक्टली संबंध है इन सब चीज़ों से, और हम उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब बातों पर विशेष ध्यान दें, जागरूक बने, और अपने साथ साथ आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। प्रकृति का संरक्षण अगर करेंगे तो प्रकृति भी हमारा संरक्षण ज़रूर करेगी।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
3: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
4: जी हाँ दोस्तों, हर दिन की खूबसूरत शुरुआत तो हो ही चुकी है आपके साथ, हमारे साथ, और इस दिन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हमारे पास अगर मौसम की जानकारी होती है तो हमको कहीं भी आना जाना हो तो थोड़ा आसान हो जाता है। और इस गर्मी वाले मौसम में अगर मौसम की जानकारी सटीक मिल जाए तो फिर क्या कहने। और इसी मौसम की खास जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद दानिश सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग लखनऊ पर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। तो आज लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों का जो मौसम है वो कैसा रहने वाला है, प्लीज बताइए।
5: मौसम की बात करें तो जैसा कि मौसम साफ रहेगा, हालांकि हल्के हल्के बादलों की आवाज आ ही रहेगा क्योंकि थोड़ा सा ह्यूमिडिटी फैक्टर है, तो कहीं ना कहीं तापमान में उसमें बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी है उसकी वजह से गर्मी का एहसास काफी जारी है। ये सिलसिला आने वाले अगले 3-4 दिन बना रहेगा। हालांकि 18-19 तारीख से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं जो 4 दिन का है उसमें थोड़ा गर्मी का एहसास रहेगा, उमस वाली गर्मी रहेगी, तो थोड़ा सा एक तरीके से चिपचिपी टाइप की गर्मी रहेगी, थोड़ा सा हमको चुभन होगी। तो कुल मिला के 3-4 दिन हमको ख्याल रखने की आवश्यकता है, और उसके बाद फिर बादलों की आवाजाही के साथ तो छिटपुट वर्षा।

0: संभावना आने वाले अगले 4 दिन के बाद खत्म
1: होगा। क्या बात सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने इतनी मतलब गंभीर बात बताई कि 3-4 दिन तक हमें झेलना ही पड़ेगा गर्मी को, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी राहत हमें मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों दानिश हसन ने तो बता दिया कि अभी 3-4 दिन आपको चिपचिपी गर्मी का एहसास होगा और इस गर्मी में आपको बचाव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद कुछ जो डिस्टर्बेंस हैं उसकी वजह से थोड़ा मौसम में बदलाव होगा, हो सकता है छिटपुट बारिश भी हो, है ना?
2: बिल्कुल। और फिर से ये जो गर्मी से राहत आप सभी को मिलेगी, फिलहाल अभी एक प्यारे से ट्रैक से आपका मन ज़रूर खुश हो जाएगा।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
3: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।

0: जरूर पहुंचाएं, बस अपने दिन को खूबसूरत बनाते रहिए। और अब हम आपको ये भी बताएंगे कि आप किन के साथ अपना जन्मदिन शेयर कर रहे हैं। दोस्तों आज की लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जिनको जानकर आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, अरे मेरा जन्मदिन इनके साथ होता है तो आनंद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा, आज ही के दिन 1931 में इनका जन्म हुआ है। एक समर्पित शिक्षाविद और सामाजिक चिंतक थे जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज में जागरूकता और परिवर्तन लाने का कार्य किया।
1: और वे विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय संयोजक रहे और उनके नेतृत्व में देश के ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा का व्यापक विस्तार भी हुआ।
0: दोस्तों भारतीय मूल्यों से युक्त आधुनिक शिक्षा का प्रसार उनका मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने छात्रों में नैतिकता, आत्मनिर्भरता और सेवा भावना के बीज बोने का कार्य किया।
1: और उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2015 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया। और उनका जीवन शिक्षा, संस्कार और सेवा का एक आदर्श उदाहरण है।
0: तो दोस्तों आज आप इस महान शिक्षाविद के साथ अपना जन्मदिन शेयर करते हैं, हम इनकी जयंती पर इन्हें नमन करते हैं।
1: आज एक और बड़ा नाम जुड़ता है, हेमंत कुमार मुखोपाध्याय जी का। आज के दिन इनका जन्म हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश में और हिंदी फिल्म जगत के महान पार्श्व गायक और संगीतकार थे वे।
0: दोस्तों अगर बात करें हेमंत दा की तो इनको, हेमंत कुमार मुखोपाध्याय को हेमंत दा के नाम से भी जाना जाता था। उनके गीत आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं।
1: बांग्ला हिंदी फिल्म संगीत की जानी मानी शख्सियत हेमंत कुमार न सिर्फ मौसिकी के माहिर थे बल्कि बेहतरीन फिल्म निर्माता भी थे।
0: बांग्ला भाषा के अनेक गैर फिल्मी एल्बम को सुर देने वाले हेमंत कुमार ने कई मशहूर हिंदी गीतों को भी अपनी मधुर आवाज दी। इसके साथ ही दोस्तों उन्होंने एक ऐसी फिल्म का निर्माण भी किया जिसे राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से नवाजा गया।
1: फिल्म समीक्षक ज्योति वेंकटेश के मुताबिक हेमंत कुमार अपने दौर के सबसे प्रतिभाशाली फनकारों में से एक थे और संगीत की नब्ज का मिजाज समझने में दक्ष इस कलाकार को रविंद्र संगीत का विशेषज्ञ भी माना जाता था।
0: और दोस्तों बात करें अगर हेमंत दा की तो लगभग 5 दशक तक अपने मधुर संगीत से श्रोताओं को परम आनंद प्रदान करने वाले इस महान संगीतकार और पार्श्व गायक का निधन 26 सितंबर 1989 को हो गया। तो आज इस महान व्यक्तित्व के जन्म जयंती पर हम इन्हें नमन करते हैं और हिंदी फिल्मों में दिए गए इनके योगदान और बांग्ला फिल्मों में दिए गए इनके योगदान के लिए इन्हें नमन करते हैं।
1: और एक और बड़ा नाम जुड़ता है आज के दिन, अभिनेता, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, गायक, निर्माता मिथुन चक्रवर्ती जी का भी आज है हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे। उन्होंने 1976 में फिल्म मृग्या से अभिनय की शुरुआत की जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला।
0: दोस्तों बात करें 1980 की तो 1980 के दशक में वे डिस्को डांसर के रूप में बहुत लोकप्रिय हुए और बहुत लोग उस गाने को भी याद करते हैं, उनके स्टेप्स को भी याद करते हैं और युवाओं के बीच एक नई पहचान उस वक्त उन्होंने बनाई। उन्होंने 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और हिंदी के अलावा बंगाली, उड़िया और भोजपुरी सिनेमा में भी काम किया। दोस्तों अभिनय के साथ साथ मिथुन चक्रवर्ती साहब समाज सेवा में भी सक्रिय हैं, तो आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और आज आप इस महान एक्टर के साथ अपना जन्मदिन शेयर कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां।

0: जी हाँ दोस्तों, अगर आज आपका जन्मदिन है तो आज आपके जन्मदिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां, और वहीं जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी हम भूल नहीं सकते।
1: बिल्कुल, आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं और आज आपके किसी भी खास दिन का, स्पेशल डे की ढेर सारी बधाई देते हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपका आज का दिन और आने वाला साल बहुत सारी खुशियां लेकर आए।
0: जी हाँ दोस्तों, बस कोशिश ये करते रहिए कि जो भी आप करें किसी के दिल को सुकून

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए

0: हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा
3: स्वस्थ रहने का फंडा रोज खाएं अंडा NECC द्वारा जनहित में जारी
4: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट ज्योतिष योग विधि एग्रीकल्चर BCA फार्मेसी इंजीनियरिंग कला ललित कला विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है
5: जी दोस्तों 9:56 का वक्त इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि अब प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ अपने बिल्कुल वाइंड अप की ओर आ चुका है बहुत सारे मेल्स हमारे सामने खुले हुए हैं आंचल सेठ सुधांशु घनश्याम सिंह जी सुनील कुमार सब इतने सारे मेल्स हमें लिखकर भेजे हैं
6: जी बहुत सारी मेहनत आप लोगों ने की है इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि आप दोनों को गुड मॉर्निंग संघर्ष जीवन को निखारते हैं संवारते हैं व तराशते हैं और ऐसा बना देते हैं जिसकी प्रशंसा करते जबान थकती नहीं संघर्ष हमें जीना सिखाता है संघर्ष का दामन थाम कर न केवल हम आगे बढ़ते हैं बल्कि जीवन जीने के सही अंदाज को आनंद के साथ अनुभव कर पाते हैं ये मुबारकपुर आजमगढ़ से इन्होंने हमें लिखा है समशुल कमर राही बेगम रुखसार का भी नाम इन्होंने साथ में दिया बहुत बहुत शुक्रिया
5: जी कमल तिवारी जी भी हमें लिखकर भेजते हैं स्विक सेंस पर इन्होंने बात की है कि लोग जानते समझते सब कुछ है पर इस पर कोई बात नहीं करता और खुलकर कोई इस पर सामने नहीं आता और जो लोग रोड पर भी कचरा फेंक देते हैं ऐसे वैसे जगह इस पर उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी हुई आपका बहुत बहुत शुक्रिया
6: दोस्तों राममोहन गुप्ता साहब ने हमें मेल भेजी है और उसमें कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं होना चाहिए ये और वह भी कहते हैं सभी पर अपना दायित्व कर्तव्य निभाते हैं कम ही और जब कोई आगे बढ़कर नया कार्य करता ज्यादातर उपहास उड़ाते सराहना बुरा लगता मुद्दे उठाने बनाने से अच्छा खोजना समाधान लोग क्या कहेंगे भुला निज कर्तव्य करें इंसान अतिक्रमण साफ सफाई झिल्ली पन्नी उपयोग समस्याएं हैं बड़ी सामूहिक दायित्व निभाएं लोग सबसे बड़ी बात उलाहना उपहास करने से बचें हो सके जितना आगे बढ़कर स्वयं सहयोग करें बहुत बहुत शुक्रिया
5: वारिस अली जी लिखकर भेजते हैं कि कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिससे हम संकोच वश किसी के सामने नहीं बताते और दूसरी बात हम ये सोचते हैं कि ऐसी समस्या को किसी से बताने में भी कोई फायदा नहीं है तो हमें लगता है कि अगर हम लोगों से इस तरह की बातें बताएंगे तो लोग मदद नहीं बल्कि हंसी उड़ाएंगे
6: मुनेश कुमार की भी मेल आई कह रहे हैं आज बिजी बहुत ज्यादा हूं इसलिए कोई उत्तर नहीं दे पा रहा हूं बबीता जी का भी हमारे पास हरियाणा झज्जर से मेल पहुंचा है गुड मॉर्निंग आपको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और सीनू हसन का भी मेल हमारे पास आया इन्होंने भी गुड मॉर्निंग भेजा है जो बॉयज गर्ल्स मेरिंग क्या लिखा इन्होंने
5: इन्होंने कुछ गड़बड़ इंग्लिश लिखी है
6: चलिए कोई बात नहीं
5: आपका मेल के लिए शुक्रिया जी
6: अरुण कुमार साहब की मेल हम तक पहुंची है राज साहब की मेल पहुंची है राम मोहन गुप्ता साहब की मेल पहुंची है हमारे पास ब्रजेश सिंह साहब की मेल पहुंची है रामेश चौहान साहब की मेल पहुंची है और किन किन की मेल है हमारे पास
5: जावेद पटेल जी और बिट्टू भाटिया हमें हरियाणा से सुन रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे मेल्स भेजने के लिए अब वक्त हो चुका है मैं स्वेच्छा आपसे इजाजत लूंगी होगी किसी और दिन किसी और वक्त हमारी आपकी मुलाकात
6: तो बस हमारे साथ यूं जुड़े रहिए सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन
5: लखनऊ की

मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष सुशासन, जन कल्याण और नागरिक सशक्तिकरण के अभूतपूर्व कालखंड के रूप में दर्ज हुए हैं। इन वर्षों में सरकार की प्रत्येक नीति और योजना के केंद्र में देश का सामान्य नागरिक रहा है। नागरिक देवो भव के मंत्र को आत्मसात करते हुए शासन व्यवस्था को नागरिकों की सुविधा, सम्मान और विश्वास के अनुरूप बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन करते हुए तकनीक आधारित पारदर्शी और जनहितकारी शासन व्यवस्था को मजबूत किया। प्रदेश के आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु ने कल राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 15 से 21 जून तक आयोजित होने वाले योग सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर में उन्होंने कहा कि योग दिवस हजारों वर्षों से प्रचलित है। भारत का योग पूरे विश्व में अपनी खास पहचान बना चुका है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, बौद्धिक क्षमता का विकास, शारीरिक बलिष्ठता, स्वस्थ मन, मस्तिष्क का ध्यान केंद्रित करने सहित तमाम लोगों में लाभकारी योग आसन को आज दुनिया अपना रही है। डॉक्टर दयालु ने कहा कि भारत की प्राचीन परंपरा योगा को लोकप्रिय बनाने रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में योग को वैश्विक स्तर पर अपनाने का आह्वान किया। प्रदेश में पहली बार पशुपालन विभाग द्वारा प्रदेश में लघु पशुपालन क्षेत्र के समग्र विकास, रोजगार सृजन, उद्यमिता संवर्धन एवं पशुपालकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से यूपी स्मॉल लाइफ स्टॉक कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन 17 और 18 जून 2026 को लखनऊ में किया जा रहा है। विभाग के निदेशक ने बताया कि कॉन्क्लेव के संबंध में लघु पशुपालन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा महिलाओं एवं युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभर रहा है। वर्तमान में बकरी, भेड़ एवं सूकर पालन के क्षेत्र में उत्पादन, प्रसंस्करण तथा विपणन के से जुड़े अनेक नए अवसर उपलब्ध हैं, जिनका लाभ प्रदेश के पशुपालकों एवं उद्यमियों तक पहुंचाना इस कॉन्क्लेव का प्रमुख लक्ष्य है। गोरखपुर में भूमि विवाद से जुड़े मामलों के प्रभावी निस्तारण को लेकर सदर तहसील प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में एसडीएम सदर दीपक गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के भूमि विवाद संबंधी मामलों की गहन जांच कर 20 जून 2026 तक उनका निस्तारण हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। संस्कृति विभाग द्वारा संत कबीर जयंती के अवसर पर 27 से 29 जून 2026 तक निर्गुण त्रिधारा भक्ति उत्सव का आयोजन विभिन्न स्थलों पर किया जा रहा है। इस त्रिदिवसीय उत्सव का उद्देश्य संत कबीर दास के मानवतावादी विचारों, सामाजिक समरसता, प्रेम सद्भाव एवं निर्गुण भक्ति परंपरा का व्यापक प्रचार प्रसार करना तथा नई पीढ़ी को उनकी शिक्षाओं से जोड़ना है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: गणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
2: भाई अब मैच का क्या होगा?
1: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
3: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
4: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
3: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 444444।
5: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
7: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
8: जी हां दोस्तों, 10:04 और साथ में कुछ सेकेंड्स से प्रोग्राम शुरू हो चुका है सुपर हिट सॉन्ग्स, और आज इस प्रोग्राम में आपके साथ जुड़ चुका है आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, और अगले एक घंटे बहुत सारा संगीत, बहुत सारा म्यूजिक आपके साथ रहेगा और हमारी आपकी

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: दोस्तों 10:22 का समय हो चुका है, आप सुन रहे हैं सुपर हिट सॉन्ग्स और एक जानकारी आप तक। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक। और अभी फिलहाल आपका फेवरेट प्रोग्राम सुपर हिट सॉन्ग जारी है, आप हमारे साथ ही जुड़े रहें, सुनते रहें 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

10:01 का समय, प्रोग्राम सुपरहिट सॉन्ग। अब इसी अंतिम गीत के साथ ये प्रोग्राम यहीं पर विराम लेता है और ठीक न्यूज ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं आपके अपने प्यारे से शो संदेश आपके गीत हमारे में। बस आप हमारे साथ ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि स्वस्थ नागरिक ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है और आज स्वास्थ्य सेवाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली न केवल लोगों के जीवन स्तर को सुधारती है बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और उत्पादकता को भी मजबूत बनाती है। अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर में बताया कि मई 2026 तक देश में 1.5

8 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कहा कि 9 साल पहले उत्तर प्रदेश की हालत ये थी कि राजधानी में पुलिस की जमीन पर कुख्यात माफिया ने कब्जा कर रखा था। तत्कालीन सरकार के संरक्षण में वह माफिया इतना शक्तिशाली हो चुका था कि पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी जमीन खाली करा सके, लेकिन डबल इंजन सरकार का बुलडोजर देखते ही माफिया ने जमीन सरेंडर कर दी। आज उसी जमीन पर स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की भव्य इमारत खड़ी है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कंटेंट क्रिएटर से संवाद किया। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान और कीमती सामान के कथित गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने कल से अपनी जांच शुरू कर दी है। SIT की अध्यक्षता लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन इसमें सदस्य हैं। SIT के सभी सदस्य कल अयोध्या पहुंचे और अपनी जांच शुरू की। उन्होंने आयुक्त और अयोध्या के DM के साथ मिलकर परिसर का दौरा किया। SIT को 15 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश हैं। प्रयागराज जिले में स्थित मेजा थाना क्षेत्र के कुकर कटवा गांव में कल रात एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस उपायुक्त यमुनानगर विवेक चंद्र यादव ने बताया कि घटनास्थल की बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH महिला हॉकी नेशंस कप 2026 के में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पूल ए के अपने दूसरे मुकाबले में मंगलवार को जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में स्थान पक्का कर लिया। लगातार दूसरी जीत के साथ भारत अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। अब भारतीय टीम अपना अंतिम पूल मुकाबला 18 जून को उरुग्वे के खिलाफ खेलेगी, जबकि जापान और अमेरिका दूसरे सेमीफाइनल स्थान के लिए भिड़ेंगे। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो।

0: सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी। चलते रहे इश्क में पड़ जाते
1: हैं। हमारी और आपकी साझा कहानी,
2: आपके अपने रेनबो की जबानी।
3: आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी।
4: जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर।
5: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा।
0: 100.7 FM रेनबो,
6: धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, 11:05 का समय, प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहना है आपके दिल की बात। और दोस्तों, आप भी अपने दिल की बात अपने संदेशों के माध्यम से हम तक पहुँचा सकते हैं, और इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं हमारी मेल आईडी, जो कि है fmakashwanilakhnow@gmail.com। इस मेल आईडी के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने संदेश, जो कि हमारे लिए, हम सब के लिए, समाज के लिए, देश के लिए हितकारी हो, वो सभी संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। और दो और तरीके हैं जिनके एक और तरीका है जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उनमें से दूसरा जो तरीका है वो है हमारे फ़ोन नंबर्स, जो कि बहुत ही मैजिकल हैं। उन नंबर्स के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो पहला जो मैजिकल नंबर हमारा है वो है 0522223845, और दूसरा मैजिकल नंबर है 0522।

2022-3-8-8-5-2। तो ये दो मैजिकल नंबर्स आप मिलाकर हमारे साथ यानी कि एफएम रेनबो के साथ जुड़ सकते हैं और अपने प्यारे प्यारे संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप कुछ अपनी बात भी कहना चाहते हैं तो वो भी कह सकते हैं। अगर आप हमारे प्रोग्राम्स के बारे में कहना चाहते हैं तो भी कह सकते हैं। एफएम रेनबो के बारे में कहना चाहते हैं तो वो भी कह सकते हैं। पूरी तरह से ये मंच आपके लिए खुला हुआ है, बस इंतज़ार है तो आपकी कॉल्स का, आपकी मेल्स का। फिलहाल ये प्यारा सा गीत आप सबके लिए, इसे इंजॉय कीजिए। हमारे साथ यूँ जुड़े रहिए, सुनते रहिए संदेश आपके, गीत हमारे। आपके साथ आज है आपका अपना दोस्त रतन।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स इन प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे, और ये खूबसूरत सा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आपके अपने प्यारे से चैनल 100.7 FM रेनबो पर। और हमारे साथ हमारी पहली कॉलर जुड़ चुकी हैं, जानते हैं कौन है। हेलो,
4: हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग,
3: वेरी गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रही हैं?
4: जी, हम गुलफ्सा दीदी की बोल रहे हैं।
3: क्या बात गुलफ्सा जी, आपकी वॉइस से और आपकी आवाज से बिल्कुल पता चल रहा है कि आप कितनी खुश हैं।
4: आपने पिछला प्रोग्राम ही इतना अच्छा किया।
3: अच्छा, आपको सॉन्ग्स पसंद आए?
4: बहुत मजा आ गया।
3: क्या बात है, चलिए हमारी मेहनत सफल करवा दी आपने।
4: थैंक यू
3: सो मच। तो ये बताइए, एफएम रेनबो कितना सुन लेती हैं आप?
4: जी, हम सुबह 7 से चालू करते हैं, रात के 10 बजे तक सुनते रहते हैं।
3: अच्छा, काम वाम करती हैं कि नहीं करती हैं?
4: जी सर, काम करते हैं।
3: अच्छा, काम करते करते सुनती हैं?
4: रेडियो तो ऐसा है ना, काम चलता रहता है।
3: जी नहीं, हमें लगा कि बस रेडियो ऑन हो जाता है, बस सुनती रहती।
4: घर के काम भी होते रहते हैं, रेडियो भी।
3: अच्छा, रेडियो का और एफएम का इतना अच्छा, ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आप म्यूजिक भी सुनते रहें और साथ में अपने काम भी करते रहें।
4: मोबाइल या टीवी वगैरह में काम रुक जाता है तब हम
3: बिल्कुल
4: बैठ कर देखते हैं।
3: तो गुलफ्सा, तो और क्या करती हैं आप, ये बताइए।
4: हम घर पर रहते हैं, हाउसवाइफ हैं।
3: क्या बात, हाउसवाइफ हैं। तो आप खाना तो बहुत अच्छा पकाती होंगी।
4: सर, बना लेते हैं, पता नहीं अच्छा बनता है कि नहीं बनता है, खाने वाले बता सकते हैं।
3: बिल्कुल, इसके विषय में हम आपके हस्बैंड साहब से पूछेंगे। लेकिन आज आप क्या संदेश देना चाहती हैं, ये बताइए।
4: जी, हम संदेश ये देना चाहेंगे, अपने बच्चों का ख्याल रखें। बच्चे बाहर से धूप से टहल के आते हैं, नहाने लगते हैं, तो उन्हें नहाने ना दिया जाए।
3: ओके।
4: तुरंत, और वो दिन भर में बार बार नहाते हैं, धूप में टहलते रहते हैं, बार बार नहाते हैं, तो उनके दाने वगैरह निकल आते हैं।
3: बहुत अच्छी बात आपने बताई, और वाकई में बच्चों का ख्याल रखना इस भरी गर्मी में बहुत जरूरी है। और
4: रूम में डालते हैं, उन्हें बहुत गर्मी लगती है, आके तुरंत नहा लेते हैं, तो ऐसा
3: बिल्कुल ऐसा ना किया करें। बहुत अच्छा संदेश है गुलफ्सा, आपने हमें कॉल किया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
4: जी सर, थैंक यू,
3: थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, गुलफ्सा जी ने तो बता दिया कि भैया अपने बच्चों का ख्याल रखिए, और उन्हें अगर वो धूप से आते हैं तो उन्हें बार बार नहाने मत दीजिए, और धूप से आने के तुरंत बाद बिल्कुल तो नहाने मत दीजिए, क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो सकती है, उनकी हेल्थ को नुकसान पहुँच सकता है। 11:15 का समय हुआ है, हमारे पास मेल्स भी लगातार आ रही हैं। वारिस अली खान साहब की मेल हम तक पहुँची है, लिख रहे हैं, रतन भाई नमस्कार, अर्ज है जिसने अदा सीख ली गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएगी साजिशें जमाने की। क्या बात, थैंक यू सो मच। और ये कह रहे हैं, सुपरहिट सॉन्ग प्रोग्राम इन्हें बहुत पसंद आया, जो गाने प्ले किए गए इनको बिल्कुल आनंद आ गया, ऐसा इन्होंने लिखा है। संदेश ये देना चाहते हैं कि अपने बुजुर्गों की उनके जीवन में ही सेवा करिए, उन्हें अपना वक्त दें, आप उन्हें किसी चीज की कमी ना होने दें, क्योंकि अगर पेड़ सूख जाता है तो उसके बाद उसे पानी देने का कोई महत्व नहीं रहता। बहुत अच्छी बात और बहुत गंभीर ये बात आपने कही है, और वाकई में दोस्तों अक्सर ये देखा गया है कि जब हमारे घर के बुज़ुर्ग होते हैं तो हमारे पास उनके लिए समय नहीं होता, हम उनको टाइम नहीं दे पाते, हम बस कोशिश करते हैं कि उनकी जो

अगर वो कुछ कहते हैं तो बस वो हम पूरा कर दें, या फिर उनके लिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो बस कर ही देते हैं, मगर वो जो एक केयर होती है जो कि एक बुज़ुर्ग को चाहिए वो हम नहीं दे पाते। तो ज़रूरी है कि उन्हें हम वो केयर दें, और वक्त के साथ, क्योंकि जब चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं तो उन चीज़ों का कोई मायने नहीं रहता कि अब हमें इन्हें करना है या किस तरह से इन्हें हमें निभाना है। तो बस अपने घर के लोगों का ख्याल रखिए, अपने घर के सदस्यों का ख्याल रखिए, अपने घर के बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए, और लोगों को भी इस बात के लिए प्रेरित करते रहिए। बहुत अच्छा लगा आपकी ये संदेश, आपके इस संदेश को पढ़कर वारिस भाई, और आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लगातार दोस्तों मेल्स और संदेश हमारे पास पहुंच रहे हैं। एक और प्यारा सा गीत हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं, इसे एंजॉय कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। जी हाँ, आप बिल्कुल सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, जिस पर चल रहा है प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे और राज। जिस प्रोग्राम में आपके साथ है आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, और हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, कौन बात कर रही है?
2: आपने कहा था फोन मत काटिएगा, मैं दीपा बोल रही हूँ।
1: दीपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका FM रेनबो पर। कहाँ से बात कर रही हैं मैम, थोड़ा तेज बोलिएगा।
2: लखीमपुर खीरी से बात कर रही हूँ।
1: लखीमपुर खीरी, बिल्कुल। और तो ये बताइए, आप FM रेनबो सुनती हैं और कितना सुनती हैं?
2: जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं सुन लेती हूँ।
1: क्या बात है। तो दीपा जी,
2: वैसे सुबह जी पुष्पांजलि है जो मैं सुनती हूँ, और गुड मॉर्निंग इंडिया भी सुनती हूँ।
1: जी, गुड मॉर्निंग लखनऊ,
2: सॉरी गुड मॉर्निंग लखनऊ सुनती हूँ, और रात में रजनीगंधा सुनती हूँ।
1: ओके, तो मतलब
2: मेरे मतलब फेवरेट हैं।
1: क्या बात। तो ये बताइए आप क्या करती हैं
2: इस समय? तो मैंने आपको बताया रिटायर्ड टीचर हूँ ना मैं।
1: अच्छा, तो क्या क्या पढ़ाती थी?
2: मैं म्यूजिक की टीचर थी।
1: ओके,
2: शास्त्रीय संगीत सिखाती थी।
1: क्या बात।
2: 32 साल मैंने शास्त्रीय संगीत शिक्षा दी है।
1: जी जी,
2: अब मैं घर में हूँ।
1: क्या बात। तो आज आप हमें मिल गई हैं, तो हम आपसे जरूर कुछ ना कुछ सुनना चाहेंगे। क्या सुनाएंगे आज आप हमें?
2: वैसे तो मैं क्या बताऊँ, मेरा गला घर में रहती हूँ।
1: कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल,
2: एक लाइन गुनगुना देती हूँ।
1: बिल्कुल, स्वागत है आपका, बताइए।
2: उल्फत

0: क्या बात, बहुत खूब बहुत खूब। वाकई में आप इतना अच्छा गाती हैं और इससे पता चलता है कि आपके जो स्टूडेंट्स होंगे तो वाकई में बहुत खुश रहते होंगे आपसे और बहुत कुछ सीख कर वो आपसे गए होंगे।
1: कोशिश तो यही की है
0: जी। तो दीपा जी ये बताइए, आज आप क्या संदेश देना चाहती हैं इस प्रोग्राम में हमारे सभी लिसनर्स को?
1: संदेश तो मैंने बताया कि जैसे आजकल के वैसे फोन के विषय में मैं कहना चाहती हूँ, फोन वैसे तो जो ये है कितना यूजफुल है, कितना इसने जीवन को सरल बना दिया है और कितना ज्ञान वर्धक है, लेकिन आजकल की जो नई जनरेशन है वो इससे बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं। तो आजकल के बच्चों को चाहिए कि भाई गलत रास्ते पर ना मुड़े, जो अच्छा है उसको ग्रहण कर और जो खराब है उसको छोड़ने की कोशिश करें। यही मेरा संदेश है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा ये संदेश और आप इस संदेश के साथ हमारे साथ आज जुड़ी अपने इस प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद कॉल रिसीव करने के लिए।
0: जी दोबारा कॉल मैम जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों दीपा मैम तो हमारे साथ जुड़ी हैं और उन्होंने इतना अच्छा इतनी अच्छी आवाज़ में हमें अपना गीत भी सुनाया और वाकई में बहुत अच्छी आवाज़ के साथ वो बोलती भी हैं और बहुत अच्छी बातें भी करती हैं और बहुत अच्छा संदेश भी उन्होंने हम तक पहुंचाया, इसके लिए भी हम उनका दिल से शुक्रिया करते हैं। और साथ में हमारे पास मेल्स भी लगातार आ रही हैं। अगली जो मेल हमारे पास पहुंची है वो है तालिब अंसारी साहब की, राजा कटरा बाराबंकी से हमें ये मेल कर रहे हैं और इन्होंने कुछ हमें भेजा है कि गलतियां ढूंढना गलत बात नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। क्या बात है, बहुत छोटी सी ये कुछ लाइनें, लेकिन जो भी इन्होंने लिखा वो वाकई में बहुत दमदार और बहुत सटीक बात है। पिछला प्रोग्राम इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आपकी मेल हम तक पहुँची, इसके लिए भी आप

0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मोहम्मद आसिफ साहब की भी मेल हम तक पहुंची है। मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से ये हमें मेल कर रहे हैं, कह रहे प्रोग्राम सुन रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। रतन सर सुपरहिट प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। संदेश ये है कि जितने भी लोग सुन रहे हैं नियमित योगा, ओके ऐसा नियमित लिखा है उन्होंने, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ये इनका कहना है कि जितने भी लोग इन्हें सुन रहे हैं वो नियमित योगा करें, इससे मन और शरीर अच्छा रहता है। सादिया अंसारी, साहिबा अंसारी, समा अंसारी, इमाम नवाब अप्पी, और इन्होंने इतने सारे नाम भी दिए, वो भी मैंने पढ़ दिया और संदेश भी आपका हम तक पहुंच गया कि जितने भी लोग सुन रहे हैं वो योगा ज़रूर करा करें, इससे शरीर स्वस्थ रहता है और चुस्त रहता है। बहुत अच्छा लगा आपका ये संदेश हम तक पहुंचा, और लगातार मेल्स हमारे पास आ रही हैं, साथ में हमारे पास कॉल्स भी आ रही हैं और उन कॉल्स को हम अटेंड करने की पूरी पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो जी, कौन? हाँ हाँ सुन रहे हैं, बताइए कौन
1: बोल रहे हैं। श्रावस्ती जिला से।
0: कौन?
1: हम हिमांशु यादव बोल रहे हैं।
0: हिमांशु जी स्वागत है आपका एफएम रेनबो पर, प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में। क्या करते हैं आप?
1: हम पढ़ाई करते हैं।
0: किस क्लास में हैं?
1: हम तो हाई स्कूल में पहुंच गए हैं लेकिन अभी सर स्कूल नहीं खुली है, इसलिए घर पे थे तो टाइम भी मिला तो हम कहीं कॉल भी लगा ले।
0: अच्छा तो ये बताइए आजकल आप क्या कर रहे हैं? इस वक्त फ्री टाइम है आपके पास तो आप कुछ करते हैं या फिर बस अपना टाइम पास?
1: बैठे थे और मोबाइल लिए हाथ में और 0522 38845 वाले पे लगाए तो जरूरत।
0: अच्छा तो ये बताइए आज क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: सर हम संदेश देना चाहेंगे ये कि जो लोग नहर में नहाते हैं ऐसा मत करें, क्योंकि मेरे यहाँ से आज तो सर 4 तारीख को ऐसा हादसा हुआ है।
0: अच्छा तो उसमें मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग बह गए, क्या हुआ?
1: तीन बच्चे गए थे तो 2 बह गए, 1 बचा है वो भी उस भर्ती है अस्पताल में।
0: ओहो तो वाकई में ये बहुत ही गंभीर बात है और ऐसा नहीं करना चाहिए, और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि वो अगर ऐसी जगह पे जा रहे हैं तो उनको ना जाने दिया जाए और रोका जाए, और फिर भी अगर ऐसा जी
1: अपने घर पे नहा भी सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और घर घर टोटी भी लग गई है सरकार की योजना से।
0: जी जी जी जी, तो वाकई में ये एक बहुत गंभीर बात है और आपने अपनी बात हम तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा।
1: माँ बाप का तो
0: जी जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और बहुत गंभीर ये आपने विषय उठाया है, और वाकई में इससे अगर किसी की जान चली जाती है तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकती, इसलिए सुरक्षा और सावधानी पहले ही बहुत ज़रूरी है, इसका विशेष ध्यान रखें। 11:29 का समय हो चुका है दोस्तों, लगातार हमारे पास मेल्स आ रही हैं, कॉल्स आ रही हैं, देखते हैं अगली कॉल किन की है या अगली मेल किन की है। हमारे पास अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो
2: नमस्कार,
0: कौन बात कर रहे हैं?
2: मेरा नाम है तरन्नुम।
0: तरन्नुम जी बहुत धीमे बोलती हैं आप, थोड़ा तेज बोलिए, स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत मेरी कॉल पहली बार लगी है आपसे।
0: क्या बात है, बहुत खुशी हो रही है हमें कि आज आपने पहली बार हमसे फोन मिलाकर बात की, और हमें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है?
2: मुझे तो बहुत खुशी हुई, बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी, लग ही नहीं रहा था।
0: चलिए आज ऊपर वाले ने आपकी सारी बातें मान ली, तो ये बताइए क्या करती हैं आप?
2: मैं घर पे रहती हूँ, घर का काम।
0: नहीं घर पे तो हम भी रहते हैं। तो घर पे जी घर पे रह के आप करती क्या है?
2: बस ये घर का काम करते
0: हैं। अच्छा तो ये बताइए आप एफएम रेनबो सुनती हैं?
2: जी सर सुनते हैं, तभी तो नंबर लगाते हैं।
0: अच्छा तो मतलब सारे प्रोग्राम सुनती हैं या कोई खास प्रोग्राम है जिनको आप स्पेशली सुनती हैं?
2: नहीं जब टाइम मिलता है तो सुन लेती
0: हूं। अच्छा टाइम मिलता है तो जो भी प्रोग्राम आ रहा होता है वो आपको अच्छा लगता है। तो क्या संदेश देना चाहती हैं प्लीज बताइए।
2: संदेश मैं यही देना चाहती हूँ सर कि स्कूटी चलाएं या बाइक चलाएं या साइकिल चलाएं, फोन का यूज ना करें बिल्कुल भी, मोबाइल यूज बिल्कुल ना करें।
0: अच्छा गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का यूज ना करें,
2: बिल्कुल ना करें, बस अपने हैंडल या पैंडल पे ध्यान रखें, बस और सामने वाली गाड़ी पे नजर रखें।
0: क्या बात, बहुत अच्छा संदेश आपका और बहुत

0: लोगों के लिए प्रेरणा से भरा हुआ ये संदेश आपने पहुंचाया। तरन्नुम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल किया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा।
1: जी सर,
0: और अब आप, आज आपका कॉल लग गया तो अब अक्सर लगता ही रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, और अब ट्राई करती रहिएगा, अक्सर आपसे हमारी बात होती रहेगी।
1: ठीक है सर, आप फिर भी आते कहाँ?
0: देखिए अब आपने दिल से याद किया, हम आ गए।
1: आपसे मेरी बात आज पहली बार, और ये बहुत अच्छा
0: जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा। दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों तरन्नुम जी जुड़ी और उन्होंने अपनी बात हम तक पहुंचा दी कि भैया गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का यूज़ ना कीजिए। अगर आप टू व्हीलर भी यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग हेलमेट में अपना मोबाइल लगा लेते हैं और बात करते चले जाते हैं, और ज़रा सा ध्यान चूका कि बस एक्सीडेंट हुआ और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। वही है, होता है जो फोर व्हीलर ड्राइव कर रहे होते हैं उनके साथ भी यही होता है कि बस स्टेयरिंग पर ध्यान हटा, कहाँ मोबाइल पर ध्यान गया और हो गया हादसा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिस वक्त आप जो काम कर रहे हैं पूरा ध्यान पूरा कंसंट्रेशन आपका उसी जगह पर होना चाहिए, है ना। तो ये बहुत अच्छा संदेश और बहुत सारे लोगों के लिए भी एक संदेश है कि आप जब आप भी गाड़ी ड्राइव करें तो इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। देखते हैं हमारे पास मेल्स किन किन किन की आई है, क्योंकि लगातार हमारे पास मेल्स पहुँच रही हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। संतोष चौरसिया साहब का मेल हमारे पास पहुँचा है। राम राम रतन सर, आपको भी राम राम। सर गुरुग्राम हरियाणा से प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। मेरा संदेश है कि खाना खाने के 30 से 35 मिनट बाद पानी पिए, ये इनका संदेश है। और इन्होंने नाम दिया, पूरा नाम ये दिया कि पूजा भरद्वाज का नाम ले लीजिए। पूजा जी हमने आपका नाम ले लिया है, ठीक है। और इनका संदेश ये कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पिए, कम से कम 30 से 35 मिनट का जो है अंतराल रखें, उसके बाद पानी पिए। और वाकई में ये बहुत समझदारी वाली बात है, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है अगर आप पानी इतनी थोड़ा सा गैप करके पीते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, आपकी मेल हम तक पहुंची। और अगली मेल हमारे पास किन की आई है, मुनेश कुमार साहब की मेल हमारे पास पहुँची है। और मुनेश कुमार जी कहाँ से हमें मेल कर रहे हैं, भानपुर हरोवा ज़िला लखीमपुर खीरी से ये हमें मेल कर रहे हैं। अच्छा, आरजी जमशेद जी को नमस्कार। तो जमशेद जी तो इस वक्त नहीं है, रतन जी हैं आपके साथ। हम हैं एफएम रेडियो के दीवाने, आपकी आवाज़ से हमें हर कोई जाने। सुपरहिट गानों में सजा आज का कार्यक्रम, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब रहा, आज के गानों ने पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। थैंक यू सो मच मुनेश जी, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हम तक पहुंचाते हैं। संदेश आपका आज ये है कि जैसे बारिश होने से पहले लोग अपनी छत बना लेते हैं, वैसे ही हमें भी चाहिए कि किसी को टोकने से पहले हम अपनी गलतियों में सुधार कर लें। बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता एक संदेश हमें अभी थोड़ी देर पहले भी मिला था, और उसमें भी यही बात कही गई थी कि दूसरों की गलतियों को निकालने से पहले अपने अंदर की गलतियों को ज़रूर देख लें, और सीधे सीधे ये ना करें कि दूसरों को कुछ कहने से पहले जाके आईना देख लें, उसके सामने खड़े हो जाएं और तब किसी के ऊपर उंगली उठाएं या उसे कुछ कहें। तो अपने अंदर की गलतियां ढूंढना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी गलतियां ढूंढने लगेंगे तो आपको, हमें तो ये लगता है कि आपको दूसरों के अंदर गलतियाँ निकालने का मौका ही नहीं मिलेगा। बस आप इस सोच को ध्यान में रखिए और अपनी लाइफ को बस इसी तरह ब्यूटीफुल बनाइए। अगली कॉल हम देख लेते हैं हमारे पास किन की है। हेलो हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: सर मैं संध्या कनौजिया बोल रही हूँ।
0: संध्या कनौजिया कहाँ से बात कर रही हैं संध्या जी?
2: तिहार हर गांव जिला सीतापुर से।
0: कहाँ से?
2: तिहार से सर, जिला सीतापुर में पड़ता है हर गांव के पास।
0: ओके, तो ये बताइए क्या करती हैं आप?
2: और हम घर पर रहते हैं।
0: अरे घर पर तो हम भी रहते हैं भाई, घर पर रह के करती क्या हैं आप?
2: सर घर के काम काज करते हैं।
0: अच्छा, घर के काम काज हम भी कर लेते हैं कभी कभी।
2: नहीं सर, आप झूठ बोल रहे
0: हो। हम झूठ बोल रहे हैं, आपको कैसे पता?
2: ये हमारा काम लड़कियों का, महिलाओं का
0: नहीं। ये ये ये ये तो बात कहीं नहीं लिखी कि घर के जितने काम है वो लड़कियों के होते हैं। हमारे घर में तो हम जाते हैं तो

0: काम दे दिए जाते भैया ये करके आना है, ये करिए ऐसा करना है।
1: वो तो सबके घर में होता है, थोड़ा ये कर दो वो कर दो।
0: तो ये बताइए मतलब आप खाना वाना बना लेती हैं?
1: हाँ सर हम सब बना लेते हैं।
0: स्वादिष्ट वाला अच्छा चलिए
1: आपको खिला देंगे।
0: बिल्कुल हम किसी दिन आते तो जरूर हम आपके यहाँ रुकेंगे भी और खाएंगे भी। लेकिन ये बताइए आप एफएम रेनबो कितना सुनती हैं?
1: सर ज्यादा तो हम नहीं सुन पाते हैं क्योंकि घर के कामों में उलझे रहते हैं।
0: अच्छा इतना ज्यादा काम होता है आपके पास?
1: हाँ काम सर बहुत हो जाता है।
0: अक्सर तो लोग
1: अगर हम काम नहीं करेंगे तो मम्मी नहीं रहेंगे।
0: अच्छा ऐसा भी होता है घर में?
1: मम्मी कहेंगे फोन में ही पड़ी रहती है, फैमिली सुनती रहती है, ये काम पड़ा वो काम पड़ा, तो बंद करके अपना काम करने लगते।
0: अच्छा हमने तो ये अक्सर ये सुना है कि लोग जब रेडियो सुनते हैं उसके साथ काम भी करते रहते हैं। आप कह रही हैं अगर हम रेडियो ज्यादा सुनेंगे तो मम्मी डांटती हैं?
1: नहीं मम्मी डांटती नहीं, जिसे काम पड़ा होता है तो हम बंद करके रख देते हैं।
0: नहीं तो ऐसा क्यों करती है, बैक में बजता रहना दिया करिए रेडियो और उसके बाद आप अपना काम भी करती रहा करिए।
1: सब्जी जल गई तो
0: अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि रेडियो सुनते सुनते सब्जी जली आपकी?
1: नहीं सर नहीं हुआ है।
0: चलिए आगे भी नहीं होगा ऐसा। आज क्या संदेश देना चाहती हैं प्लीज बताइए।
1: संदेश हमारा यही, समय छुट्टियां चल रही हैं तो अक्सर बच्चे घर पर रहते हैं तो मम्मी पापा क्या करते हैं फोन बच्चों को दे देती हैं, तो ऐसा ना करें क्योंकि उनकी आदत अभी बिगड़ जाएगी, छुट्टियां चल रही हैं उसके बाद फिर वही खलेगा उनको।
0: आज बच्चों वाले संदेश बहुत आ रहे हैं, सब लोग बच्चों की छुट्टियों को लेकर बड़े
1: टीवी चला देते हैं, देखते रहते बच्चे, बच्चों को आदत लग जाएगी फिर छूटेगी नहीं।
0: अरे भैया बच्चे सिर्फ एक महीने के लिए घर में, डेढ़ महीने के लिए बेचारे हैं, आप लोग काहे इतना रिस्ट्रिक्शन उन पे लगा रहे हैं?
1: अरे तो सर फोन देखना टीवी
0: जी
1: देखना
0: जी बिल्कुल सही बात है,
1: थोड़ा हाँ लिमिट में रखे।
0: देखिए हर चीज की एक लिमिट होती है, सीमा होती है, बिल्कुल सही बात आपने कही। और जितना भी
1: सर हम आपको बताते हैं हमारे घर में सुरभि है, वो नाइन्थ में आ गई है, उसको फोन दे दो तो दो दो घंटे तीन तीन पता ही नहीं चलता किस रूम में पड़ी है, कि मेरा घर बड़ा है काफी,
0: अच्छा
1: पता ही नहीं चलता किस रूम में पड़ी है, सन्नाटा रहता है।
0: नहीं तो बस यही चीज यहीं पे ही कंट्रोल करने की बहुत जरूरत होती है बच्चों को, कि आप एक टाइम पीरियड बताइए कि इतने समय तक के आपको फोन या मोबाइल यूज करना है, उसके बाद यूज नहीं करना है, उसके बाद कुछ और काम करने हैं, है ना।
1: हमारी पहली कॉल लगी है इस 26 में।
0: क्या बात, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात कर, आपको कैसा लग रहा है ये बताइए।
1: हमें बहुत खुशी हो रही है, आपसे पहली बार बात हो रही है, 26 की भी पहली बार बात है।
0: चलिए हमें बहुत अच्छा लगा और आप दोबारा कॉल जरूर मिलाइए। हम भी आपसे बात करना चाहते थे। बहुत अच्छा लगा, दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा।
1: सर करिश्मा कह रही थी,
0: क्या कह रही है?
1: करिश्मा ने कॉल लगाई थी, वो मुझको पकड़ा दिए कि लो सबसे बात करना चाहती थी, तुम भी कर लो।
0: चलिए करिश्मा को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया बोलिए, अगली बार उनसे जरूर हम बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। तो 11:39 का समय हो चुका है, बहुत ढेर सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारी मेल्स भी ले ली हैं हमने, और अब समय हो चुका है कि एक प्यारा सा गीत भी आप तक पहुंचा दिया जाए, वरना आप ही हमसे कहेंगे कि भैया रतन जी तो बातें बहुत करते हैं, गाने तो सुनाते ही नहीं है, है? तो चलिए हम आपको एक प्यारा सा गीत सुनाते हैं, इस गीत को आप एंजॉय कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और ये डांस नंबर है तो थोड़ा सा डांस भी कर लीजिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
6: ग्यारह बजकर 45 मिनट का समय, साथ में 50, 51, 52, 53 सेकेंड्स। और दोस्तों, इस सेकेंड्स हमें हमेशा ये संदेश देते हैं कि जैसे हम कभी नहीं रुकते।

0: से आपको भी कभी नहीं रुकना है। जीवन में जितने भी परिवर्तन आए सभी को स्वीकार करते रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जो जीवन में परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करता वो लाइफ में बहुत पीछे रह जाता है। इसलिए सेकंड समय संदेश देते हैं कि लगातार आगे बढ़ते रहिए और बस अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते रहिए। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: गुड मॉर्निंग सर।
0: वेरी गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रही है, नाम तो बताइए।
1: मैं उमरान अंसारी।
0: उमरान अंसारी
1: जी।

0: हेलो,
1: जी कौन बात कर रहे हैं?
0: गुड मॉर्निंग सर।
1: वेरी गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रही है, नाम तो बताइए।
0: मैं उमरान अंसारी।
1: उमरा अंसारी
0: जी, श्रीनगर लखीमपुर खीरी से बात कर रही हूँ सर।
1: क्या बात है उमरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो पर। कैसा लग रहा है बात करके?
0: सर बहुत अच्छा लग रहा है, एंड साथ में बहुत ज्यादा नर्वस भी हो रही हूँ।
1: नर्वस क्यों हो रही हैं आप, एग्जाम थोड़ी दे रही हैं?
0: नहीं सर, पता नहीं फिर भी क्यों।
1: अरे आप अपने,
0: पहली बात भी हो रही है मेरी।
1: आप अपने रतन दोस्त से बात कर रही हैं जो कि आपसे अक्सर बात करता रहता है, तो उसमें नर्वस आने की इतनी क्या जरूरत है।
0: सर आपकी आवाज में बहुत अच्छी लगती है, आपकी आवाज सुन के हमें नींद लगने लगती है।
1: हमारी आवाज सुन के नींद आ जाती है आपको?
0: जी आपकी आवाज बहुत प्यारी है।
1: चलिए बहुत शुक्रिया शुक्रिया। तो ये बताइए क्या करती हैं आप?
0: कढ़ाई करती हूँ एंड सिलाई भी करती हूँ।
1: अच्छा, तो कढ़ाई मतलब कहाँ पे कढ़ाई करती हैं, मतलब महिलाओं के कपड़ों पे या जेंट्स के कपड़ों पे, या फिर कोई डिजाइनिंग वाली ऐसी कैसी कढ़ाई करती हैं आप?
0: ऐसे ही कपड़ों पे, साड़ी सूट।
1: अच्छा
0: जी सर।
1: तो अगर हमें कहीं कुछ डिजाइन बनवानी हो तो आप बना देंगी?
0: जी बिल्कुल।
1: क्या बात है, तो हमें तो बिल्कुल मतलब आपसे मिलना पड़ेगा।
0: जी आइए हमारे गाँव में।
1: तो ये बताइए एफएम रेनबो कितना सुनती हैं आप?
0: सर मैं तो सुबह 7 बजे से लेकर और रेनबो कैसे तक सुनती हूँ।
1: और उसके बाद?
0: उसके बाद सो जाती हूँ सर।
1: उसके बाद सो जाती हैं। चलिए बहुत अच्छी बात। तो कौन सा प्रोग्राम है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
0: मुझे तो सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं।
1: क्या बात है, ऐसे लिसनर्स हमें अक्सर मिलते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं हमें, जिनको सारे प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी आरजेस हैं ना, सभी प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए सारे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं। और आप कह रही सारे प्रोग्राम्स आपको अच्छे लगते हैं, क्या बात। सबकी तरफ से आपको बहुत बड़ा बाला थैंक यू। जी
0: राखी मैन जो है,
1: हाँ हाँ,
0: वो हमारे लिए बहुत लकी है।
1: क्या बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है, हम उनको ये बात जरूर बता देंगे।
0: हमारा पहला ईमेल भी उन्होंने पढ़ा था और हमारा पहला कॉल भी उन्होंने उठाया था,
1: तो हम आपकी ये बात उनको हम जरूर बताएंगे।
0: जी सर।
1: अब ये बताइए आज संदेश क्या देना चाहती हैं आप?
0: सर मैं संदेश ये देना चाहती हूँ कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है आजकल और मौसम भी चेंज हो रहा है, कभी धूप कभी छांव कभी बारिश।
1: गर्मी हमें भी बहुत लगती है।
0: तो ऐसे में अपना ख्याल रखें और अपने बुजुर्गों का भी ख्याल रखें।
1: ओके चलिए बहुत अच्छी बात, और आपने हमें कॉल किया इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एफएम रेनबो के साथ इसी प्यार के साथ जुड़ी रहिएगा और दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा।
0: थैंक यू
1: सो मच। तो दोस्तों लगातार हमारे पास हमारे लिसनर्स इतने प्यार के साथ कॉल कर रहे हैं और हमारे पास अपनी मेल्स भी भेज रहे हैं। अजीत कुमार साहब की मेल हम तक पहुंची है। अजीत यादव रसूलपुर बकिया हसनगंज उन्नाव से हमें मेल कर रहे हैं। अधिकांश लोग शराब के नशे में ड्राइव करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। शराब के नशे में ड्राइव करते समय अधिकांश हादसे होते हैं, कृपया कोई भी नशे की हालत में ड्राइव ना करे। ये एक बहुत अच्छा संदेश है और वाकई में ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो लोग ऐसा करते हैं तो कृपया आगे से इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर आपने ड्रिंक कर रखा है तो ड्राइव ना करें, और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो उस वक्त ड्रिंक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी ड्रिंक करने की ज़रूरत ही क्या है, है ना। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसका विशेष ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच अजीत कुमार साहब। ब्रजेश सिंह की मेल हम तक पहुंची है, ये कह रहे हैं कि सुपरहिट सॉन्ग जो प्रोग्राम हुआ इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया, तहे दिल से इन्होंने हमें शुक्रिया कहा है, धन्यवाद कहा है। तो हम भी आपका शुक्रिया धन्यवाद करते हैं कि आप इतने प्यार से हमें सुनते हैं, हमारे प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं। सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद, और हमारी तरफ से स्पेशली आपको बहुत बड़ा वाला शुक्रिया। इटौआ कैसरगंज बहराइच से आपकी ये मेल हम तक पहुंची है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं हमारे पास अगले कोई कॉलर आए हैं या नहीं। हेलो
2: हेलो
1: जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: जी सर नमस्कार, सर राजकुमार बोल रहे हैं लखीमपुर खीरी से। सर
1: राजकुमार जी बहुत बहुत स्वागत है, आज लखीमपुर खीरी वाले बहुत लकी हैं, बहुत सारे कॉल हमारे पास लखीमपुर खीरी से आए हैं और आप भी हमारे पास लखीमपुर खीरी से ही जुड़े हैं। क्या करते हैं आप बताइए?
2: सर वैसे तो मैं ड्राइव करता हूँ सर।
1: ड्राइव करते हैं
2: जी सर। okay. और हमने बीपीएड भी कर रखा है सर।
1: क्या बात।
2: और सर ये फर्स्ट टाइम हमारी कॉल लगी है, बहुत सालों से तो सुनते हैं।
1: अच्छा।
2: और कई बार हमने ट्राई किया लेकिन आज फर्स्ट टाइम हमारी एफएम रेनबो में बात हो रही है।
1: अपने आपने नाम क्या बताया अपना?
2: सर राजकुमार।
1: राजकुमार जी कैसा लग रहा है जब आप पहली बार हमसे यहाँ पे एफएम रेनबो

0: पे बात कर रहे हैं।
1: सर हमें तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि लाइफ में पहली बार बात हो रही है।
0: ओ, हमें भी बहुत, हमें भी बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। तो FM रेनबो आप कितना सुनते हैं?
1: सर जब भी मैं ड्राइव करता हूँ FM रेनबो ही सुनता हूँ, हमारा साथी FM रेनबो ही है।
0: अच्छा एक बात बताइए, ड्राइविंग आसान हो जाती है ना FM रेनबो सुनते सुनते?
1: जी सर, ऐसा लगता है कि साथ में जो है
0: कोई साथी हमारा चल रहा है ना।
1: जी जी जी, जी, जी सर।
0: बिल्कुल, तो ये साथ आपका हमेशा यूं ही बना रहेगा। हाँ लेकिन ड्राइविंग बहुत ध्यान से कीजिएगा, ठीक है?
1: जी सर, एक सजेशन भी देना चाह रहे हैं सर।
0: बिल्कुल बताइए।
1: हमने सर ये अक्सर देखा है कि रोड पे जो है कुछ लोग जैसे एक्सीडेंट हो जाए छोटा मोटा,
0: हाँ हाँ,
1: तो लोग ड्राइवर को पकड़ करके अपने आप पीटने लगते हैं, बहुत सारी चीजें जान माल पे उतारू हो जाते हैं, तो ये सब चीजें गलत है। तो कृपया करके हम लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति से गलती हो जाए तो उसे आप पुलिस बुला ले या फिर
0: खुला
1: समझौता कर ले, कोई भी व्यक्ति जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही, और वाकई में सबकी जान बहुत महत्व रखती है, और कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर किसी से गलती हुई है तो उसके लिए कानूनी रूप से उसका सहारा लिया जाए, ताकि उसको उसके हिसाब से उसको उसके ऊपर कार्यवाही की जा सके। अपने हाथ में कानून लेना या फिर अपने आप से किसी के लिए फैसला कर देना वो चीज़ गलत होता है। बहुत अच्छा संदेश आपका हम तक पहुंचा है और आपने हमें कॉल किया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
1: थैंक यू सर,
0: थैंक यू सो मच। 11:53 का समय हो चुका है, हमारे पास लगातार कॉल्स आ रही हैं। अगली कॉल हम देखते हैं किनकी हम तक पहुंची है। हेलो,
2: हेलो सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रही हैं?
2: FM रेनबो पे हर वक्त धड़कने वाली आपकी अपनी जानी पहचानी श्रोता पिंकी रिंकी बात कर रही हूँ, जगदीश को शुगर दीवानों के शहर जिला रायबरेली।
0: क्या बात है, दीवानों के शहर में बहुत सारे दीवाने रहते होंगे, है ना?
2: लगता तो यही है लेकिन कोई कदर नहीं करता आजकल।
0: नहीं नहीं, हम करते हैं कदर, बिल्कुल करते हैं। और
2: हमें तो नहीं लगता है।
0: क्यों नहीं लगता भाई, कहाँ ऐसी कमी रहेगी बताइए।
2: आप लोग बहुत गलत करते हैं श्रोताओं के साथ।
0: क्या गलत कर दिया बताइए?
2: आप मेरी कॉल 3 बार काट चुके
0: हैं। हम आपकी कॉल 3 बार काट चुके हैं?
2: बिल्कुल काट चुके हैं। और आपने वादा किया था कि आपके यहाँ का चैनल नहीं पकड़ा है, तो ठीक नहीं करवाया मेरे यहाँ चैनल।
0: अच्छा देखिए, और जगहों की तो समस्याएं ठीक हो गई हैं आप तक की, अगर अभी समस्या
2: नहीं।
0: अच्छा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हमने आपकी इस समस्या को बिल्कुल नोट कर लिया है और हम अपने अधिकारियों तक भी आपकी इस बात ज़रूर पहुंचाएंगे। और इस वक्त जो भी अधिकारी हमारे सुन रहे हैं वो भी ज़रूर आपकी समस्या का विशेष ध्यान देंगे और जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है? आप परेशान मत हुआ करिए, ठीक है?
2: सर हम नहीं परेशान होते, लेकिन आप लोग गलत करते हो तो सर हमें गुस्सा आता, तो हम कोर्ट ट्राई करते फिर
0: देखिए हमारे पास
2: उठाते मेरी जी जी काट देते।
0: एक बात बताएं, हमारे
2: आप लोग देखिए तो सर हम लोग क्यों कॉल कर रहे हैं?
0: अच्छा सुनिए, तो हमारे पास यहाँ पे कॉल काटने वाला सिस्टम ही नहीं है, ठीक है? तो हम कॉल काट नहीं पाते हैं।
2: आप भी उन्हीं में से एक हो सर।
0: नहीं ऐसा नहीं करते हम, और हम क्यों करेंगे, हमें तो आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है।
2: करनी है सर तो आप फोनिंग कार्यक्रम बंद करवा दीजिए, ईमेल पे आधारित कार्यक्रम कर दीजिए सर, क्योंकि श्रोता भी शिकायत करते हैं उनकी कॉल लग जाती है, हमारी नहीं लगती सर।
0: अच्छा,
2: हम तो कभी नहीं शिकायत करते, बल्कि हम लोग तो खुश होते हैं।
0: जी जी जी जी
2: सर, हम लोगों को सुन के उनको क्यों नहीं खुशी होती, उनको क्यों जलन होती है?
0: कुछ नहीं होता ऐसा। और अच्छा ये बताइए, आज आप संदेश क्या देना चाहती हैं? आज आप बहुत गुस्से में हैं, संदेश क्या देना चाहती हैं? गुस्सा में ने दिलाया। चलिए हम आपके लिए जो गाना अगला हम बजाएंगे वो आपके लिए होगा, ठीक है? आप खुश हो जाइएगा।
2: बिल्कुल होंगे सर, आप लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं।
0: नहीं आपको देखिए, आप हमारी दोस्त हैं, आप हमारी श्रोता हैं, आपको गुस्सा होने का भी हक है और हमसे शिकायत करने का भी हक है, बिल्कुल आप कर सकती हैं। और आपकी जो समस्या है उसका समाधान भी हम जल्द से जल्द कराएंगे, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि आगे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत ना होने पाए, ठीक है? तो आप हमारे साथ इसी तरह जुड़ी रहिएगा और दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।
2: मैसेज तो दे सर।
0: अच्छा मैसेज देना, हमको लगा आज आप बस शिकायत ही करने वाली हैं, शिकायत ही शिकायत आप हमसे करेंगी।
2: शिकायत पूरी हो गई। नहीं सर, मुझे सर इस बात का दुख है सर, आप लोग बोलते हो कि नए श्रोताओं को जोड़ो, हमने सर 50 नए श्रोता जोड़े हैं सर, वही शिकायत वो भी कर रहे हैं कि सर दीदी बेल जाती है लेकिन कॉल नहीं रिसीव होती, तो सर ये
0: तो रिंकी पिंकी एक बात बताएं, जब आप लोग ट्राई करते हैं ना

0: इस समय बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं और उसमें ये होता है कि आपको बार बार इंगेज मिलता है, तो अब हमारी भी तो समस्या आप समझिए थोड़ी सी, है ना, तो उसमें ये हो जाता है कभी कभी। लेकिन हाँ, जब भी कॉल लगेगी हम रिसीव ज़रूर करेंगे और आपकी बात का जवाब भी देंगे। फिलहाल संदेश क्या है आपका ये तो बताइए, टाइम जा रहा है। हेलो, संदेश क्या है आपका, संदेश तो बताइए अपना।
1: संदेश हम ये देना चाहते हैं कि मतलब किसी की खुशियों से कटना नहीं चाहिए, बल्कि आप लोग उनकी खुशियों में शामिल होके खुश रहिए। और सर आप से मतलब हम लोग की दोस्त रेडियो के माध्यम से हुई है, बहुत से श्रोताओं से अच्छा लगता है सर रेडियो हमारे लिए, मुझे रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है और सभी लोग रेडियो सुनते रहे, इससे अच्छी अच्छी जानकारियां गीत भी सुनने को।
0: तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हमारे पास मेल्स और कॉल्स आ रही हैं, लेकिन अब समय हमें इसकी अनुमति नहीं दे रहा है कि हम और कॉल्स को अटेंड करें या फिर मेल्स को शामिल करें। फिलहाल आज जितने भी लोगों ने हमें कॉल किया, मैसेज किया मेल के माध्यम से, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इतने अच्छे अच्छे मेल्स भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस प्रोग्राम को इतना खूबसूरत बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगली बार आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, बस आप इसी मुस्कुराहट के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि 100.7 FM रेनबो के साथ, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, 12 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि स्वस्थ नागरिक ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है और आज स्वास्थ्य सेवाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली न केवल लोगों के जीवन स्तर को सुधारती है बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और उत्पादकता को भी मजबूत बनाती है। अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर में बताया कि मई 2026 तक देश में 1.8 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हो चुके हैं। प्रदेश के आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने कल राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 15 से 21 जून तक आयोजित होने वाले योग सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग दिवस हजारों वर्षों से प्रचलित है। भारत का योग पूरे विश्व में अपनी खास पहचान बना चुका है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, बौद्धिक क्षमता का विकास, शारीरिक बलिष्ठता, स्वस्थ मन, मानसिक

मस्तिष्क का ध्यान केंद्रित करने सहित तमाम रोगों में लाभकारी योगासन को आज दुनिया अपना रही है। डॉक्टर दयालु ने कहा कि भारत की प्राचीन परंपरा योगा को लोकप्रिय बनाए रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में योग को वैश्विक स्तर पर अपनाने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विंड प्रक्योरमेंट चैंपियन सम्मान प्राप्त किया है। ये सम्मान कल गोवा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के ग्लोबल विंड डे 2026 कार्यक्रम में पवन ऊर्जा की खरीद एवं उसके प्रोत्साहन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान और कीमती सामान के कथित गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने कल से अपनी जांच शुरू कर दी। एसआईटी की अध्यक्षता लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन इसमें सदस्य हैं। एसआईटी के सभी सदस्य कल अयोध्या पहुंचे और अपनी जांच शुरू की। उन्होंने आयुक्त और अयोध्या के डीएम के साथ मंदिर परिसर का दौरा किया। एसआईटी को 15 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश हैं। प्रदेश में टीवी रोगों की पहचान, उनकी जांच व इलाज में पूर्वांचल के आजमगढ़, जौनपुर, बस्ती, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर जिले दूसरे जिले से बहुत पीछे हो गए हैं। इन जिलों में 36% लोगों की जाँच हुई है, जबकि इन्हें उच्च जोखिम वाला माना जाता है। इन जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को 18 दिन के अंदर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
4: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
5: धड़कता है जो हर दिल में
6: सुबह 6 से रात 12 बजे तक,
7: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो।
4: धड़कन लखनऊ की

जी 12:04 और वही प्रोग्राम जो छू लेता है हमारी प्यारी प्यारी महिलाओं के दिल को। जी हाँ बिल्कुल सही, कार्यक्रम शत्रुपा शुरू हो चुका है जिसमें आज आपकी दोस्त शिखा रहेगी आपके साथ। तो आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे के दिन हम क्या बात करते हैं, मुझे लगता है कि ये बताने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि जो हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं ना वो ये जानते हैं कि ट्यूसडे के दिन क्या बातें होती हैं। तो क्या बातें होती हैं? जी हाँ बिल्कुल सही गेस किया आपने, बातें होती हैं फैशन डिजाइनिंग की।

वही फैशन जो हम महिलाओं की खूबसूरती में लगा देता है चार चांद। तो बातें तो अभी बहुत ढेर सारी करूंगी आपसे, लेकिन एक प्यारा सा ट्रैक आ रहा है आप तक, तो चलिए उसको एंजॉय करते हैं, फिर लौट कर आते हैं और बातें करते हैं फैशन की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

जी 12:13 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं शत्रुपा अपनी दोस्त शिखा के साथ। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल 21 जून को हम सब मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। आपको पता है ये जो योग है ना ये मनुष्य को दीर्घायु बनाता है और नियमित योगाभ्यास से शारीरिक क्षमता लचीलापन और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। और अगर सच कहूं ना योग के जो फायदे अगर आपको गिनाने लगूं तो समय कम पड़ जाएगा। तो आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कपड़ों की जिनको पहनकर आप योगा कर सकती हैं बहुत अच्छे से और साथ ही आप दिख सकती हैं एलिगेंट। क्योंकि भाई कोई भी चीज़ हो कहीं पे भी जाना हो या कुछ भी करना हो हम औरतें जो हम महिलाएं हैं ना हमें एक ये बड़ी टेंशन रहती है कि हम हर चीज़ में अच्छे लगने चाहिए। तो बातें अभी हम आपसे और भी करेंगे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए आपको करना होगा ये कि जुड़े रहना होगा हमारे साथ और सुनते रहना होगा 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

जी प्यारा सा ट्रैक आपने सुना अभी, सन सना ना ना ना, सन सना ना ना, जारी जारी जारी जारी पवन। जी हाँ, ये प्यारा सा ट्रैक ये हमारी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल सी महिलाओं के लिए था, क्योंकि सच में आपके जैसा तो कोई है ही नहीं। और हर जो महिला है ना, वो इतनी खूबसूरती से बनाई गई, इतनी खूबसूरती है उसके अंदर, इतने टैलेंट हैं, तो हर एक अलग अलग इंडिविजुअल अपने में है खूबसूरती उसकी, तो कोई उसके जैसा तो हो ही नहीं सकता। जी तो 12:22 का वक्त और शिखा है आपके साथ प्रोग्राम शत्रुपाली का। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ट्यूसडे के दिन, जैसा कि आप सब जानते हैं, बात करते हैं फैशन की। और फैशन चाहे ओकेजन कोई भी हो, कुछ भी हो, अरे हमें फैशनेबल तो दिखना ही है। और हमारी जितनी भी महिलाएं ना, उनके मन में एक चीज हमेशा चलती रहती है, वो ये है कि स्लिम दिखें, ट्रिम दिखें और एलिगेंट दिखें, चाहे ओकेजन कोई भी हो। तो इस इंटरनेशनल योगा डे पे भी तैयारी तो आपकी शुरू हो गई होगी भाई, हम लेडीज हैं, हम भाई पहले से शुरू तैयारियां ना हो तो फिर क्या फायदा। तो ये जो आज का सेगमेंट है ना, ये आपकी इन तैयारियों में बहुत हेल्प करने वाला है। और बताने वाले हैं हम आपको कि किस तरीके के कपड़ों को पहनकर आप इजीली योगा कर सकती हैं और साथ ही दिख सकती हैं गॉर्जियस। तो ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा ना कि योगा भी कर सकते हैं और गॉर्जियस भी दिख सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? जी बिल्कुल हो सकता है, और एफएम रेनबो के साथ तो डेफिनेटली हो सकता है। तो आगे अभी बताऊंगी कि कौन कौन से कपड़े और कैसा हेयर स्टाइल करके और क्या क्या चीजें कैरी करके आप दिखने वाली हैं बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए एक प्यारा सा ट्रैक एंजॉय करते हैं, फिर आते हैं लौट कर और बातें करते हैं आपसे कि कौन से कपड़े कैरी करे जाएं इस इंटरनेशनल योगा दिवस पर।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
6: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
7: धड़कता है जो हर दिल में
8: सुबह 6 से रात 12 बजे तक,
5: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
6: धड़कन लखनऊ की।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
9: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
10: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी, देश के विकास में सहभागी बने।

जी दोस्तों, शिखा है आज आपके साथ प्रोग्राम क्षेत्रोपा में, और आज हम बातें कर रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे पर आप कैसे कपड़े पहन के एलिगेंट दिख सकती हैं। तो आपको बता दूं कि आपके लिए सबसे बेस्ट कपड़े वो हैं जो आपके लिए आरामदायक हो और साथ ही स्ट्रेचेबल भी। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एलिगेंट और सहज दिखने के लिए योगा पैंट्स और टी शर्ट आप ट्राई कर सकती हैं। फुल लेंथ या एंकल लेंथ स्ट्रेचेबल योगा पैंट्स के साथ एक अच्छी फिटिंग की कॉटन टी शर्ट पहन सकती हैं। जो आपको कैरी करने में इजी भी रहेगा और साथ ही आपको एक क्लासी लुक देगा। भाई, क्लासी लुक अगर पाना है और एलिगेंट दिखना है योगा दिवस पर, तो अभी तक अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो बस जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आपको फैशनेबल और स्टाइलिश दिखाने के लिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

जी 12:47 का वक्त और आज बातें हो रही हैं कि इंटरनेशनल योगा डे पर आप क्या पहन सकते हैं जिसको पहनकर आप दिख सकती हैं एलिगेंट। तो अभी प्यारा सा ट्रैक आपने सुना, कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं। जी हाँ, आप जब ये ड्रेसेस जो आज हम बता रहे हैं इसको पहनेंगी और योगा डे पे भी लोग आपसे कहेंगे कोई तुम सा नहीं। तो दोस्तों, योग के लिए कपड़ों का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कपड़ा हमेशा कॉटन, लाइक्रा या ड्राई फिट फैब्रिक ही लें। एक और ऑप्शन जो आपके लिए बेहतर हो सकता है वो है ट्रैक सूट या जॉगर्स, क्योंकि ये वर्कआउट के दौरान आपको पूरा स्ट्रेच देते हैं जिसे आप आसानी से कोई भी आसन कर सकते हैं। और एक बात, जब भी आप जॉगर्स खरीदें वो एंकल से फिट हो जाए इस बात का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है ताकि उल्टे आसन करते समय कपड़ा चेहरे पर ना आए। तो ये जरा जरा सी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आप बिल्कुल भी लगने वाली हैं स्पेशल दिस योगा डे।

जी दोस्तों 12:55 का वक्त और आज हम बातें कर रहे थे जी हाँ आज हम बातें कर रहे थे क्योंकि टाइम बहुत कम हो गया और हमें इसी टाइम में सम अप करना है, वाइंड अप करना है। तो हम आपको चीज़ें जो बता रहे थे उसको हम आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं। दोस्तों एक सबसे अच्छा ऑप्शन जो आप इस योग दिवस ट्राई कर सकते हैं वो है कुर्ती और लेगिंग्स, जो कहते हैं ना हर एज ग्रुप की फ़ीमेल के लिए बेहतर है, जिन्हें पहनकर आप योग भी कर सकती हैं और एलिगेंट भी दिख सकती हैं। सफ़ेद या हल्के रंग के घुटने तक की कुर्ती के साथ स्ट्रेट पैंट या लेगिंग्स ट्राई करें, जो शालीनता और परंपरा जो कहते हैं ना पारंपरिक जो एक लुक होता है वो आपको देगी। तो भाई ये बातें तो हुई कपड़ों की, बालों की स्टाइल भी तो बतानी पड़ेगी। तो भाई अगर आप योग करने जा रही हैं तो बालों को खुला बिल्कुल भी नहीं रखना है, एक नीट पोनी टेल बना लेंगी, मेसी बन या फ्रेंच ब्रेड बनाए जो आपके लुक को एनहांस करेगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है योग करते समय कि आपको भारी घड़ी कंगन या इयररिंग्स को कैरी नहीं करना है, आप केवल एक छोटा स्टड या हेयर बैंड पहन सकती हैं जो आपकी खूबसूरती में लगा देगा चार चांद, क्योंकि योग ना सादगी से जुड़ा होता है, इसीलिए सिंप्लिसिटी से आपका जो आत्मविश्वास

तो दोस्तों बस आज आज आज के सेगमेंट में, शत्रुपा के सेगमेंट में इतना ही, और इतनी जो चीज़ें आज आपको बता दी है ना, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली हैं बहुत। तो बस इन सब चीज़ों को अप्लाई करिए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखिए योग करने के लिए। और इसी के साथ शिखा को दीजिए इजाजत और वाइंड अप करते हैं कार्यक्रम शत्रुपा यहीं पर। और अगले प्रोग्राम में भी रहूंगी मैं आपके साथ, तो आपको कहीं नहीं जाना है, बस जुड़े रहना है और सुनते रहना है आपकी अपना चैनल, जी हाँ आपका अपना चैनल FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण को रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए योगी सरकार एक मॉडल तैयार कर रही है। प्रदेश की 7500 से अधिक गौशालाओं के जरिए गांव में पंचगव्य क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, जहां 40-40 युवाओं की टीमें उत्पादन और उद्यमिता का जिम्मा संभालेंगी। जारी एक बयान में सरकार ने बताया कि इस पहल से प्रदेश के करीब 3 लाख युवाओं को स्वरोजगार और आय के अवसर मिलने की संभावना है। महिला स्वयं सहायता समूहों, किसानों और ग्रामीणों युवाओं को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यात्री सेवाओं के साथ साथ एक बड़े कार्गो हब के रूप में भी विकसित किया गया है। योगी सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि एयर इंडिया सेट्स द्वारा विकसित कार्गो सुविधा की शुरुआती क्षमता 2 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 15 लाख मीट्रिक टन तक किया जाएगा। इससे ई कॉमर्स, निर्यात और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को नई गति मिलेगी। एयरपोर्ट के प्रथम चरण को प्रतिवर्ष 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता के साथ तैयार किया गया है। आधुनिक तकनीक, डिजिटल सुविधाओं और विस्तार की संभावनाओं के साथ विकसित यह एयरपोर्ट भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ज्येष्ठ माह के का सातवां बड़ा मंगल आज मनाया जा रहा है। सुबह से ही लखनऊ के अलीगंज स्थित पुराना हनुमान मंदिर, नया मंदिर हनुमान सेतु, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, हजरतगंज में दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, हनुमंत धाम सहित

सहित विभिन्न मंदिरों में लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। अलीगंज स्थित पुराना हनुमान मंदिर, जहां से बड़ा मंगल की शुरुआत हुई, उसके कपाट आधी रात के बाद खोल दिए गए। तब से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लखनऊ में सातवें बड़े मंगल पर हनुमान मंदिरों और भंडारे के आसपास वाहनों का ट्रैफिक बदला हुआ है। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान और कीमती सामान के कथित गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच क्षमा है आपसे, विशेष जांच दल SIT ने कल से अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन इसमें सदस्य हैं। SIT के सभी सदस्य कल अयोध्या पहुंचे और अपनी जांच शुरू की। SIT को 15 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के तहत आज एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागृति योजना 2025 के अंतर्गत विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया गया। इसी के साथ यह बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
8: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
9: धड़कता है जो हर दिल में,
10: सुबह 6 से रात 12 बजे तक
7: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
8: धड़कन लखनऊ की।

जी दोपहर की 1:05 का वक्त और ढेर सारी बातें करने के लिए हाजिर हो गई है आपकी अपनी दोस्त शिखा, कार्यक्रम होठों पे तेरी बात लेकर। तो आज भी रोज की तरह ही आपके साथ होंगी ढेर सारी गपशप और एक दिलचस्प विषय पर जानेंगे आपकी राय। तो वो टॉपिक तो अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा गाना एंजॉय कर लिया जाए।

0: इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। गौतम बुद्ध नगर ज़िले के नोएडा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से कल कॉमर्शियल परवाज़ें शुरू हो गईं। शहरी हवाबाजी के वज़ीर किंजारपू राम मोहन नायडू ने इफ्तिताही तकरीब में कहा कि यह हवाई अड्डा पूरे मुल्क में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विज़न का नतीजा है। इस दरमियान हवाई अड्डे के लिए अपनी ज़मीन देने वाले 170 किसान कल मकामी MLA धीरेंद्र सिंह के साथ लखनऊ पहुँचे और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। किसानों से बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत किसानों के मुनासिब हकूक को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है।
1: हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन वह बीच में किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा, और आप जो सोचते होंगे उससे अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने वही वहां पर करने का कार्य किया है, और मुझे प्रसन्नता है आज आपके कारण वह क्षेत्र बदल रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आपने सचमुच इतिहास रचा है।
0: वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में मुनक्किदा डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी में शिरकत की। इस मौके पर सोशल मीडिया तख्लीककारों के साथ बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 trillion की मईशत बनाना एक विज़न है और हुकूमत की मुल्क के तई एक जिम्मेदारी है, जिसे समाज के तमाम तबकात को शामिल करके एक अवामी तहरीक बनाकर ही कामयाब बनाया जा सकता है। 10 से ज़्यादा रियासतों के 100 से ज़्यादा डिजिटल असर व रसूख रखने वाले तख्लीककारों ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में हिंदुस्तान ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर मबनी गुज़िश्ता 12 सालों में

जी 1:16 का वक्त और एक बार फिर आपकी दोस्त शिकायत आपके साथ प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में। दोस्तों हर इंसान को भगवान एक सीक्रेट कोड के साथ भेजता है इस दुनिया में और वो कोड

तुझे पता है क्या है? वो है उसके अंदर छुपी उसकी खूबी, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जैसे किसी के अंदर गाने की खूबी छुपी होती है, तो कोई 2 मिनट में लोगों को हंसाने की कला रखता है। कोई डांस बहुत अच्छा कर लेता है, तो कोई आर्ट बहुत अच्छी बना लेता है। और एक खास बात ये कि हर इंसान में ये होती तो ज़रूर है, ये जो खूबी है ना, ये सीक्रेट कोड के साथ आपके अंदर होती तो ज़रूर है, लेकिन आप इसे पहचान नहीं पाते। तो आज आपको बताना है हमें ये कि आपके अंदर ऐसा कौन सा सीक्रेट कोड है या ऐसी कौन सी कला है जो आपके अंदर छुपी हुई है, और आप उसे निखारने की कोशिश कर भी रहे हैं या नहीं। तो बस इस टॉपिक पर भेज रहे हैं आपको हमें अपनी राय, और हमारी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी नोट डाउन कर लीजिए, FM Akashwani Lucknow @gmail.com।

0: जी 1:23 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं होठों पे तेरी बात अपनी दोस्त शिखा के साथ। और आज हमने आपसे एक प्रश्न पूछा है, एक टॉपिक दिया है आपको कि आपके अंदर ऐसा कौन सा छुपा हुआ कोड है जो भगवान जी ने दिया है और आपने उसको पहचान भी लिया है, लेकिन आप उसको इन अच्छा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो आप हमें बताइए हमारी ईमेल आईडी पर, और हमें ढेर सारे मेल आ चुके हैं। तो चलिए प्रवीण जी ने हमें क्या लिखा है हम पढ़ते हैं इसको। प्रवीण जी ने लिखा है, माई क्वालिटीज ऑनेस्टी हैंड हार्ड वर्किंग ओके पेशेंट क्रिएटिविटी। तो इनकी ये हॉबीज़ हैं, मतलब ये क्वालिटीज़ हैं। तो ये क्वालिटीज़ तो हैं, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जैसे बहुत अच्छी कोई हमें कोई चीज़ आती है हम उसको निखार रहे हैं, प्रतिदिन निखारना चाहिए। कहते हैं लोग अगर आप अपनी चीज़ों को अपने टैलेंट को निखारते हैं तो वो एक ना एक दिन चमकता ज़रूर है। सतीश अनेजा जी ने हमें मेल किया है, शिखा बहन जी नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। मुझ में एक विशेषता ये है कि मैं किसी भी विषय पर बिना झिझक अपने विचार दे सकता हूँ। चलते चलते कविता लिख लिया करता हूँ। इसके सिवा फोटो एडिटिंग का शौक है और हर पल मुस्कुराने की आदत की वजह से किसी भी रुस्वा को मनाने में, अच्छा किसी कोई गुस्सा भी हो जाता है तो उस वो भी मनाने की कला है इनको। हैंड राइटिंग भी अद्भुत है जिसका सैंपल आपको साथ भेज रहा हूँ। अरे वाह, क्या गजब हैंड राइटिंग है आपकी। तो देखा मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ सबके अंदर छिपा है और वो बताना है आज हमें। मोहम्मद शाहिर जी ने हमें मेल किया है, मैं अपने बड़े भाई के मोबाइल से ईमेल भेज रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ रामपुर कटरा फुलवरी बाज़ार ज़िला बाराबंकी से ईमेल कर रहा हूँ। शिखा दी आपको प्यार भरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार और प्यार भरा गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहरिया। दीदी मैं टॉपिक पर ये बात कहना चाहूँगा कि मेरे अंदर डांस करने की कला है, मैं डांस बहुत ही अच्छा कर लेता हूँ हर गाने पर, लेकिन मैं सबको जनाता नहीं हूँ। दीदी मेरे अंदर डांस की कला है, मैं ना किसी को बताता हूँ। दीदी मेरी सभी फैन फल, अच्छा सब्जी और फल की दुकान है, उसी में बैठे आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। नीम के पेड़ के तले ठंडी ठंडी हवा चले, वाह क्या बात है, नीम के पेड़ के तले ठंडी ठंडी हवा चले। तो ठंडी ठंडी हवा जब चलती है तो सच में आज के दिनों में तो बड़ा इंतज़ार रहता है कि ठंडी ठंडी हवा चले। और एक प्यारा सा गाना भी आ रहा है आप तक, तो चलिए प्यारा सा गाना इंजॉय करते हैं और फिर आकर आपसे बातें करते हैं।
1: Subscribe now and press the bell icon.

जी 1:30 का वक्त और आपकी दोस्त शिखा है आपके साथ और पढ़ रही है आपके प्यारे प्यारे से मेल। और देखिए हमारे पास विनीत कुमार जी ने मेल किया है। विनीत कुमार ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर होटो पर मेरी बात। जी बिल्कुल सही है, आप कहते हैं तो सही होगा भाई, आपकी बात तो है ही है लेकिन प्रोग्राम है होटो पर तेरी बात करने वाली शिखा बहन जी को गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहरिया का सादर प्रणाम स्वीकार करें। बहुत धूप हो रही है, गर्मियों में जहां तक हो सके चेहरे को 4-5 बार दिन में धोएं और पानी पर्याप्त पिए। सभी लोग मैं क्या लिखूं आपके मुद्दे पर, मैं तो खेती करता हूं, खेती करना मेरा काम है। तो भाई टैलेंट है, कहते हैं ना कहीं छुपा है विनीत जी टैलेंट, तो उस टैलेंट को देखिए क्या है टैलेंट आप में। ज़रूर कहते ना कि हर इंसान में कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर होता है। और उसके साथ ही इन्होंने कुछ एक संदेश भी दे दिया है। इसके बाद रामराज जी ने हमें मेल किया है। श्री गणेश शाही नमो होठों पर तेरी बात जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानु शंकर भैया पप्पू पासी मनीष नीरज मधु बजरंगी काका हमारे अंदर ईश्वर ने कुछ कलाएं दी हैं और वो हम किसी से कह नहीं सकते। धन्यवाद हमारी तरफ से आपको, प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुँचे। तो भाई देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ है ना, कि अगर कला आपको दी है तो उसको आपको किसी को बताना नहीं है, वो खुद ब खुद अपने आप आपके सामने आ जाएगी। लेकिन आपको बस क्या है, एफर्ट्स करने होंगे। एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है कि अगर आप डांस करते हैं अच्छा तो उसको दिन प्रतिदिन निखारिए। कहीं नहीं सीख रहे हैं तो आधा घंटा 15 मिनट एक ऐसा दीजिए टाइम कि कुछ ना कुछ आप एक स्टेप सीखें, कुछ चीज़ें करें। तो कहते हैं ना कि हर चीज़ आप बहुत

अच्छी कर सकते हैं। तो इसीलिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आज हमने डिस्कस लिया है आपके लिए कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हमसे शेयर करिए, और अगर आपके अंदर जो कला है वो आप उसे नहीं निखार रहे हैं तो ये गलत बात है। तो अभी थोड़ा सा जागरूक हो जाइए और पहचानिए कि आपके अंदर क्या खूबी है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग पहचान ही नहीं पाते कि हम दूसरे सामने वाला कहता है अरे तुम तो ये बड़ा अच्छा करते हो। तो अगर कोई आपसे ये कह रहा है और आपको भी लगता है थोड़ा बहुत, तो ज़रूर उसको अपने प्रयासों से, अपने एफर्ट से उसको अच्छा बनाए, उसको साकार रूप दें, और देखिए आप एक दिन ज़रूर चमकेंगे।

0: लखनऊ है तो महज गुम्बदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
4: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
5: धड़कता है जो हर दिल में
6: सुबह 6 से रात 12 बजे तक,
7: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
4: धड़कन लखनऊ की।
8: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
9: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
10: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
11: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी, देश के विकास में सहभागी बने।

जी दोस्तों, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं होठों पे तेरी बात, जिसमें आज आपकी दोस्त शिखा है आपके साथ। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया था आपसे कि आपके अंदर ऐसा कौन सा कोड है जो भगवान ने दिया है और आप उसे रिकॉग्नाइज कर चुके हैं और कुछ लोग नहीं भी करे हैं। तो अगर आप पहचान गए हैं कि कौन सी कला है आपके अंदर, तो वो कला हमें बताइए, और साथ ही आप उसको निखारने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं ये भी हमें बताइए। और आपकी ढेर सारे मेल हमारे पास आ गए हैं, और सच बताऊं कि आपके जब मेल्स देखती हूँ ना, तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है, वो खुशी हमें लगता है कि कोई और चीज़ दे ही नहीं सकती। तो अब चलिए आपको भी खुशी दे देते हैं, क्योंकि आपके मेल पढ़ने भी तो हैं। जी, हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी जी ने हमें मेल किया है। दीदी जी सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी हमें आपके टॉपिक को छुप छुप के सुनने में बड़ा मज़ा आता है, मैं तो इंजॉय करता हूँ। मैं टिकायत नगर बाराबंकी से हूँ। मैं कुछ नाम है कुलदीप, अक्ष, रिंकी, पिंकी जी और सभी लिसनर्स को। तो आपने ये जो सोनी जी हमें मेल किया है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है। आपने अपना हमें चीज़ें नहीं बताई कि भाई आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी। देखिए, क्वालिटी तो सबके अंदर है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई गाना बहुत अच्छा गाता है, कोई डांस बहुत अच्छा करता है, कोई बातें बहुत अच्छी बनाता है, तो कोई खाना बहुत अच्छा बनाता है, कोई पेंटिंग कर लेता है, तो कोई किसी को, कोई रूठा हुआ है तो उसको पल भर में मना लेता है, ये भी कला ही है एक। किसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, कोई अपनों का ख्याल भी रखता है बहुत कायदे से, तो ये भी एक तरीके की कला होती है। सब कहाँ एक दूसरे का ख्याल रख पाते हैं। तो आपके अंदर जो जो भाई है, वो हमें ज़रूर से बताइए कि आपके अंदर कौन सी ऐसी कला है जो छुपी हुई है। तो बसंत कुमार सिन्हा जी ने हमें मेल किया है अभी आपका। अच्छा, इन्होंने हमें गाने, फिल्म का गाना, तो अभी आपका ये जो प्रोग्राम रेनबो हॉल्ट मेल होगा ना, उसमें हम आपका गाना ज़रूर बजाएंगे। विजय कुमार जी ने हमें मेल किया है। विजय कुमार पानी खेरा, नंदौली पोस्ट, अरोहा, उन्नाव। अच्छा, तो कुछ लोगों ने हमें गाने पहले से भेजने स्टार्ट कर दिए हैं कि भाई हमारे गाने ये ज़रूर प्ले कर दिए जाएं।

तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके गाने आप तक जरूर पहुंचाएं। बाबू अंसारी, गुड आफ्टरनून। शिखा मैम, कैसी हैं आप? टॉपिक पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे तो इस तरह की कोई खूबी नहीं है मेरे अंदर, मैं हर चीज़ बर्दाश्त करने की खूबी है, मुझे लगता है मुझे हर चीज़ बर्दाश्त करने की खूबी है और बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत है। तो देखिए, मैंने कहा ना कि खूबी कोई होती है, खूबी कोई ना कोई तो ऐसी होती है जो है आप लोगों के अंदर। तो ये भी एक कला ही है कि भाई किसी को सह लेना, किसी को बर्दाश्त कर लेना, ये भी एक कला ही है। जी रामेश्वर जी ने हमें मेल किया है, होठों पर तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुत करता बहन शिखा जी, सप्रेम नमस्कार। हम आपका प्रोग्राम बराबर सुन रहे हैं बहन शिखा जी, आपकी प्रस्तुति क्या लाजवाब है, जिसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। पहले हम ड्रेस बहुत अच्छा कर आई थिंक डांस लिखना चाह रहे थे, अब मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा एक पैर एक हाथ खराब हो गया, घर पर ही रहते हैं, ग्राम व पोस्ट मुंगिसापुर कानपुर देहान से, रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र बधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद बहन शिखा जी को। तो कोई बात नहीं, देखिए कुछ होती हैं चीज़ें, अब उसके लिए क्या ही कह सकते हैं, कुछ कहते ना शब्द कम हो जाते हैं। लेकिन आपकी जो कला थी वो आपके साथ हमेशा रहेगी, और हम तो सोचते हमारा ये मानना है कि जितने भी आपके अपने हैं आप उनसे कहिए कि अगर उनके अंदर कुछ कला है तो उसको ज़रूर से निखारें। तो मुझे लग रहा है भाई बातें तो बहुत ढेर सारी हो गई हैं कि हमारे जो लिसनर्स हैं ना वो सोच रहे होंगे शिखा कितना बातें करती है। तो बातें तो करने मैं आई हूँ आपके साथ, लेकिन गाने भी लेकर आई हूँ आपके लिए। तो एक प्यारा सा ट्रैक आप तक भेज रही हूँ, तो चलिए इंजॉय करते हैं हम और आप दोनों ये प्यारा सा ट्रैक।

जी 1:50 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं होठों पे तेरी बात। और देखिए ना, आपके साथ जब बातें करते हैं, इतने प्यारे प्यारे से गाने सुनते हैं, तो टाइम कैसे चुटकियों में गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तो वारिस अली खान जी ने हमें मेल किया है, शिखा जी गुड आफ्टरनून, मैं एक अधिवक्ता हूँ, मुझे लिखने का शौक है, उसका एक नमूना पेश कर रहा हूँ। आंखों में जो आए अश्क, होगी मोहब्बत की तौहीन, इसलिए अश्क पी रहा हूँ आबे हयात समझकर। वाह क्या बात है, और बड़ी अच्छी बात आपने लिखी और बहुत सुंदर लाइन्स आपने लिखी हैं। और हमारे पास विजय कुमार जी ने मेल किया है, इन्होंने प्रोग्राम हॉट मेल समझकर फ़ोन किया है, तो कोशिश है कि हम आपका गाना हॉट मेल में ज़रूर प्ले करें। तालिब अंसारी जी ने हमें मेल किया है, तालिब अंसारी बाराबंकी, गुड आफ्टरनून शिखा जी, मेरी हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत है, क्लास 10th में मेडल मंडल में तीसरा स्थान मिला था, और हैंडराइटिंग में नेक्स्ट बार आप आएंगी तो भेजेंगे पिक, आज बिजी हैं थोड़ा शिखा मैम। और हमारे पास गुलफ्सा सिद्दीकी ने मेल कर दिया है, लिखा गुड आफ्टरनून शिखा मैम, मैं गुलफ्सा सिद्दीकी संडीला से, मेरे अंदर ये खूबी है कि मैं जारी काम बहुत अच्छे से कर ले, सारे कामों का आई थिंक है ना, जारी सारे काम मतलब लिखना चाहिए था, बहुत अच्छे से कर लेती हूँ और मेरे काम की तारीफ भी होती है, मैं अभी भी ये काम करती हूँ।

देखिए, हर मैंने कहा था ना कि हर एक के अंदर कुछ ना कुछ खूबी ज़रूर होती है, और वो आप सब हमसे शेयर करें, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि कितनी खूबियाँ हैं आपके अंदर। और हमारे पास एक और नरेंद्रक सुथर जी ने फ़ोन किया है, वो मेल किया है, सॉरी। नमस्कार शिखा दीदी, आज का टॉपिक बहुत शानदार है। हर कोई इंसान में अलग अलग अपना हुनर और कला होती है। मेरी एक ख़ास बात है, कोई भी मुझे बुरा भी बोल दे तो मैं बड़े प्यार से उसका जवाब देता हूँ, बड़ी शिद्दत से पेश आता हूँ, बोलने वाला एकदम शांत हो जाता है। और कारपेंटर हूँ। अच्छा, कारपेंटर हूँ, हाथ की कला से फर्नीचर बनाते हैं। नोहर ज़िला हनुमानगढ़ राजस्थान से इन्होंने हमें मेल किया है, नरेंद्र सुथार। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा नाम अपना डिफरेंट वे में लिखा था आई थिंक। और आप सबने हमें मेल किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया कि इतना प्यारा प्यारा मेल, और आपने हमें सारी चीज़ें बताई। देखिए, एक बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने हमसे डिस्कस करी। अच्छा, ये बात भी बहुत अच्छी इन्होंने एक लिखी ना कि मैं जो है, मुझे कोई भी कुछ भी कह दे तो मैं बड़े प्यार से लोगों को समझाता हूँ, और उसके बाद मैं जब कुछ बोलता नहीं हूँ तो सामने वाले का जो बिहेव है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है।

0: जी, तो अपनी अपनी कला को आप लोग बिल्कुल उसको बढ़ाइए, उसको उसको अपने एफर्ट से और चमकाइए, और एक साथ ही प्यारा सा गाना भी इंजॉय कर लें। तो हमारे श्रोता बहुत देर से इंतजार करेंगे, तो चलो एक प्यारा सा गाना और उसमें डांस भी करा जा सकता है, ये प्यारा सा ट्रैक है आपके लिए।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

जी वही 1:58 का वक्त, और ये वक्त कह रहा है कि भाई टाटा बाय बाय करना होगा प्रोग्राम होठों पे तेरी बात से, और आपसे इस वादे के साथ कि प्रोग्राम रेनबो हॉटमेल में फिर रहूंगी आपके साथ। तो बस बने रहिए, सुनते रहिए।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से भारत और स्लोवाकिया के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो को धन्यवाद दिया। उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण को रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए प्रदेश सरकार 7500 से अधिक गौशालाओं के जरिए गांव में पंचगव क्लस्टर विकसित करेगी, जहां 40-40 युवाओं की टीमें उत्पादन और उद्यमिता का जिम्मा संभालेंगी। इस पहल से प्रदेश के करीब 3 लाख युवाओं को स्वरोजगार और आय के अवसर मिलने की संभावना है। महिला स्वयं सहायता समूहों, किसानों और ग्रामीण युवाओं को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने आज लखनऊ में कहा कि केंद्र सरकार 140 करोड़ भारतीयों की सेवा में निरंतर लगी हुई है और इससे आम जनमानस को बेहद लाभ पहुंचा है। केंद्र की मौजूदा एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री खन्ना ने कहा कि मेडिकल शिक्षा में देश ने बहुत विकास किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, इसके चलते आम जनमानस को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से मिल पा रही हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर के बीएलजे ग्राउंड में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई विकसित भारत प्रदर्शनी का फीता काटकर किया शुभारंभ। केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की 12 वर्ष की उपलब्धियों एवं प्रदेश सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों के साथ स्थानीय उपलब्धियों और विकास कार्यों को प्रदर्शित किया। ज्येष्ठ माह का 7वां बड़ा मंगल आज श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही लखनऊ के अलीगंज स्थित पुराना हनुमान मंदिर, नया मंदिर हनुमान सेतु, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, हजरतगंज में दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर, हनुमंत धाम सहित विभिन्न मंदिरों में लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। लखनऊ में 7वें बड़े मंगल पर हनुमान मंदिरों और भंडारे के आसपास वाहनों का ट्रैफिक बदला हुआ है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित होगा।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
4: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
5: धड़कता है जो हर दिल में
6: सुबह 6 से रात 12 बजे तक,
7: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
4: धड़कन लखनऊ की।
8: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
9: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
10: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण,
11: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी, देश के विकास में सहभागी बने।

आपके चेहरे की हंसी देख सुकून मिलता है, आपके चेहरे की हंसी देख सुकून मिलता है, हर गम का फूल खुशियों में बदलता है। आपके चेहरे की हंसी देख सुकून मिलता है, हर गम का फूल खुशियों में बदलता है। ये अपने ही तो है जहां की दौलत, जिनके होने से हर लम्हा खूबसूरत लगता है। जी हाँ, इन्हीं प्यारी सी लाइंस के साथ एक बार फिर आपकी दोस्त शिखा हाजिर हो गई है कार्यक्रम रेनबो हॉटमेल लेकर। तो इस घंटे होगा फुल म्यूजिकल धमाल, जिसके लिए आपको रहना होगा हमारे साथ और पढ़ूंगी आपके प्यार भरे मेल्स। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपकी मेल्स देखते हैं तो जो खुशी होती है, आपका जो प्यार का एहसास होता है, वो इन मेल्स के थ्रू हमें मिलता है। तो आपकी जो ये प्यार भरे मेल्स हैं वो हम जरूर से पढ़ेंगे और इस घंटे प्ले होंगे सिर्फ आपके ही गाने। तो बस आपको करना है ये कि आपको भेजना है हमें मेल्स, और हाँ, मेल्स कहाँ पे भेजना है? मेल हमें भेजना है हमारी मेल आईडी पर। हमारी मेल आईडी है fmakashwanilakhnow@gmail.com। तो आप हमें मेल्स भेजिए और साथ ही अपने गाने लिख भेजिए, और साथ ही डेडिकेशन भी, कि आप वो गीत किसको डेडिकेट करना चाहते हैं। तो हमें है आपकी मेल्स का बेसब्री से इंतज़ार, और हम मेल्स पढ़ेंगे लेकिन इस प्यारे से ट्रैक के बाद।

जी 2:12 का वक्त और प्रोग्राम वही आपके दिल को छू लेने वाला रेनबो हॉट मेल, जिसमें शामिल करते हैं हम आपके ही गीत और पढ़ते हैं आपके मेल्स। तो ये टाइम है आपके मेल्स को पढ़ने का। सतीश अनीजा जी ने हमें मेल किया है। नमस्कार शिखा बहन जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितने खुश हो, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हारी वजह से लोग कितने खुश हैं। कितनी अच्छी बात आपने लिखी। इन्होंने चंडीगढ़ सिटी से हमें मेल करा है, सतीश अनीजा, बिमला अनीजा, और हमारे

0: पास शहनवाज जी ने मेल कर दिया, हेलो माई रेनबो फैमिली। वाह, ये बात आपने बहुत अच्छी लगी कि लिखी कि आपकी जो फैमिली है तो हम सब आपकी फैमिली ही हैं। कर रहा हूँ और हैदराबाद तेलंगाना से मैं रहने वाला हूँ, लखीमपुर खीरी का हूँ। ये कुछ लाइनें उनके लिए जो अपने घर से दूर रहते हैं। गांव गली का हर पत्थर याद आने लगता है, गांव गली का हर पत्थर याद आने लगता है, शाम होते ही घर याद आने लगता है। फगुरम यादव जी ने हमें मेल किया है, सप्रेम नमस्कार जी, और एक प्यारे से ट्रैक की फरमाइश करी है। संबलपुर कांकेर से फगुरम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। अब्दुल गफ्फार जी ने हमें मेल किया है, प्रोग्राम प्रसारक जी आदाब जी, किसी भी गीत में हमें शामिल कीजिए, आपकी पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए। नागचून रोड संजय कॉलोनी खांडवा से इन्होंने हमें मेल किया। अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे। और हमारे पास मेल आ चुका है, रोजी डिकेस्ट्रो जी ने हमें मेल किया है। गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड होस्ट जी, जनकपुरी सहारनपुर से इन्होंने मेल किया है। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो, और इन्होंने एक प्यारी से ट्रैक की फरमाइश करी है। तो रोजी जी, हमारी पूरी कोशिश है कि हम आप तक ये ट्रैक ज़रूर पहुँचाएँ। और वकील अहमद जी ने हमें मेल किया है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ अच्छी है, बहुत अच्छी लगती है, हॉटमेल अच्छा लगता है, गाने के बोल जेठ। अच्छा, इन्होंने एक प्यारे से ट्रैक की फरमाइश करी है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम आप तक पहुँचाएँ। वकील अहमद, मसूरी कटका, हथुरी ज़िला, सीतापुर, साहिब अंसारी, साजी अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफसा सिद्दीकी, अहमद नवाब। और हमारे पास अजमत अली जी ने मेल कर दिया, हेलो मैम, आज मैं RRB NTPC का पेपर देने गया था, प्रे करना मेरे लिए, मेरा सिलेक्शन हो जाए, फ्रॉम सुल्तानपुर ज़िला सीतापुर। तो बिल्कुल हमारी तो ये प्रे है कि भाई आप लोगों ने जो भी एग्ज़ाम्स दिए हैं आप उसमें सक्सेस हों, सफल हों। और हमारे पास मेहर अरोरा जी का मेल आया है, ये मेल हम पढ़ लें फिर जो ट्रैक आपने हमें लिख भेजे हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि पहुँचाएँ आप तक। पदमपुर ज़िला श्रीगंगानगर राजस्थान से इन्होंने मेल किया है, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, और इन्होंने एक प्यारे से ट्रैक की फरमाइश करी है। तो वो गीत देखिए, जो गीत जितने भी बजेंगे ना, मैं नाम नहीं लेती, स्पेशली नाम नहीं लेती, क्योंकि मुझे लगता है जब ये गीत आप तक पहुंचते हैं तो वो जब गीत आप सुनते हैं तो वो खुशी ही अलग होती है। तो चलिए, ये गीत आ रहा है आप तक, आपकी ही पसंद का।
1: बस यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

जी 2:24 का और प्यारे प्यारे ट्रैक्स आप तक पहुंच रहे हैं और आपकी ही पसंद के ये ट्रैक हैं भाई। तो हमारे पास अब मेल पढ़ने की बारी है, क्योंकि जितने भी मेल हमें भेजते हैं हमारे लिसनर्स, उनका ये रहता है कि भाई उनके नाम उन तक पहुंच जाए, उनके नाम ज़रूर से शामिल हो जाएं। तो चलिए हम पहले मेल पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। जी हाँ, वारिस अली खान जी ने हमें मेल किया है। शिखर जी को खान परिवार का प्यार भरा नमस्कार। माँ बाप का हाथ पकड़ कर रखिए, दूसरों के पांव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक प्यारे से ट्रैक की फरमाइश करी है एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर ऐशबाग। और हमारे पास बोधराज खोरवाल जी ने मेल किया है, एक प्यारे से ट्रैक की फरमाइश करी है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। और हमारे पास उत्तम कुमार जी ने मेल किया है, क्या बात है शिका जी, सिर्फ गीत ही नहीं नहीं बिल्कुल भाई, गीत तो बजेंगे ही बजेंगे, आपका नाम भी शामिल होगा। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना क्या होता है, हमारे लिसनर्स इतने ढेर सारी मेल की कतार हमारे पास लगी होती हैं और सबका मन होता है ना कि भाई हम अपना नाम पढ़ लें, और हमारा भी मन करता है कि हम आपके मेल्स पढ़ते जाएँ। तो गाने तो आप तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, और साथ ही आपके जो ये मेल्स हैं उसको भी मैं पूरी तरह कोशिश है हमारी कि हम सारे ही मेल्स पढ़ें। उत्तम कुमार भगत जी ने हमें मेल किया है पाकुड़ झारखंड से, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु, ताशु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बोहड़ा गाछी, पश्चिम बंगाल, मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। तो हमारे पास से मेल आ चुका है और इतनी ढेर सारे। यासीन अनजान जी ने, आदरणीय दीदी जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहिए, प्रोग्राम पेश करते रहिए, किसी भी गीत में शामिल कर ले। मलेर कोटला पंजाब से मुस्कान खातून, साविया खातून, नीलू जी, बेबी आलिया। और हमारे पास कौशिक जी का मेल आ चुका है राजकोट गुजरात से, इन्होंने मेल किया है, कौशिक, अस्मिता, मम्मी पापा महेश, वडवाड़ा परिवार, हेलो नमस्ते शिखा जी, केम छो, मजामा, बिल्कुल मजामा, गुड आफ्टरनून सॉन्ग इन्होंने एक प्यारा सा भेजा है। तो हमारी कोशिश है कि हम आप तक ज़रूर पहुंचाएं। और मल्होत्रा टी डी मोहाली जी ने हमें मेल किया है, टी डी मल्होत्रा, रितिका मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से, शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। और इन्होंने एक गाना लिखा है, कोशिश है कि हमारी आप तक पहुंचाएं वो गीत। ताज मोहम्मद जी ने हमें मेल किया, आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार, आदरणीय प्रसारक जी आप हमारी फरमाइश किसी भी गीत के साथ शामिल कीजिए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब, साबिर राही महराज, जहाँ आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से इन्होंने मेल किया है हमको। और सेक्टर गूगल मेल कुछ करके नाम इन्होंने लिखा है, अच्छा मैं पढ़ चुकी हूँ ये, मुझे लग रहा है किसी और मेल से इन्होंने हमें, आफ्ताब अंसारी जी ने हमें मेल किया है, शिखा जी को प्यार भरा आदाब, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहिए, सबको खुशियाँ बांटते रहिए, आपका प्रोग्राम पेश करने का अंदाज़ बहुत ही शानदार है और बहुत ही प्यारे से गीत की फरमाइश करी है, तो हमारी कोशिश है कि हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो अब मेल्स तो हमारे पास बहुत ढेर सारे हैं और हम उन सारे मेल्स को ही शामिल करेंगे, लेकिन एक प्यारा सा गाना आ रहा है, वो आपकी ही फरमाइश का है।

देश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

जी 2:35 हो चुके हैं और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेनबो हॉटमेल अपनी दोस्त शिखा के साथ। और बहुत ढेर सारे हमारे पास मेल आ चुके हैं। सीताराम कागरा जी ने हमें मेल किया है, नमस्कार जी, फिल्म एक लिखा है, इन्होंने गीत लिखा है और थैंक्स बोला है एकता कॉलोनी रोहतक से, सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट। और हमारे पास दीपेश जी ने मेल किया है, लिखा है नमस्कार जय जौहर, ग्राम पीपल लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से इन्होंने हमें मेल किया है। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, और एक गाने की फरमाइश करी है तो कोशिश है कि हम आप तक ज़रूर पहुँचाएं। मोहम्मद सादिक खत्री जी ने हमें मेल किया है, प्रोग्राम हॉट मेल, मोहतरमा शिखा जी पुर अच्छा आदाब, नगमा आपकी पसंद का कोई भी सदा बहार सुना दीजिए। फरमाइश करते हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, और गोगावा से जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इसहाक लोला मानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेल शामिल करने के लिए। और इन्होंने लिखा है स्वरण सिंह जी ने हमें मेल किया है, नमस्कार गांव लोगड़ा ठाकुरा वाला से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, कोई भी गीत सुना दीजिए और हमारा नाम ज़रूर शामिल करिए, धन्यवाद। और जय ने हमें मेल किया है, हमारा नंबर कब आएगा जी, जी आ लीजिए आपका नए नंबर आ गया भाई। और होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, और एक प्यारे से गीत की फरमाइश करी है, कोशिश है कि ज़रूर आप तक पहुँचाएँ। राधेश्याम शर्मा जी ने मेल किया है और तो एक बहुत ही प्यारे से ट्राई की फरमाइश करी है, गांव हांडीखेड़ा ज़िला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, धन्यवाद। और हमारे पास बाबू अंसारी जी ने मेल कर दिया है, गुड आफ्टरनून शिखा मैम, मुझे ये गाना सुनवा दीजिए। जी बिल्कुल, हमारी कोशिश है कि हम आप तक पहुँचाएँ, गाना डेडिकेट।

इन्होंने किए हैं माय रेडियो दोस्त कुलदीप गुप्ता, महेंद्र दीपन, फैज अंसारी और गौश मोहम्मद अंसारी जी को। तो पूरी कोशिश रहती है कि आप अच्छा आपके गीत आप तक पहुंचाएं। तारा सिंह जी ने हमें मेल किया चौटाला हरियाणा से, दारा पंडित, प्रियंका शर्मा, राजा राजू प्रजापत गाने के बोल हैं ये, इन्होंने गाना लिखा है हमें भेजने के लिए, बिल्कुल हम आप तक भेजते हैं वो गीत। और विजय महोबिया जी ने हमें मेल कर दिया है, शिखा जी नमस्कार, आज के खूबसूरत गीतों में अगर हो सके तो हमारी पसंद पर ये गीत सुना दीजिए, इनायत होगी और आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन। अच्छा गाने के बोल मैंने पढ़ लिए, मुझे लगा कुछ लाइंस लिखी हैं। फिल्म इन्होंने लिखा है और विजय महोबिया, कविता महोबिया, पेंटर बाबू, रामगंज, खंडवा, मध्य प्रदेश से इन्होंने हमें मेल किया है और आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और धन्यवाद तो मैं आपका आप सबका कहना चाहती हूँ कि आप इतना प्यार भरा मेल हमें करते हैं, इतने प्यार से इतना डेकोरेटिव मेल करते हैं। और ये जो मेल है ना, ये सिर्फ मेल नहीं है, ये आपका प्यार है, ये एहसास है हमारी फैमिली, जी हाँ जो FM फैमिली है उसके लिए आपका ये प्यार और एहसास है। तो चलिए प्यारा सा ट्रैक आप में से ही किसी की पसंद का आ रहा है आप तक।

0: सस्ती है उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
3: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
4: धड़कता है जो हर दिल में
5: सुबह 6 से रात 12 बजे तक,
6: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
3: धड़कन लखनऊ की।

जी 2:46 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेनबो हॉट मेल अपनी दोस्त शिखा के साथ। तो अभी आपने दो बैक टू बैक गाने एंजॉय करे और अब बारी है आपके मेल पढ़ने की। तो हमारे पास साई गायकवाड़ जी ने मेल किया है। सादर नमस्कार जी, शिखा दीदी कैसी हो आप? हॉट मेल बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है हमें। सभी गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। और एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की फरमाइश करी है, ओम रेडियो श्रोता संघ कॉलोनी कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़। तो हमारी पूरी कोशिश है कि आप तक आपका गीत ज़रूर पहुंचाएं। मुकेश कश्यप जी ने हमें मेल किया है, ज़िला मुरादाबाद से, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, किसी भी गीत में हमें शामिल करें। अहमद फूल वाले जी ने हमें मेल किया है, शिखा बहन जी को सादर नमस्कार, आदाब व नमस्कार, आपने आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई है। अगर मेरा मेल अभी तक शामिल नहीं हुआ, मेरा नंबर कब आएगा? बहन जी ये लीजिए, आपका नंबर आ गया, प्लीज़ मेल हमारे मेल को ज़रूर शामिल कर लें। और इन्होंने गाने की फरमाइश करी है, छोटी बलिया कर्जत मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, कापस से हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना, नसरीन आसमा परी, राव्य मंतशा, आशु अहमद फूल वाले लखमीनिया जिला बेगूसराय से, शमीम अहमद राइन अखलाक अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले परिवार। और हमारे पास रविंद्र मोहन दास जी ने मेल किया है, कोई भी गीत सुना दीजिए, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी। और शमशूल कमर राही गंज डुंडवारा से हमें मेल किया है, आरजे जी आदाब, एनी सॉन्ग गंज डुंडवारा से शमशूल कमर राही।

शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, थैंक यू सो मच। और रविंद्र मोहनदास जी ने, अभी हम मेल इनका पढ़ चुके हैं, और नरेश जी ने मेल किया है, नमस्कार जी आपको आरजे जी, थक गए हैं दीदी जी, अब हमें शामिल करना, हम

शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, थैंक यू सो मच। और रविंद्र मोहनदास जी ने, अभी हम मेल इनका पढ़ चुके हैं, और नरेश जी ने मेल किया है, नमस्कार जी आपको आरजे जी, थक गए हैं दीदी जी, अब हमें शामिल करना, हमें दीदी जी प्लीज़ प्लीज़ लगता है आप हमें शामिल नहीं करोगे, बस अपनों को शामिल करेंगी दीदी जी सी मेल, और ईमेल भी नहीं भेजेंगे भी शामिल करें ना करें कभी जी, दीदी जी प्लीज़ नाम पूरा पढ़ दें। और खैर बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविका सिक्का, शुक्रिया हमें शामिल करने के लिए। तो नरेश जी मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई आप सब मेरे अपने हैं, हम सब के जो आप लोग हैं ना, आप, मैंने कहा एक फैमिली है, हम सब एक फैमिली है, तो आप उस फैमिली का हिस्सा हैं, आप ये मत सोचिए कि कोई हमारा स्पेशल कोई अपना है, आप सब हमारे, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके मेल्स और आपके सभी गीतों को शामिल करें। तो नाराज़गी जताइए लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि हम, मतलब हम आपके स्पेशल मेल क्यों नहीं शामिल करेंगे, तो बिल्कुल ये मत सोचिए। कभी कभी क्या होता है, इतने ढेर सारे हमारे पास मेल आते हैं और नहीं दिखता है या ऊपर नीचे हो जाते हैं मेल, तो स्किप हो गया, अदरवाइज़ हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके सभी मेल, कभी कभी क्या होता है हम आपके मेल्स नहीं पढ़ पाते तो हम आपके नेम्स भी ले लेते हैं। तो अभी लास्ट में मेरी कोशिश है कि मैं सब लोगों के मेल, जिन्होंने हमें मेल किया है, अपना कीमती प्यार और हमें अपना एहसास दिया है इन मेल्स के थ्रू, तो हम उन सब के नाम पढ़ लें। तो इसके लिए मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग मेरे हमारे अपने हैं, मेरे अपने नहीं हमारे अपने हैं, क्योंकि हमारी ये पूरी फैमिली है, रेनबो जो FM रेनबो फैमिली है ना, उसका आप एक हिस्सा हैं। तो चलिए प्यारा सा ट्रैक आ रहा है आप तक आपकी ही फरमाइश का, तो चलिए हम सब इन्जॉय करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं आपसे एक चीज़ कि भाई इन्जॉय करिए, गाना कोई भी हो लेकिन आपको इन्जॉय करना है।

जी 2:54 का वक्त, और ये वक्त कह रहा है कि कितनी जल्दी समय बीत गया ना। और आपके लिए आपका जो मेल्स आए हैं, आपके मेल्स, प्यारे प्यारे मेल्स को हमने शामिल किया है, और बहुत लोगों के मेल्स मैं सच बता रही हूँ छूट गए हैं, लेकिन मैं उन सब के नाम, कोशिश है कि सबके नाम ले लूँ और आपकी जो नाराज़गी है वो दूर कर लीजिए, क्योंकि ये सोच लीजिए कि आप सब लोग बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हम सबको। तो आप सभी के नाम मैं पढ़ने जा रही हूँ। रामेश चौहान, तुलसी मस्कीन जी ने हमें मेल किया है, संतोष चौरसिया जी ने मेल किया है, मूसा शेख जी ने हमें मेल किया है, शहरूर नूर अंसारी जी ने, कमलकांत गुप्ता जी ने, भाई मूसा शेख जी ने, हीरामणि वर्मा, भाई मूसा शेख, सुवर्ण सिंह, न्यू मिशन, तुलसी मस्कीन, शेख मूसा, एमन नवाब, मोहसिन रजा, डी के हिंदुस्तानी, ब्रह्मेश जी का मेल आया है, शमशूल कमर रायगंज जी कुंज डिंडवारा से इन्होंने मेल किया था, उदय भान पाल जी का मेल आया है, रविंद्र मोहन दास जी का मेल आया है, और अहमद फूलवाले जी ने मेल किया है, शमशूल कमर राजी राही और नरेश जी ने मेल किया है, मुकेश कश्यप जी ने मेल किया है, और हमारे पास साई गायकवाड़ जी का मेल आया है, राहत हुसैन जी ने मेल किया है, हमारे पास अंकित कागरा जी ने मेल किया है, वारिस अली खां जी ने मेल किया है, हीरामणि वर्मा जी ने मेल किया है, शहरूर नूर अंसारी जी ने मेल किया है। तो आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमें मेल किया, और नाराज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। और आज आपके गाने अगर किसी वजह से नहीं प्ले हो पाए, क्योंकि समय हमारे पास सीमित होता है, इसी बीच में आपके मेल्स भी पढ़ने होते हैं और आपके जो गीत हैं वो भी आप तक पहुँचाने होते हैं, तो बिल्कुल भी नाराज़गी जायज़ है, अपने से करते हैं नाराज होना बहुत जायज़ है कि आप अपने से ही गुस्सा निकाल सकते हैं, लेकिन उतना गुस्सा बिल्कुल मत होइए, क्योंकि आप सभी लोग इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ। तो आप बस जुड़े रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। तो इसी के साथ शिखा को दीजिए इजाजत, मिलती हूँ अगले प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर माई गांव की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार स्वीकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। माई गांव पोस्ट में पिछले 12 वर्षों में देश के बुनियादी ढांचे में आए बदलावों का उल्लेख किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जन भागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संवाद 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए श्री बिरला ने कहा कि लोकतंत्र देश की कार्य संस्कृति और विचार प्रक्रिया का अभिन्न अंग बना हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र में सक्रिय और समावेशी भागीदारी आवश्यक है। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने आज लखनऊ में कहा कि केंद्र सरकार 140 करोड़ भारतीयों की सेवा में निरंतर लगी हुई है और इससे आम जनमानस को बेहद लाभ पहुंचा है। केंद्र की मौजूदा एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री खन्ना ने कहा कि मेडिकल शिक्षा में देश ने बहुत विकास किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है। शाहजहांपुर के जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने आज हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट वर्ष 2026 की परीक्षा के मेधावी छात्रों को कमला विश्व नारायण अवार्ड 2026 से सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास से ही सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने विद्यार्थियों से भविष्य में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जनपद और प्रदेश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 68 वर्ष बाद पहली बार एक ही दिन में 4 मैच ड्रॉ खेले गए। पहला मुकाबला केप वर्डे और स्पेन के बीच गोल रहित ड्रॉ खेला गया। दूसरे मुकाबले में बेल्जियम और मिस्र एक एक की बारी बराबरी पर रहे। तीसरा मैच उरुग्वे और सऊदी अरब के बीच एक एक से ड्रॉ रहा। आखिरी मैच ईरान और न्यूजीलैंड के बीच 2-2 से अनिर्णित समाप्त हुआ। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित होगा।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
4: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
5: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
6: धड़कता है जो हर दिल में
7: सुबह 6 से रात 12 बजे तक,
4: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो।
5: धड़कन लखनऊ की।

जी 3:06 का वक्त और प्रोग्राम वही जो लाता है हर रंगों को समेट कर आपके पास। जी बिल्कुल, प्रोग्राम शुरू हो चुका है सतरंगी दुनिया, जिसमें आज आपकी दोस्त शिखा रहेगी आपके साथ। और बातें करेंगे जिंदगी के एक बहुत ही खास रंग को लेकर, जो जुड़ा होगा आपकी जिंदगी से और कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करता होगा। तो बस इसके लिए क्या करना है आपको, आपको करना ये है कि जुड़े रहना है अपनी दोस्त शिखा के साथ और सुनते रहना है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी 3:11 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सतरंगी दुनिया अपनी दोस्त शिखा के साथ। तो दोस्तों एक बात भाई, अब गर्मियों की जो छुट्टियां हैं ना वो होने वाली हैं खत्म, और बहुत कम दिन बचे हुए हैं ना। जी हाँ, हमको लगता है मुश्किल से 14 या 15 दिन बचे होंगे गर्मी की छुट्टियां खत्म होने में, या यूं कहें कि हम बच्चों के साथ खुद भी एक एक करके दिन को गिनते जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो रिमेनिंग हॉलीडेज हैं, जी हाँ, ये जो 13-14 दिन की छुट्टियां जो बची हुई हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि प्लान्स तो बहुत बने हुए होंगे, बहुत ये मतलब घूमना घूमा गया होगा, यहाँ जाना वहाँ जाना सब कुछ हो गया होगा, लेकिन जिन चीज़ों को और भी करना चाहिए था वो सब हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। और मुझे लगता है कि जितने भी लिसनर्स हमारे सुन रहे हैं बिल्कुल ध्यान लगाकर कान लगाकर सुन रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें इग्नोर करी हैं, और हो सकता है उनका दिल भी जानता हो कि क्या क्या वो इग्नोर कर रहे थे। तो अभी ये जो छुट्टियां हैं ना उनको आपको भाई अब उसको यूज़ करने का टाइम आ गया है। तो अभी हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी हैं इन बची हुई छुट्टियों में। तो हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा ट्रैक एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लिसनर्स हमारे वेट कर रहे हैं कि एक प्यारा सा ट्रैक आ जाए उन तक। तो चलिए ये आ रहा है आप तक।

उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in

0: एन के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
2: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
3: धड़कता है जो हर दिल में
4: सुबह 6 से रात 12 बजे तक
1: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
2: धड़कन लखनऊ की।

जी तो दोस्तों 3:19 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सतरंगी दुनिया अपनी दोस्त शिखा के साथ। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं जी हाँ, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, तो ये जो रिमेनिंग डेज हैं, जो ये बचे हुए दिन हैं, जो 14-15 दिन की या क्यों कहें 13-14 दिन की ये जो छुट्टियां हैं, जो हम एक एक करके गिन रहे हैं कि आज खत्म, आज एक दिन हो गया, कल इतना है तो कल इतने दिन बचे हैं, तो ये जो एक एक करके दिन बच रहे हैं तो इनको हमें कैसे यूटिलाइज करना है। तो अब आपको मैं बता दूं कि भाई जो बच्चों का होमवर्क मिला था तो सबसे पहले भाई उसकी जांच पड़ताल जरा शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो घूमने जाना था, कहीं इधर गए, कहीं वहाँ गए, किसी के घर गए, कहीं प्लान हमारा ट्रिप का था तो कहीं कहीं गए, तो मतलब और नहीं भी अगर जाना हो पाया तो हमने उन छुट्टियों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करा, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई घर में, बच्चों को खूब इन्जॉय कराया और बच्चों के साथ खूब इन्जॉय किया। लेकिन अब जो समय बचा है उसमें जो बच्चों का होमवर्क मिला था भाई, जो कहीं इधर उधर रखा है, उसको अब देखने की बारी आ गई है। तो अगर अभी तक आपने बच्चों का होमवर्क नहीं करवाया था तो सबसे पहले उसको देखिए कि किन किन स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है और कैसे अपने बच्चों को वो होमवर्क कंप्लीट करवाना है, क्योंकि इस छुट्टियों की जब स्टार्टिंग हुई थी तो ये चीज़ हम लोगों को बड़ी हल्की लग रही थी, अरे ठीक है इतने दिन हैं अभी तो करवा लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अब जो ये जो समय बीत गया ना और हमारे पास इतने ही कम दिन बचे हैं तो हमारे अंदर एक जो कन्फ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो जाती है कि कैसे करेंगे। तो अभी भी समय है भैया, सचेत हो जाइए और जागरूक हो जाइए और अपने बच्चों के साथ खुद भी जुट जाइए उनको हेल्प करने के लिए। और साथ ही हमारा साथ ना भूलिए, क्योंकि हमारा साथ जो आपके साथ रहेगा ना तो आपका जो हर काम है वो इजी हो जाएगा। क्योंकि जैसे मेंटल जो प्रेशर होता है ना उसको कैसे कम किया जाता है, सबसे अच्छी जो मेंटल प्रेशर को कम करने की रेमेडी है वो है म्यूज़िक, और म्यूज़िक हर पल आपके साथ रहना चाहिए। तो इसीलिए रेनबो जो आपका एफएम है वो आपके साथ ही रहता है, जी हाँ 100.7 एफएम रेनबो आपके साथ रहता है हर पल हर क्षण। तो बस सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

जी 3:26 का वक्त और आज हम बातें कर रहे हैं कि जो भाई रिमेनिंग हॉलीडेज बची हुई हैं गर्मियों की, यहाँ समर वेकेशंस की जो रिमेनिंग हॉलीडेज बची हुई हैं उनको हमें कैसे यूटिलाइज करना है। तो एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि जो हॉलीडे होमवर्क रखा था कहीं किनारे, अब उसको आ गई है देखने की बारी। और एक जो सेकंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे नन्हे मुन्ने जब छुट्टियां स्टार्ट हुई थी ना तो बहुत ही खुश थे कि भाई अब स्कूल बंद होने वाला, इतने दिन की छुट्टियां हैं। और सबसे बड़ी बात अब कि अब उनको कैसे हमें रूटीन मिलाना है, क्योंकि ये छुट्टियों में ना उनका पूरा रूटीन तो बिगड़ा हुआ है पक्का। तो अब आपको करना ये है कि सबसे पहले भाई उनको रूटीन मिलाइए और उनको कहते ना रात में जल्दी सुलाइए, और सुबह आपको कैसे उनको जल्दी उठाना है, कैसे प्यार से उठाना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी ये समय है कि आप उनको ये सब चीज़ें धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप करके टाइमली चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया था तो ये समय है कि आप इन चीज़ों के ऊपर गौर फरमाइए, क्योंकि ये जो 13-14 दिन बचे हुए हैं ना, ये आपके लिए यूटिलाइज़ करने के दिन हैं। तो इनको यूटिलाइज़ करिए जिससे जो हमारे नन्हे मुन्ने जब स्कूल जाएंगे ना तो उनको दिक्कत ना हो। तो एक प्यारा सा ट्रैक आ रहा है, आप तक इन्जॉय करिए।

0: पतंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए NCERT की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
1: और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
1: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
1: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
1: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चार

0: चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है। तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं। तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है, जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है, जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें, तो प्राकृतिक होता है, जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोयरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं, जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुम्दी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा, कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं? जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है, और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुम्दी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरन की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरन कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरन भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरन यही मिलता है, और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुम्गी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800-440-559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों।
1: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत

0: सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है, इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे
1: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
0: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगीं और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
2: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
3: तो सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
2: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
3: यस।
1: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
0: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
1: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
4: सू
2: जी,
4: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
2: जी हाँ
4: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
2: जी डॉक्टर साहब।
4: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
2: मैं पूछती हूँ।
0: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
1: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
5: 15, 14
2: क्या?
0: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
5: 13, 12, 11 ओह
2: जॉन्सी,
5: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
1: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
2: क्या गिन रही हो?
5: 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
2: क्या कम हो गए हैं?
5: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
0: सू ने फिर से बाहर देखा, खिड़की के

0: हमने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सुनियो से दोबारा झकझोरा और पूछा,
1: जॉनसे उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
2: 6, now it's 6, 5, 4, oh!
1: जॉनसी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है। तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉनसी।
2: Only 4.
1: मेरी तरफ देखो।
2: सू, only 4. ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
1: क्या 3 बचे हैं? What's 3, dear?
2: 3 पत्तियां।
1: पत्तियां?
2: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
1: हाँ, हाँ।
2: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
1: क्या लगता है?
2: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं। और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
1: क्या जॉनसी?
2: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
1: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉनसी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
2: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
1: हाँ
2: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं। ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
1: ओ जॉनसी।
0: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉनसी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉनसी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
0: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
0: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉनसी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
3: इतने में जॉनसी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
2: अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
0: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
4: जॉनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
0: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
3: अब मात्र 2 पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ 1 ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
2: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है।

0: गिरने ही वाला है।
1: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
2: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,

0: साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
1: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
2: सू मेरी दोस्त।
3: हाँ जॉन्सी।
2: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहां है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
0: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
3: सू।
4: हाँ जॉन्सी।
2: सू,
4: ऐसा लगने लगा है
2: कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
4: हाँ बिल्कुल,
2: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
4: बिल्कुल जॉन्सी।
2: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
4: पत्ता?
2: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
4: हाँ
2: हाँ,
4: मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
2: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
4: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
2: हाँ।
1: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
5: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
1: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
4: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
2: बेहतर।
4: ये लो कॉफी पियो।
2: थैंक यू
4: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
2: क्या हुआ?
4: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
2: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
4: हाँ।
2: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
4: हाँ वही।
2: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
4: हाँ वही मिस्टर बेरमैन।
2: ओ गॉड,
4: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
2: क्या?
4: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
2: क्यों नहीं गिरा?
4: हाँ,
2: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
0: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
4: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया।

0: उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
0: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
0: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
0: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
0: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
0: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सो उन्होंने बना दिया।
0: हाँ जॉन्सी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस।
0: हाँ, उन्होंने बना दिया।
1: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
0: हाँ
1: मास्टरपीस, मास्टरपीस, आखिरी पत्ता, आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

नमस्कार, 4 बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। ये बात उन्होंने कल स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी के बाद कही, जिसमें स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह प्रदर्शनी वाराणसी शहर विषय पर आधारित थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए श्री बिरला ने कहा कि लोकतंत्र देश की कार्य संस्कृति और विचार प्रक्रिया का अभिन्न अंग बना हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र में सक्रिय और समावेशी भागीदारी आवश्यक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि आधुनिक अवसंरचना किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बीते 12 वर्षों में इस दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चेनाब ब्रिज जैसे इंजीनियरिंग की मिसाल और मिजोरम को रेल मानचित्र से जोड़ने वाली बैरागी सैरांग रेल परियोजना ने यह सिद्ध किया है कि विकास अब देश के अंतिम छोर तक पहुंच रहा है। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा के प्रयासों से मऊ मधुबन तथा पूरे पूर्वांचल को रेल की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। श्री शर्मा ने बताया कि इसके तहत दोहरी घाट औणिहार नई मेमू ट्रेन का संचालन वाराणसी तक किया जाएगा। मऊ आनंद विहार दिल्ली स्पेशल ट्रेन का नियमित संचालन मऊ से प्रारंभ होगा तथा छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन मऊ के रास्ते किया जाएगा, जिससे दिल्ली के लिए एक नई और बेहतर रेल सुविधा उपलब्ध होगी। ज्येष्ठ माह का 7वां बड़ा मंगल आज श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही लखनऊ के सभी हनुमान मंदिरों में लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस अवसर पर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भंडारों का आयोजन किया गया है। लखनऊ में 7वें बड़े मंगल पर हनुमान मंदिरों और भंडारे के आसपास वाहनों का ट्रैफिक भी बदला हुआ है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित होगा।

जी हाँ, रेनबो जिसे हर दिल गुनगुनाए। 4:03 का ये वक्त हो चुका है और सफर शुरू होता है आज के यूथ वेव का। और आज के यूथ वेव में आज दिन है मंगल, और मंगल को सब मंगल होता है, ये तो पता ही आपको। और आज हम जो हमारा सेगमेंट होता है वो होता है प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित, यानी कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या फिर आप किस तरफ करियर को अपने गति देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और कुछ एक चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं जिससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाती है। कौन सी प्रतियोगी परीक्षा में किस तरह की मतलब रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह की एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या उसके आगे जो है वो अवसर हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। और आज भी बिल्कुल यही होगा, यही प्रोसेस रहेगा, यही प्रक्रिया होगी, लेकिन उसके साथ साथ म्यूज़िक का भी डोज आपको बीच बीच में मिलता रहेगा। तो स्वागत है आप सभी का 100.7 FM रेनबो पर। मैं हूँ आपका दोस्त देव, आज रहूँगा पूरे 4 घंटे आपके साथ, 4 से लेकर 8 बजे तक। लेकिन फिलहाल यूथ वेव का ये चैप्टर, यानी कि

इसमें हम डिस्कस करेंगे आज के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में के बारे में वो कौन सा है, ये ज़रूर आपको बताएंगे। आज मैं जिस चीज़ पर, जिस टॉपिक पर आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ वो एसएससी सीजीएल यानी कि एसएससी का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जो होता है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन शुरू करने से पहले ये प्यारा सा ट्रैक आपके लिए, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ अपने दोस्त देव के साथ 100.7 FM पर।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, कीप लिसनिंग धड़कन लखनऊ की। और इस वक्त मैं आपका दोस्त देव हूँ आपके साथ। 4:09 का ये वक्त हो गया है और जैसा मैंने बताया था कि यूथवे में आज हम चर्चा करेंगे एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के बारे में। तो बताएं आपको कि ये एक नेशनल लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है। इस एग्जाम के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके कैंडिडेट्स इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसे इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट एग्जाम्स में से एक माना जाता है क्योंकि इसके थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि एसओ, एग्जामिनर, ऑडिटर और अकाउंटेंट जैसे पोस्ट्स मिलते हैं और हर साल लाखों कैंडिडेट्स इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं और कॉम्पिटिशन काफी हाई होता है। इसके बारे में कुछ और चीजें जानेंगे लेकिन पहले ये ट्रैक एंजॉय कर ले।

Well, अभी तक जो SSC CGL हो रहे थे उसमें थोड़ा बदलाव इस बार यानी कि 2026 में किया गया है और ये जान लेना आपको ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SSC CGL जो 2026 है इसमें पहली बार 15 मिनट सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस की गई है। अब हर सेक्शन को अलॉटेड टाइम के अंदर ही ख़त्म करना होगा और टाइम ख़त्म होने के बाद उस सेक्शन पर वापस नहीं जा सकेंगे। इससे टाइम मैनेजमेंट और भी इंपॉर्टेंट हो गया है, इसलिए तो थोड़ा जो आपको कॉशियस रहना पड़ेगा कि जो भी टाइम अलॉट किया गया है 15 मिनट का, उसी 15 मिनट के अंदर ही आपको वो जो उस सेक्शन को बिल्कुल ख़त्म करना होगा, और क्योंकि फिर आप दोबारा वापस नहीं आ सकते, है ना। और अब देखिए 4:15 का भी ये वक्त हो रहा है, तो चलिए इसी वक्त एक और बढ़िया सा ट्रैक इन्जॉय करते हैं।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जज्बात वही मगर एहसास है नया।
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं।
2: UMDAE सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज मुंबई आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। सहायक प्रोफेसर सूक्ष्म जीव विज्ञान, सहायक प्रोफेसर प्रतिरक्षा विज्ञान, रीडर कंप्यूटेशनल जीव विज्ञान, एसोसिएट प्रोफेसर अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान, रीडर अति तीव्र प्रकाश रसायन, एसोसिएट प्रोफेसर भौतिक रसायन विज्ञान, सहायक प्रोफेसर कार्बनिक अकार्बनिक रसायन विज्ञान, रीडर बीज गणित संख्या सिद्धांत और लाई, सहायक प्रोफेसर विश्लेषण असतत गणित और एसोसिएट प्रोफेसर सैद्धांतिक भौतिकी, सहायक प्रोफेसर क्वांटम संघनित पदार्थ, सहायक प्रोफेसर फोटोनिक्स प्रायोगिक। विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए वेबसाइट www.cbs.ac.in। ये विज्ञापन रोजगार समाचार पत्र के 13 से 19 जून 2026 के अंक में भी देखा जा सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 15 जुलाई 2026। भारत सरकार का उपक्रम राइट्स लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। प्रबंधक सिविल तथा अभियंता सिविल दोनों ही पदों के लिए एक एक रिक्ति उपलब्ध है। विस्तृत विवरण के लिए देख सकते हैं आप राइट्स की वेबसाइट www.rights.com। ऑयल इंडिया लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। उप मुख्य रसायनज्ञ एक पद, उप मुख्य भूविज्ञानी एक पद, उप मुख्य इंजीनियर एक पद, उप मुख्य भू भौतिकीविद एक पद, उप मुख्य अभियंता 5 पद और अर्थशास्त्री 1 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.oil-india.com/advertisement-list। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 28 जून 2026। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में लेखाकार के एक पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। केंद्र सरकार के अधिकारियों से इस पद के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत विवरण और

0: आवेदन पत्र की जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की वेबसाइट www.ncm.nic.in। विकास आयुक्त कार्यालय कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र काकनाड कोचीन कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। कुल एक पद उपलब्ध है। आवेदन संबंधी नियम शर्तों योग्यता आरक्षण आदि की पूरी जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.csez.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

वेल अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर और एसएससी सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए यानी कि आप यानी कि कैंडिडेट को एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना चाहिए यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीशन ज़रूरी है और एज लिमिट 18 साल से लेकर मैक्सिमम एज 27 से लेकर 32 के बीच यानी कि 27 से 32 के बीच होती है वो इसलिए क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए कुछ थोड़ा वैरी करता है यानी कि मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 से लेकर 32 साल ये डिपेंड करता है कि कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और रिजर्व कैटेगरीज को रूल के अकॉर्डिंग ही रिलैक्सेशन मिलता है।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
5: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
6: जी हाँ, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और साथ ही साथ मुस्कुराइए, हंसिए, क्योंकि आप इस वक्त रेनबो सुन रहे हैं 100.7 FM। मैं हूं आपका दोस्त देव। आज बात कर रहा हूं यूथ वेव के आज के सेगमेंट में SSC CGL यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स के बारे में। और अब बता देते हैं आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या क्या इसमें आते हैं। टीयर वन एग्जाम के लिए सब्जेक्ट्स हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। और वहीं टीयर टू के लिए जरूरी है मैथमेटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। रेगुलर मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो SSC CGL प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, तो ये जरूर मिस मत करिएगा और रेगुलर मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट अपने ऊपर करते रहिएगा। फिलहाल ये म्यूजिक आपके लिए सुनिए, 4:43 हो गए। मैं हूं देव आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर लेकर आज का यूथ वेव।

वेल जो ये एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूँ, ये मैं जो जॉब्स होती हैं, इन जॉब्स की सबसे बड़ी अट्रैक्शन उनकी सैलरी और करियर ग्रोथ है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को सेवन पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी, डीए, एचआरए, टीए और दूसरे अलाउंस मिलते हैं। करियर में प्रमोशंस के थ्रू ऑफिसर लेवल पोजीशंस तक पहुंचने के अच्छे अपॉर्चुनिटीज होते हैं।

प्रिपरेशन और रेगुलर रिवीजन और मॉक टेस्ट्स पर अगर फोकस करते हैं तो एसएससी सीजीएल क्लियर करके एक सिक्योर और प्रेस्टीजियस सेंट्रल गवर्नमेंट करियर बना सकते हैं। फिलहाल 4:54 और बस 55 मिनट होने वाले हैं और वक्त यह कह रहा है कि मुझे अब यहां से इजाजत लेनी पड़ेगी, यहां से मतलब इस प्रोग्राम से, और जा कहीं नहीं रहा हूं, बस मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तो आपको करना क्या है, बस सुनते रहना 90.7 FM रेनबो। मैं हूं देव आपके साथ और अगले प्रोग्राम में भी मैं बना रहूंगा आपके साथ। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए। फिलहाल ये ट्रैक आज का लास्ट इस प्रोग्राम का।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: वेल, एसएससी सीजीएल के बारे में आज मैंने आपके साथ थोड़ी चर्चा की, थोड़े पॉइंट्स आपके सामने रखे ताकि अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आगे सोच रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन में हैं और जल्द कंप्लीट करने वाले हैं तो एक करियर एवेन्यू जो है आपका इस ओर भी आप देख सकते हैं और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जैसा मैंने ये बताया आपको। और अगर आप डिसिप्लिन

पांच बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिन के दौरे पर फ्रांस के एवियन शहर पहुंच गए हैं। शिखर सम्मेलन कल शुरू हुआ। एवियन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि भारत अधिक टिकाऊ और समृद्ध ग्रह के लिए सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि आधुनिक अवसंरचना किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बीते 12 वर्षों में इस दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चिनाब ब्रिज जैसी इंजीनियरिंग की मिसाल और मिजोरम को रेल मानचित्र से जोड़ने वाली बैराबी सैरांग रेल परियोजना ने यह सिद्ध किया है कि विकास अब देश के अंतिम छोर तक पहुंच रहा है। प्रदेश के नगर निगम एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के प्रयासों से मऊ मधुबन तथा पूरे पूर्वांचल को रेल की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। श्री शर्मा ने बताया कि इसके तहत धोरी घाट औणिहार नई मेमू ट्रेन का संचालन वाराणसी तक किया जाएगा। मऊ आनंद विहार दिल्ली स्पेशल ट्रेन का नियमित संचालन मऊ से प्रारंभ होगा तथा छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन मऊ के रास्ते किया जाएगा, जिससे दिल्ली के लिए एक नई और बेहतर रेल सुविधा उपलब्ध होगी। अमरोहा में आज ग्रीष्मकालीन अवकाश बाद परिषदीय विद्यालयों में फिर से रौनक लौट आई। इस मौके पर विद्यालयों में नए उत्साह और उमंग के साथ छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया। स्कूल पहुंचने वाले बच्चों का तिलक लगाकर और फूल मालाएं पहनाकर अभिनंदन किया गया, जिससे उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। लंबे अवकाश के बाद अपने साथियों और शिक्षकों से मिलकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। रामपुर के सिविल लाइन्स स्थित श्रीहरि आदर्श धर्मशाला में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत आयुष विभाग एवं ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आज रंगोली चित्रकला योगासन एवं स्लोगन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें 55 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन भी किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों एवं समाज में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना रहा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित होगा।

जी हाँ, रेनबो जैसे हर दिल गुनगुनाए, और मैं हूँ देव आपके साथ एक बार फिर, जैसा मैंने वादा किया था आ गया हूँ इस प्रोग्राम में भी आपका साथ देने। वेल, मुझे पता है कि आप भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, क्योंकि इसमें आपको हम ले चलते हैं उस दौर में, मतलब उस दौर में तो नहीं, मतलब किसी भी साल में जो भी हमें चूज़ करते हैं उस साल के सबसे टॉप 10 बॉलीवुड सॉन्ग्स, जो फिल्मों के गाने वो कौन से रही है हम आपको बताते हैं, यानी कि FM टॉप 10 का ये सफ़र अब शुरू हो रहा है। 5 से 6 बजे तक का ये घंटे का सफ़र आप हमारे साथ एंजॉय करेंगे। और आज जिस ईयर को, जिस साल को मैंने लिया है वो है 1993, और 1993 में टॉप 10 सॉन्ग्स बॉलीवुड के कौन से रहे वो मैं आपको बताऊँगा और सुनवाऊँगा भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले गाने, यानी कि नंबर 10 के स्लॉट से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये काउंटडाउन होगा ना। तो गाना पहला है, लेकिन काउंटडाउन यानी कि जो पायदान है उसमें 10वें नंबर पर ये गाना है 1993 का, और इसे नदीम श्रवण ने संगीत दिया था और समीर का लिखा हुआ, यानी कि 90s के में जो नदीम श्रवण और समीर, ये जो है बहुत इनकी जोड़ी चलती थी। आवाज़ कुमार सानू और अलका याग्निक की है, साजिद नाडियाडवाले की तरफ से ये दिव्या भारती की याद में उन्हें डेडिकेटेड थी ये फिल्म। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्म कौन सी है, फिल्म है वक्त हमारा है, और गाना कौन सा है, ये रहा।

कल 10वें नंबर पर यह गाना था 1993 में, और अब बढ़ते हैं दूसरे गाने पर यानी कि पायदान नंबर 9 की तरफ। और ये जो फिल्म है इसमें सलमान खान और माधुरी एक साथ आए थे, और इस फिल्म का साउंडट्रैक काफी पॉपुलर हुआ था। मुकुल अग्रवाल और अलका याग्निक की आवाज़।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
5: वेल, ये जो काउंटडाउन है ये शुरू हो चुका है एफएम टॉप 10 का। आज हम 1993 की फिल्मों की बात कर रहे हैं और इसमें 10 नंबर 9 नंबर हो चुका है। अब पायदान नंबर 8 पर कौन सा है और आज का ये तीसरा गाना कौन सा है वो जल्द आपको पता चलने वाला है। इसके कंपोजर यानी कि जो फिल्म है, जो संगीत इस फिल्म में दिया था वो अनु मलिक का था और म्यूजिक काफ़ी हिट हुआ था फिल्म फूफूल और अंगार, और गाना ये वाला।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अपने
4: वेल 10, 9 और 8 पायदान आपने सुन लिए, जो कि गाने थे, फिल्म थी। वक्त हमारा है दिल तेरा आशिक और फूल और अंगार। अब वक्त है कि सातवें पायदान पर कौन सा गाना है, और इस गाने में यानी कि इस फिल्म में भी जितेंद्र, अमृता सिंह, कमल सडाना, आयशा झुलका और दिव्या भारती थे। संगीत एक बार फिर नदीम श्रवण का, और दिव्या भारती की ये आखिरी फिल्म साबित हुई और गाना भी काफ़ी पॉपुलर था, आपने भी सुना होगा। चलिए फिल्म रंग से सातवें नंबर के पायदान पर ये गाना सुनते हैं।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
5: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
4: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
5: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
6: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
7: वेल, इस सफर में बढ़ते बढ़ते हम बढ़ाए हैं आधे सफर तक। 5:31 का ये वक्त हो रहा है और अब छठे पायदान पर कौन सा गाना, ये हम आपको जरूर बताएंगे। आप सुन रहे हैं इस वक्त एफएम टॉप 10 अपने दोस्त देव के साथ 100.7 एफएम रेनबो पर। वेल, ये जो फिल्म है, मतलब जिस फिल्म से ये गाना है, उसमें मीनाक्षी शेषाद्री हैं और मीनाक्षी शेषाद्री की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही इस फिल्म में। बिल्कुल, आपने अंदाजा बिल्कुल सही लगाया, फिल्म है दामिनी और नदीम श्रवण और समीर एक बार फिर हिट साबित हुए। और सुनते हैं वो छठे नंबर पर कौन सा गाना है।

वेल, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, मिस्टेक से ये छठा नंबर नहीं पांचवा, यानी कि हमने अभी तक जो काउंटडाउन शुरू किया था वह 10, 9, 8, 7 और छठा ये है, लेकिन गाना पांचवा।

वल्ला 10 से लेकर 6 पायदान तक हमने गाने सुन लिए। अब वक्त है 5वें पायदान पर कौन सा गाना है, और बिल्कुल इसको आड़ में रखा हुआ मैंने और अभी आड़ से इसको बाहर निकालेंगे। जी हाँ, समझ गए आप, थोड़ा सा इशारा है। फिल्म है हम है राही प्यार के और गाना है घूंघट की आड़ से। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, और एक बार फिर नदीम श्रवण और समीर।

Well, घूंघट की यार से दीदार इस गाने के तो पूरे करा दिए, लेकिन भाई अगले गाने का भी तो दीदार करना है और पूरी काउंटडाउन जो है वो से नंबर एक पायदान तक लेके जाना है ना। तो चलिए पांचवें पायदान का जो ये गाना था ये आपने सुन लिया फिफ्थ स्लॉट पर पांचवें नंबर पर। अब बढ़ते हैं चौथे नंबर पर, यानी कि चौथे पायदान पर कौन सा गाना है। और कान आपने अपने खुले रखे हैं और बिल्कुल आंखें भी खुली रखिएगा, गाना देखने के लिए नहीं सुनने के लिए, क्योंकि फिल्म है आंखें और म्यूजिक बप्पी लहरी का है और गीत इंदिवर के, और ये साल का जो है ना, मतलब उस साल का ये फोर्थ हाईएस्ट सेलिंग एल्बम था। इस फिल्म के जो गाने थे, जो एल्बम था, वो उस साल का फोर्थ हाईएस्ट सेलिंग एल्बम था। और पायदान नंबर चार पर भी इस फिल्म से ये गाना।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
3: वेल 5:47 हो गए, मैं हूं देव आपके साथ और काउंटडाउन चल रहा है FM टॉप 10 का। साल है 1993 और मतलब 10वें पायदान से शुरू करके हम 4थे पायदान तक पहुंच गए और तीसरे पायदान पर जो गाना है इस जिस फिल्म से ये गाना है उसकी 10 मिलियन यूनिट बिकी थी उस साल यानी कि 1993 का और ये सबसे बेस्ट सेलिंग बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया था उस साल का। संगीत अन्नू मलिक का और गाना कौन सा, बिल्कुल इस फिल्म को सभी ने जो है प्यार दिया था, सभी ने इस फिल्म को सराहा था और ये फिल्म काफ़ी हिट हुई थी, काफ़ी चली थी और गाना कौन सा है, बिल्कुल फिल्म बाजीगर से किताबें बहुत सी।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: वेल, अब बढ़ते बढ़ते आ गए हम पायदान नंबर दो पर, और दो नंबर सेकंड स्लॉट पर जो गाना है वो सेकंड बेस्ट सेलिंग बॉलीवुड साउंड ट्रैक था 1993 का, और शिव हरी का संगीत और उदित नारायण की आवाज, और बिल्कुल डरिए मत। जी, फिल्म डर से ये गाना दो नंबर के पायदान पर, जादू।

well, नजर में जादू है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इसमें तो जादू है कि टॉप के तीन स्लॉट्स जो हैं वो शाहरुख खान की फिल्म से ही हैं और उन्हीं के गाने हैं। तीसरे नंबर पर और दूसरे नंबर पर आप ये गाना सुन रहे हैं और टॉप स्लॉट कौन सा है वो भी आपको पता चल जाएगा जल्दी। और अन्नू मलिक का संगीत कहें तो टॉप पर आ कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़। और ये वो फिल्म है जो कि 1993 का बेस्ट सेलिंग बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया था, जो फिल्म बाजीगर से टाइटल ट्रैक। और इसी के साथ डीजे देव को इजाजत है इस प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करने का, यहीं पे खत्म करने का, लेकिन बना रहूंगा मैं आपके साथ और उम्मीद है और बिल्कुल जानता हूं कि आप भी मेरे साथ बने रहेंगे अगले प्रोग्राम में और उसके बाद वाले प्रोग्राम में भी, क्योंकि उसमें आपकी बात होगी, आपकी फरमाइश पूरी होगी। फिलहाल अभी इस प्रोग्राम से लेता हूं इजाजत, डीजे देव को इजाजत इस प्रोग्राम से, बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ।

दशक में देशभर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर माई गॉव की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। माई गॉव पोस्ट में पिछले 12 वर्षों में देश के बुनियादी ढांचे में आए बदलावों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनरीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षाएं 21 जून को होंगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एक अधिसूचना जारी कर रहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने तथा उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से कानपुर देहात के मलासा विकास खंड में उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से आज एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने किया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। एकाना क्रिकेट स्टेडियम में कल भारत अफगानिस्तान के बीच होने वाले श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय मैच के लिए दोनों टीमें लखनऊ पहुंच गई हैं। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। मैच के मद्देनजर स्टेडियम के अंदर और बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम के आसपास कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन भी लागू किया है, जो कि सुबह 9 बजे से रात में मैच की समाप्ति तक लागू रहेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित होगा।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में पीसीओडी और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, पीसीओडी या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: वल शाम के 6 बज चुके हैं और एग्जैक्ट अगर समय की बात करें तो 6:08 का ये वक्त हो रहा है। मैं आपका दोस्त देव एक बार फिर हाजिर हूँ इस अवध की शाम में, यानी कि शो प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है शाम अवध। वल बने रहिए हमारे साथ इस शो पर और हर शोमर आप हमारे साथ रहते ही हैं तो रात 12 तक का ये सफ़र आपका और हमारा जारी रहता है। तो फिलहाल शाम अवध में कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, किसी के लिए कुछ खास मतलब उनके मायने के उनके फ़ायदे के लिए भी हो सकती हैं, लेकिन वो चीज़ें क्या हैं, वो बातें क्या हैं, उसके लिए आपको पहले सुनना पड़ेगा ये गाना और उसके बाद धीरे धीरे मेरे साथ इस सफर को एंजॉय करते हुए बढ़ते रहना होगा। सुनते रहिए शाम अवध देव के साथ ओनली ऑन 100.7 FM।

वेल कुछ चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं जानने के लिए, वो ये कि लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ी जो पीएचडी पार्ट टाइम प्रवेश 2025-26 के तहत जो बायो केमिस्ट्री व एजुकेशन विषयों में जो अभ्यर्थी या जो यानी कि जो एप्लीकेंट्स चयनित हुए उनके परिणाम जारी कर दिए गए हैं और फीस जमा करने की जो तारीख है वो 12 जून है, तो इस बात का खासा ध्यान रखने। और इसके अलावा एक और बात जो लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ी है वो ये कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने केंद्रीय प्रवेश परीक्षा में कॉलेजों को जुड़ने के लिए अब 20 जून तक का समय बढ़ा दिया है और कॉलेज वेबसाइट पर इसकी पूरी जो है विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और वेबसाइट पर पूरी इसके डिटेल्स मौजूद हैं। और लखनऊ यूनिवर्सिटी ने केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया के तहत यूजी व पीजी कोर्सों में ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट्स में 22 जून और पोस्ट ग्रेजुएट पीजी में 25 जून तक आप अप्लाई कर सकेंगे और बी फार्म पाठ्यक्रम में जो एप्लीकेशन है उसकी डेट 15 जून से बढ़ाकर अब 30 जून कर दी गई है और बी फार्मा में प्रवेश यूईटी यूजी से होंगे और जिन्होंने इंटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ से उत्तीर्ण किया है और वही है अभ्यर्थी या वही स्टूडेंट्स जो है वो इसमें ले सकेंगे प्रवेश।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: स्पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: वेल, अगर आपको डाक अदालत का इंतज़ार है तो ये खबर आपके लिए है। और पोस्टमास्टर जनरल जो हेड ऑफिस है मुख्यालय परिक्षेत्र कार्यालय में, 1 जुलाई को 2:30 बजे से डाक अदालत लगाई जाएगी। और डाक सेवा से संबंधित जो भी मामले हैं, जो भी एप्लीकेशन है, वो 19 जून तक आप प्रस्तुत कर सकते हैं वहाँ। और डाक अदालत में ऐसे मामलों पर ही विचार किया जाएगा जिन्हें पहले प्रवर डाक अधीक्षक या फिर डाक अधीक्षक स्तर पर होने वाली डाक अदालत में उठाया जा चुका हो, यानी कि कोई फ्रेश एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी, जिनका पहले जो ये मामले उठाए जा चुके हैं उन्हीं पर विचार किया जाएगा इस अदालत में।

वेल, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका ख़त्म हो गया, मतलब उसको रिन्यू कराना है, तो एक बात जानना बेहद ज़रूरी है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस की जो अवधि, जो ड्यूरेशन है, अगर वो पूरी हो गई तो आपको उसे मतलब रिन्यू कराना पड़ता है, और कराते भी हैं, लेकिन अब जो है फिर से टेस्ट देना पड़ सकता है, और वो इसलिए कि ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर यानी कि ADTC को शुरू करने के लिए जो वो मंजूरी मिल गई, परमिशन मिल गया, और इस माह के अंत तक यानी इस मंथ के आखिर तक ये जो सेंटर है ये शुरू हो जाएगा, जहां पर सेंसर और कैमरों की निगरानी में टेस्ट होगा, और 3.25 मिनट, मतलब ऐसा बताया गया, स्पेसिफाई किया गया है कि 3.25 मिनट, मतलब समझ लीजिए 3 मिनट ही आप मान लीजिए, इसमें ट्रेनिंग ट्रैक पार न करने वालों का जो है वो रिन्यूअल लटक सकता है और कुछ दिक्कत आ सकती है। और ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नगर और देवा रोड पर अभी तक जो है DL जो भी एप्लीकेंट्स होते थे वो मैनुअल टेस्ट हो रहा था, और इससे जो है वो जो भी नियम थे उन सबकी अनदेखी हो रही थी और काफ़ी सारी शिकायतें आ रही थी, तो इस वजह से अब इस ट्रैक को मंजूरी मिल गई, और इसमें जो है काफ़ी सावधानी से जो है इसमें सेंसर्स और कैमरों की निगरानी में करना पड़ेगा, यानी कि अगर आपको रिन्यू करना है तो फिर से आपको टेस्ट देना पड़ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। 6:37 हो गए हैं, मैं हूं देव आपके साथ लेकर ये शो, ये प्रोग्राम जिसका नाम है शाम आवाज़।

0: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी

0: किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
3: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: वेल, पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी, उसका रिजल्ट आने वाला है और संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद JEE CUP द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के बाद अब परिणाम जो है वो जिन्होंने एग्ज़ाम दिए उनका इंतज़ार है। और बता दें कि 20 जून को परिणाम घोषित होने की संभावना है, मतलब टेंटेटिव डेट यही है, और इस महीने के आखिर में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक से काउंसलिंग शुरू होगी। तो तैयार रहिए, 20 जून के आसपास जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा और उसके बाद जल्दी ही लास्ट में इस महीने की या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो बस कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
3: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
4: धड़कता है जो हर दिल में
5: सुबह 6 से रात 12 बजे तक,
2: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
3: धड़कन लखनऊ की।

0: well, अब चलने का यानी कि इस प्रोग्राम को एंड अप करने का वक्त आ रहा है, लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही अच्छी और बढ़िया चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, वो ये कि उत्तर प्रदेश संस्कृति संग्रहालय म्यूजियम एंड रिचुअल सेंटर में जो भी टूरिस्ट आएंगे उनको भारतीय संस्कृति परंपराओं और रीति रिवाजों से परिचित कराया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी पहल है और लखनऊ में सेंटर के क्यूरेशन का यानी कि जो कि मतलब सामग्री संयोजन कह सकते हैं, इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है और जल्दी ये शुरू होने वाला है। और ये बख्शी का तालाब जो क्षेत्र है वहाँ पे ये बनाया जा रहा है इस सेंटर को, और इसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक भारतीय जीवन यात्रा और अर्थ, धर्म, कर्म व मोक्ष जैसे चार पुरुषार्थों को केंद्र में रखा गया है। और इन सब के ऊपर जो है एक आधुनिक तकनीकों के द्वारा 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और पैनोरामिक वीडियो वॉल से सभी ये प्रस्तुतियां होंगी, और जो भी टूरिस्ट आएंगे उनको इस बात का, और बिल्कुल आप भी ले सकते हैं इस चीज़ का आनंद जाकर, और ये जानना ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी ये पहले मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया है। फिलहाल इस प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करें, जल्द दीजिए देव को इजाज़त, लेकिन हाँ अगले प्रोग्राम में तो आप बिल्कुल आना भूलेंगे ही नहीं, मुझे पता है। तो बने रहिए देव के साथ, 100.7 FM रेनबो पर डायल कीजिए हमारा नंबर और बात कीजिए और अपनी पसंद के गाने सुनिए।
1: ना दिल से वो यादें
0: अगले प्रोग्राम है जिसका नाम है हेलो FM।

सात बजे हैं, अब सुनिए टॉप 10 समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले दशक में देशभर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर फ्रांस के एवियन शहर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत कर रहे थे। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आगामी 19 जून को पूर्वांचल को रेलवे की तरफ से कई रेल सेवाओं की सौगात प्रदान करेंगे। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने आज बताया कि उन्होंने पूर्वांचल में रेल सेवाओं के विस्तार एवं यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेल मंत्री से कई महत्वपूर्ण मांगें की थी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे से 17 जून को पहला कार्गो विमान उड़ान भरेगा। 1 जुलाई से एयरपोर्ट से वाणिज्यिक और कार्गो सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध हो जाएंगी। प्रदेश में गो संरक्षण को

रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए प्रदेश सरकार 7,500 से अधिक गौशालाओं के जरिए गांवों में पंचगव्य क्लस्टर विकसित करेगी। महिला स्वयं सहायता समूहों, किसानों और ग्रामीण युवाओं को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। ज्येष्ठ माह का सातवां बड़ा मंगल आज श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर भंडारों का आयोजन किया गया। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच कल खेला जाएगा। इसके मद्देनजर स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 8 बजे प्रसारित होगा।

जी हाँ, ये वो है जिसे हर दिल गुनगुनाए। 7:03 का ये वक्त है और बिल्कुल आप जैसे ही ये प्रोग्राम मतलब पिछला प्रोग्राम ख़त्म होने वाला था और यहाँ पे हमारे जो फ़ोन लाइंस हैं, जो लाइट हैं, वो ब्लिंक करने लगी और बिल्कुल एक के बाद एक ब्लिंक हो रही है, एक कॉल ख़त्म हो रही, दूसरी लग रही है, दूसरी ख़त्म हो रही, तीसरी लग रही है, मतलब अभी मैंने उठाया नहीं है, बस थोड़ा सा वक्त है। और हेलो FM में आप सभी का स्वागत है, मैं आपका दोस्त देव आज हूँ आपके साथ और आपकी कॉल से मैं अटेंड करूँगा और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं अपने शो में ले सकूं और उनकी पसंद के गाने प्ले कर सकूं, बजा सकूं। तो चलिए, ये पहला गाना मैं प्ले कर रहा हूं, इसको तब तक आप जो है फिर से हमारे, अगर अभी आप रिंग कर रहे थे, फोन लगा रहे थे और नहीं लगा तो फिर से ट्राई कीजिए, हो सकता है इस बार आपका नंबर लग जाए, आपका फोन उठ जाए। तो चलिए, ये ट्रैक मैंने प्ले किया है, इसको एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ अगर अपनी पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो हमें डायल कीजिए हमारे नंबर पर। मैं हूं देव आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर लेकर ये शो जिसका नाम है हेलो FM।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: वेल 100.7 आप एंजॉय कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है लाइन पर। आइए जानते हैं कौन है और उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो।
3: हाँ भाई साहब श्री प्रकाश तिवारी उन्नाव।
2: श्री प्रकाश तिवारी, हेलो।
3: हाँ भाई साहब।
2: जी जी तिवारी जी, कैसे हैं?
3: हम बिल्कुल ठीक हैं भाई साहब। गर्म बहुत है
2: भाई। अभी तो ये है, कुछ दिनों में मौसम बदलने वाला है, बारिश शुरू हो जाएगी।
3: अब ये ज्यादा है ना, 74 है भाई साहब।
2: अच्छा, तो क्या करते हैं अभी आप, कुछ काम वाम करते हैं?
3: नहीं, खेती का काम करते हैं भाई साहब।
2: अच्छा, कितना समय देते हैं खेती में?
3: हम समय 2 घंटे सुबह और 1 घंटा लगभग शाम को, और लड़का करता है, हम भी मदद करते हैं उसकी।
2: ओके, तो ज्यादा काम कौन करता है, आप या फिर लड़का?
3: लड़का ज्यादा करता है, हम तो मतलब 2-3 घंटे करते हैं भाई साहब।
2: अच्छा, आपको लगता नहीं कि अब काम ना करें, हम बैठे आराम से?
3: नहीं भाई साहब, बैठे बैठे और तबीयत खराब हो जाएगी।
2: ये बात बिल्कुल सही कही। अगर आप जो है वो मशीन है ना,
3: हाँ थोड़ा बहुत करना चाहिए।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि आपका जो है वो कॉल लग भी जाता है जल्दी। आप सुनते हैं, एंजॉय करते हैं FM, और अक्सर आपका कॉल लगता है।
3: हमेशा सुनते हैं भाई साहब आपके, ज्यादातर प्रोग्राम सुनते हैं पुष्पांजलि से लगा के।
2: क्या बात है, कब से हैं आप हमारे लिसनर, कब से सुन रहे हैं?
3: हमको भाई साहब हो गए कम से कम 15 साल।
2: क्या बात है, फोन पे सुनते हैं या फिर ऐप पे? मतलब
3: मोबाइल एक है हमारा पुराना, उसी में सुनते हैं।
2: क्या बात है, तो चलिए आपकी पसंद का ये ट्रैक हम प्ले कर रहे हैं, ठीक है?
3: हाँ, डेडिकेट कर सकते हैं भाई।
2: जी जी बिल्कुल।
3: सबसे पहले आपको, आपकी टीम को, बाबू अंसारी, परवीन अंसारी, रिंकी सिंकी, सत्यम और केश भाई, संतोष भाई।
2: चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच तिवारी जी। ओके बाय।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: हेलो जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं। हेलो
2: नमस्ते सर।
1: जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा था कि कहीं लाइन डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गई।
2: नहीं सर
1: जी, अपना नाम बताएं। अपना नाम बताइए।
2: रोहिणी।
1: जी रोहिणी, कैसी हैं?
2: सर हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं। और आपकी सिस्टर मोहिनी, वो कैसी हैं?
2: सर हमारी सिस्टर भी बहुत अच्छी
1: हैं। मोहिनी नाम है ना उनका? हाँ। रोहिणी जी क्या करती हैं आप?
2: मैं पढ़ाई करती हूँ।
1: कौन सी क्लास में?
2: 11 में।
1: 11 में। अच्छा, गाना कौन ज्यादा सुनता है, आप या आपकी सिस्टर?
2: दोनों लोग सुनते हैं।
1: और फोन कौन ज्यादा ट्राई करता है मिलाना?
2: सर फोन तो हम ही ज्यादा ट्राई करते
1: हैं। अच्छा, वो कह बड़ा कौन है, वो या आप?
2: दीदी खाना इस समय बना रही, इसीलिए हम।
1: अच्छा, वो बड़ी है, मतलब मोहिनी आपकी सिस्टर बड़ी, आप छोटी हैं? दो ही बहनें हैं, भाई भी है आपका?
2: सर हम तीन सिस्टर हैं, एक भाई है।
1: अच्छा, तो वो आपसे भी छोटी सिस्टर है? एक
2: हम तो छोटा भाई है, भाई से छोटी सिस्टर है।
1: क्या बात है, बढ़िया। अच्छा, आपकी सबसे ज्यादा जो है, मतलब आपकी मतलब भाई बहन है, तो सबसे ज्यादा पट्टी किससे है?
2: सभी लोगों से।
1: कौन ज्यादा क्लोज है आपको, आपकी आप सारी बातें किसको बताती हैं, मतलब शेयर करती हैं सारी चीजें?
2: सारी बातें तो अपनी बड़ी वाली सिस्टर को ही बताते हैं।
1: अच्छा, और वो भी आपके साथ ही शेयर करती होंगी, है ना?
2: हाँ सर।
1: बढ़िया, चलिए। और ये क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है और गाना मतलब आप सुन भी सके, इसलिए जो है मैं ये गाना प्ले कर रहा हूँ। किसी को डेडिकेट करना हो तो फिर जल्दी से नाम ले लीजिए फिर।
2: हाँ सर, सबसे पहले आपको।
1: ओके, थैंक यू। जी
2: शिवम सर को, शादाब सर को, और हमारी बहन मोहिनी को।
1: चलिए चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बाय बाय। और बस ऐसे ही सुनते रहिए और फोन मिलाते रहिए। और दूसरे लोगों से भी कहूंगा कि जल्दी से फोन मिलाइए। फिलहाल तो 7:20 पे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और उसके बाद फिर ये कार्यक्रम जारी रहेगा। मैं हूं देव आपके साथ 100.7 FM पर, लेकर ये शो

0: बस अब थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार। मंजिल मंजिल दो दीवाने दिल ले चले प्यार का कारवां।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा, पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर हुआ उन्नयन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान है आधुनिक अवसंरचना। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा एक दिवसीय मैच। स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर उन्नयन हुआ है। उन्होंने देश के लोगों के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि विकसित भारत के स्वप्न को साकार किया जा सके। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधुनिक अवसंरचना किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में भारत ने बीते 12 वर्षों में इस दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की हैं। इस उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने

0: आज लखनऊ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,37,00,000 आवास का आवंटन किया है, जिसमें से 62,00,000 से अधिक परिवार यूपी के शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
1: 2014 से पहले हमारे देश में इतने मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इतने डॉक्टर्स नहीं थे कि हम ठीक प्रकार से सभी लोगों को इलाज की सुविधा दे सके। तो उसके पहले उन्होंने ये मन बनाया कि हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स पैदा करेंगे, और डॉक्टर्स पैदा होते सिर्फ मेडिकल कॉलेजों में 818 मेडिकल कॉलेज, जिसमें से 431 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने मन बनाया। और MBBS में कुल 1,28,976 सीटें थी, जिसमें से 77,628 सीटों की वृद्धि की गई।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर में जिला प्रशासन और सूचना और जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा लगाई गई विकसित भारत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की 12 वर्ष की योजनाओं की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों और मिर्जापुर के विकास कार्यों को दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 1,000,000 से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आगामी 19 जून को पूर्वांचल को रेलवे की तरफ से कई रेल सेवाओं की सौगात प्रदान करेंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री बिहार के छपरा से ऑनलाइन जुड़कर जनता को संबोधित करेंगे। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए आज बताया कि हाल ही में उन्होंने पूर्वांचल की रेल सेवाओं के विस्तार और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रेल मंत्री से कई महत्वपूर्ण मांगें की थीं, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इन सुविधाओं में दोहरीघाट और यहार नई मेमो ट्रेन का वाराणसी तक संचालन, मऊ आनंद विहार स्पेशल ट्रेन का मऊ से नियमित संचालन शामिल है। इसके अलावा छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन मऊ के रास्ते किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों

0: और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम आज घोषित किया गया, जिसमें वंदना सिंह ने प्रदेश में टॉप किया है। परिणाम में कुल 4,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों को रैंक जारी की गई है। इनमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे से 17 जून को पहला कार्गो विमान उड़ान भरेगा। पहले दिन एक कार्गो उड़ान होगी। 1 जुलाई से एयरपोर्ट से वाणिज्यिक और कार्गो सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध हो जाएंगी। कार्गो सेवा शुरू होने से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रदेश के साथ उत्तर भारत की आर्थिक को भी गति मिलेगी। प्रदेश के कई जिलों में सातवें बड़े मंगल के अवसर पर भक्त हनुमान जी के मंदिरों में सुबह से ही दर्शन पूजन कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ है। अयोध्या में भी भक्त हनुमानगढ़ी सहित कई अन्य मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अयोध्या में आज ज्येष्ठ माह के सातवें बड़े मंगल पर हनुमानगढ़ी में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने बजरंगबली के दर्शन पूजन कर अपनी श्रद्धा निवेदित किया, साथ ही सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। शहर के कई स्थानों पर विशाल भंडारों का आयोजन किया जा रहा है, जहां हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए हैं। भक्ति सेवा और श्रद्धा के इस पावन माहौल से अयोध्या पूरी तरह राम और हनुमानमय नजर आ रही है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इकाना क्रिकेट स्टेडियम में कल 17 जून को होने वाले श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय मैच के लिए दोनों टीमें लखनऊ पहुंच चुकी हैं। आज मैदान पर पहले अफगानिस्तान की टीम ने अभ्यास किया और इस समय भारतीय टीम पसीना बहा रही है। भारतीय टीम अभी श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इस अंतर्राष्ट्रीय मैच के मद्देनजर स्टेडियम के अंदर और बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम के आसपास कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन भी लागू किया है, जो कि सुबह 9 बजे से रात में मैच की समाप्ति तक लागू रहेगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा, पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर हुआ उन्नयन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान है आधुनिक अवसंरचना। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा एक दिवसीय मैच। स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: और अब प्रस्तुत है फीफा वर्ल्ड कप की अपडेट्स।
4: Vibes was good, no pressure, just play free.
5: Well, Cape Verde's fans certainly got the party started after their match on the streets of Atlanta with their celebrations.
6: Been to the World Cup for many times, and that's our first time, so we was a little stressed, but they did wonderful.
7: Nobody talked to us about us yesterday. Today they're going to talk about us all night.
5: Also in Group H, on Monday, Saudi Arabia drew 1-1 with Uruguay, whilst in Group G, New Zealand twice took the lead against Iran, but ended up drawing 2-2. Here are the thoughts of New Zealand striker Chris Wood.
8: Look, yeah, it was a big point, but it was one that we felt we probably could win the game. But both teams had chances, both teams took goals well. But yeah, we're happy with our performance. I think it's one of the better ones over the last period of time, so it's something to definitely build on.
5: Belgium also drew 1-1 with Egypt in their Group G opener, and Belgium captain Yuri Tielemans says it was a good match played on a good pitch.
9: Yeah, against Salah, against their whole team. We played against Egypt, not against Mo Salah only. So, yeah, that was the plan, and we tried to block their transition game, which in some moments they came through it. They had some chances in transition, but we know we can do better.
5: And for more World Cup news from the BBC, go to bbc.com/football.
10: World Football Update from the BBC.
11: That was an update on FIFA 2026. Dear listeners, welcome back, and the next

0: Strike is requested by
1: 100.7. Well, 7:32 का ये वक्त है हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर लाइन पर हैं क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम और देखते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं.
2: हेलो
1: हेलो,
2: मैं चिरमिरी कुरासा कॉलेज जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ.
1: छत्तीसगढ़ से इंद्र कुमार सिंह जी ने फोन किया है, राइट?
2: इंद्रभान सिंह.
1: उमरभान
2: इंद्रभान.
1: ओके ओके, इंद्रभान जी. तो इंद्रभान जी बताइए कैसे हैं?
2: ठीक है सर, आप भी अच्छे, मैं भी अच्छा हूँ सर. यहाँ पे मौसम गजब किया सर, यहाँ पर धूप किया दोपहर में, उसके बाद बाद में बादल किया, फिर बाद में धूप किया. इस टाइप उलट पुलट मौसम हो रहा है सर. और मतलब तो पानी फिर कब गिरेगा ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मौसम बनता है फिर वो उसके बाद फिर वहाँ से फिर वो हट जाता है.
1: अच्छा, मतलब बारिश का मौसम बन रहा है लेकिन हो नहीं रही, फिर हट जा रहा है.
2: जी सर, कहीं पर जम के आएगा
1: जी,
2: उसके बाद ही पानी पिएगा.
1: क्या बात है, क्या बात. अच्छा ये बताइए कि आप पहली बार बात कर रहे हैं हमारे साथ या फिर इससे पहले बात हुई है आपकी एफएम पर? कई बार. अच्छा, शायद मेरे साथ पहली बार हो रही है आपकी बात. अच्छा ये बताइए क्या करते हैं आप, जॉब में हैं?
2: नौकरी करता हूँ.
1: ओके, तो इस वक्त अभी तक आप कब लौट आते हैं घर पे, मतलब ऑफिस से कितने बजे तक आ जाते हैं घर पे?
2: मैं सर घर पर आ जाता हूँ सर वही 4:30 तक आ जाता हूँ.
1: ओके, उसके बाद क्या करते हैं, फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं फिर?
2: हाँ सर, वही मैं खाना खाता हूँ, नहाता हूँ सर, फैमिली के साथ, उसके बाद कई केंद्र में भी फोन करता हूँ, उसके बाद उसका प्रसारण सुनता हूँ सर.
1: ओके, और सुबह कितने बजे जाते हैं ड्यूटी पे?
2: ड्यूटी पे सर वही 6 निकलता हूँ.
1: हाँ, तो सुबह थोड़ा अर्ली निकलना होता है आपको. ओके, तो चलिए आपकी पसंद का ये ट्रैक हम प्ले कर रहे हैं. ये अच्छा, ये जो गाना आपने पसंद किया इसको कोई खास रीजन इसका?
2: जी सर, सबसे पहले गीत, पहले फिल्म का नाम बताता हूँ. फिल्म का नाम सर गीत के बोलो सुन सुन सुन प्रसाद के सुन सुन गायक कुमार सानू. गीत आपको श्रोता को आकाशवाणी लखनऊ रेनबो में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को,
1: क्या बात है,
2: उद्घोषक भाई बहनों को, स्टाफ कर्मचारियों को, हेलो एक्टर रेडियो श्रोताओं को, पूरे भारत श्रोताओं को.
1: क्या बात है, कोई छूटा तो नहीं? कोई छूटा तो नहीं. मैं ये पूछा था ये गाना सुनने का कोई खास रीजन, कोई खास कारण आपको पसंद है, किस बात के लिए?
2: बरसात का मौसम आने वाला है.
1: अच्छा, इस वजह से
2: तो ये गाना सुनने में सर बड़ा अच्छा लगता है.
1: चलिए ठीक है, हम गाना प्ले कर रहे हैं, एंजॉय कीजिए इसको. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग.
2: पूरा सुनिएगा,
1: बिल्कुल बिल्कुल, बाय बाय.

0: वेल, बरसात की धुन तो तब सुन पाएंगे जब बारिश होगी, फिलहाल तो गाने में ही धुन सुन सकते हैं। लेकिन एक और धुन सुनाने के लिए हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं जो चाहते हैं कि उनकी पसंद की धुन हम जरूर बन जाएं, लेकिन पहले उनसे बात करते हैं। हेलो जी, हेलो, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है।
1: ये गाना नहीं है जो हम बता रहे
0: हैं। जी हाँ, बताइए बताइए। हेलो, कौन बोल रही है, नाम बताइए। हेलो, जी आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, अपना नाम बताइए।
1: हेलो,
0: हाँ हेलो, अपना नाम बताइए।
1: अभी आपसे तो बात हुई थी।
0: नहीं नहीं, वो तो ऑफ एयर बात हुई थी ना, अभी आपसे बात हो रही है। अब सब लोग सुन रहे हैं, तब कोई सुन नहीं पा रहा था, तब गाना प्ले हो रहा था एयर पे, रेडियो पे। आपकी आवाज़ अब जा रही है, अब सब लोग सुन पाएंगे आपकी आवाज़।
1: रहने दीजिए, फिर कोई भी गाना आप सुना दीजिए अपने पसंद।
0: अरे क्यों, आपको बात नहीं करना?
1: नहीं नहीं हमें बहुत डर लगता है, तो
0: क्या हुआ? हेलो, हाँ क्या हुआ?
1: सर अपनी पसंद का कोई गाना सुना दीजिए।
0: नहीं नहीं, वो तो ठीक है, आप बताइए तो अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रही हैं ये तो बताइए, ताकि सब लोग को पता तो चले कि आपने आपका फ़ोन लगा, आपके जाने वाले भी फिर जानेंगे। अरे आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, लगता कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी पसंद जो आपने बताई थी वो मैं सुनवा रहा हूँ। और दोस्तों इनकी नाम भी, अपना इनकी नाम बताया ना, लेकिन ये क्लियर हो नहीं पाया आवाज़ से इनकी। तो चलिए इनकी पसंद जो इन्होंने बताई थी वो ट्रैक मैं प्ले कर रहा हूँ। 7:42 हो रहा है, मैं हूँ देव आपके साथ। अगर आपको अपनी पसंद का गाना सुनना है तो जल्दी से हमें फ़ोन लगाइए और हमसे बात कीजिए।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: वेल 7:45 का ये वक्त हो रहा है और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और उनकी पसंद जानते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार सर
1: जी। नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं?
2: लवकुश जैतपुर तफगान हूँ, तेरे बारे में किस बोल रहे हैं सर?
1: क्या बात है लवकुश जी, कैसे हैं?
2: अच्छे हैं सर।
1: मौसम कैसा हो रहा?
2: मौसम तो आज धूप दो दिन से हो रही, परसों बारिश हुई थी, मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है इसमें।
1: अच्छा, राहत है पहले से थोड़ी?
2: हाँ कुछ राहत हुई है सर।
1: तो क्या
2: धूप काफी तेज थी?
1: हाँ, क्या चाहते हैं कि बस अब जो है बारिश का मौसम आ जाए या फिर अभी कुछ दिनों और जो ये गर्मी और ये धूप का जो ताप है ये बने रहना चाहिए?
2: नहीं बने रहना नहीं चाहिए, अब तो बारिश का मौसम आ ही गया है, आ जाए अच्छी बात है।
1: आपको मौसम कौन सा अच्छा लगता है? बढ़िया,
2: सभी मौसम अच्छे लगते हैं।
1: सभी
2: ज्यादा ठंडी का मौसम अच्छा लगता है। का मौसम ज्यादा अच्छा लगता है।
1: ठंड का मौसम ज्यादा अच्छा लगता है क्यों? उसमें मतलब रजाई में आप पड़े रहते हैं और देर से उठना फिर जल्दी सोना जो रातें
2: हैं। ऐसी का नहीं, ठंडी का मौसम चाहे जहाँ बैठो और चाहे जहाँ जाओ आओ, कम से कम गर्मी से राहत तो मिलती है।
1: अच्छा, मतलब ठंड से आपको कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितनी ठंड हो जाए?
2: ठंडी चाहे जितनी भी हो, ठंडी से कपड़े पहन लो बाकी चलते रहो।
1: जी चलिए बढ़िया है। और ये बताइए कि इस वक्त क्या कर रहे थे अभी आप?
2: इस वक्त अभी बैठे थे, हमने सोचा फोन मिलाए। कई दिनों से मिला रहे हैं, बार बार बेल जाती, ऐसा किसी भी नहीं, तीन चार बार बेल नहीं जाए लेकिन फोन उठता नहीं, आज उठेगा।
1: हाँ तो भाई अब ये भी है ना कि

0: रोज रोज अगर आपका फोन उठ जाएगा तो फिर दूसरों को भी मौका नहीं मिलेगा।
1: तीसरी बार बेल आई तब आपने फोन उठाया।
0: अब भाई देखिए, अब इस समय हम बात कर रहे हैं आपको, बहुत से लोग मिला रहे होंगे, उनके फोन नहीं उठ रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि फोन मेरा उठ नहीं
1: तो
0: रहा।
1: आएंगे काफी लोग फोन मिलाते हैं तो बिजी तो जाता ही।
0: जी हाँ, और एक बार में एक ही जन से बात कर सकते हैं ना, है ना। तो चलिए, आपकी पसंद का ये ट्रैक हमने प्ले किया है, ये पुरानी फिल्म से है। क्यों पसंद है, फिल्म पसंद थी या फिर गाना पसंद है?
1: नहीं, गाना भी पसंद है, फिल्म भी पसंद है।
0: देखी है आपने ये फिल्म?
1: हाँ देखिए,
0: चलिए ठीक है, तो डेडिकेट करना चाहेंगे या फिर प्ले कर दूं?
1: आपके लिए और सभी सुनने वालों के लिए।
0: तो चलिए, ये मैंने प्ले कर दिया है, और थोड़ा मतलब उस समय फिल्म नागिन से आपका ये गाना है ना।
1: जी।
0: तो चलिए एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, लव कुश जी।
1: नमस्कार।

0: और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, ये बात करते हैं उनसे, उनकी क्या पसंद है जानते हैं। हेलो जी, नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम पीयूष है, मैं सीतापुर से बोल रहा हूँ।
0: पीयूष? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है।
1: मैं सीतापुर से बोल रहा हूँ।
0: सीतापुर से पीयूष बोल रहे हैं भाई, सब लोग सुन लीजिए, जान लीजिए। पीयूष जी क्या करते हैं?
1: मैं पढ़ाई करता हूँ।
0: कौन सी क्लास में?
1: नाइन्थ में।
0: अच्छा, नाइन्थ में, मतलब अभी आप मतलब नाइन्थ में आए हैं इस बार ना? ओके, तो इस बार अगली बार नाइन्थ, उसके बाद टेंथ बोर्ड्स हो गए, अभी 2 साल है। ओके, ये बताइए कि गाना सुनना आपको पसंद है, म्यूजिक पसंद है आपको?
1: गाना सुनना पसंद है।
0: पहले बात हुई है कभी आपकी FM पे? हेलो।
1: हाँ, मैंने तमाम बार बात कर चुकी।
0: ओके, तो चलिए, मतलब आपका फर्स्ट टाइम नहीं है, तो आपकी पसंद का ये ट्रैक मैं प्ले कर रहा हूँ, फिल्म हीरो नंबर वन से आपने कहा है, ठीक है? ओके, किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे या फिर बस?
1: सबसे पहले आपको।
0: ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है, आप अपना गाना एंजॉय कीजिए, सुनिए, दोबारा फिर आपसे बात होगी, मिलाइएगा जरूर, बने रहिए हमारे साथ 100.7 FM रेडियो पर, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।

0: रामराज बोल रहे हैं
1: जी। रामराज जी कैसे हैं
0: जी? हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप कैसे हैं?
1: हम भी बढ़िया हैं। और इस वक्त आप फोन मिलाने के अलावा और मतलब कुछ और काम कर रहे थे, सोच रहे थे
0: कि बस चलाते, लेकिन हर कार समय मेल करते हैं।
1: जी जी, मतलब 7 से 8 बजे का समय जो है आप बिल्कुल फोन पे देते हैं, फोन को डेडिकेट करते हैं किता?
0: जी जी जी।
1: चलिए, आपकी पसंद का ये गाना भी मैंने प्ले कर दिया है, और ये गाना आपको पसंद है?
0: जी पसंद है, 2-4 गाने नाम दे सकता हूँ किसी?
1: मैं डेडिकेट करना चाहते हैं।
0: जी जी जी।
1: हाँ जल्दी से।
0: पप्पू पासी मजहरगंज मनीष मधु नीरज बजरंगी काका मिर्जा इमरान देव रामचरण प्रजापति।
1: चलिए चलिए, हो गया
0: जी? हो गया।
1: चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा, और ये गाना अपना सुनिएगा जरूर। जी नमस्कार। और दोस्तों इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। डीजे देव को इजाजत, 100.7 FM रेनबो से आज के लिए जल्द होगी फिर आपसे मुलाकात। सुनते रहिए 100.7 FM।

नमस्कार, रात के 8 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर फ्रांस के एवियन शहर पहुंच गए हैं। शिखर सम्मेलन कल शुरू हुआ। एवियन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि भारत अधिक टिकाऊ और समृद्ध ग्रह के लिए सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में खरीफ 2026 सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि अल नीनो की संभावित स्थिति को देखते हुए उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश

परीक्षा 2026 का परिणाम आज घोषित किया गया, जिसमें वंदना सिंह ने प्रदेश में टॉप किया। परिणाम में कुल 4,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों को रैंक जारी की गई। इनमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे से 17 जून को पहला कार्गो विमान उड़ान भरेगा। पहले दिन एक कार्गो उड़ान होगी। 1 जुलाई से एयरपोर्ट से वाणिज्यिक और कार्गो सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध हो जाएंगी। कार्गो सेवा शुरू होने से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रदेश के साथ उत्तर भारत की आर्थिक स्थिति को भी गति मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की पहचान और कार्गो मार्ग व परिवहन का मजबूत नेटवर्क तैयार होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 107.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से महकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,
4: वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई।
3: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

0: महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM

0: ये है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत इस्तकबाल आज के इस कार्यक्रम आबशार में। मैं आपके साथ आपकी

तुम्हारी महफिल में हम आज आए हैं इस तरह, तुम्हारी महफिल में हम आज आए हैं इस तरह कि जैसे शमा जलती है परवाने के लिए। तो रात के 8:13 का वक्त हो चुका है और वो शमा जो गज़ल की महफिल से रोशन होती है उसे लेकर आपके साथ हाजिर हो चुकी हूँ मैं आपकी मेज़बान रिचा आपके अपने 100.7 FM रेडियो पर कार्यक्रम आबशार में। तो चलिए इस सफ़र को वापस जीते हैं आपके साथ, क्योंकि आपका रहना हमेशा बेहद ज़रूरी। खैर मकदम इस्तकबाल।

यकीन मानिए ये सफ़र और भी खूबसूरत हो जाता है तब जब आप हमारे साथ होते हैं। आपके साथ हर रास्ता हर शय बेहद खूबसूरत बेहद बेहतरीन लगती है। कहते हैं कि उर्दू ज़बान अपने आप में बेहद मीठी ज़बान है और फिर इस ज़बान में शायरी की बात हो तो क्या ही कहना। यहाँ हर मिसरा एक बूंद की तरह लगता है और हर गज़ल एक बहता हुआ झरना बन जाती है, एक ऐसा झरना जो मोहब्बत के खूबसूरत एहसास से मिलकर बनती है। जहाँ हुस्न बेपरवाह है, जहाँ खुद को खुद की खबर नहीं, बावजूद इसके दिल से बहता हुआ ये आबशार

हमेशा दिल के कोने कोने तक जाकर उसे अपने उस खूबसूरत पानी से कहीं महफूज रखता है। रात के 8:22 का वक्त, आप शार आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर आपकी मेज़बान ऋचा के साथ।

0: ये है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आप सुन रहे हैं आबशार 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

अच्छा मोहब्बत की तासीर भी अजब है ना, जिससे प्यार करता है न जाने ऐसी क्या बात है उसमें कि उसके आने से पहले ही जैसे उसकी हर आहट को भांप लेता है, पहचान लेता है, कदमों की आहट उनके आने से पहले ही दिल महसूस कर लेता है। इसीलिए शायद कहते भी हैं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है अगर कोई प्यार से इतना भर भी कह दे कि तुम मेरे साथ हो। दिल में उमंगों की लहर भी उठती है किसी ताज़ा हवा के झोंके की तरह आकर, बस आपके कानों में ये कहती है कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ। और शायद इसी वजह से उनके आने की आहट, उनके कदमों की आहट को दिल बहुत पहले से ही महसूस कर लेता है। रात के 8:33 का वक्त, आप शार आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर।

मोहब्बत भी अजीब शय है ना, जिसे आप चाहते हैं वो आपके साथ रहे या ना भी रहे, बावजूद उसके उसकी जो यादें हैं, उसकी जो बातें हैं, वो ज़िंदगी में आपके साथ रहती हैं, जैसे किसी अक्स की तरह वो आपके साथ चलती हूँ। और इसीलिए कहती हूँ कि हाँ, मोहब्बत सबसे अलग, सबसे अलहदा, सबसे जुदा है।

ये जिंदगी की रवायत है कि लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन अगर दिलों में मोहब्बत जिंदा है ना, तो ये बिछड़ने और अलग होने का गम भी गम नहीं रहता, क्योंकि फिर तो वो हमेशा रहता है आपके दिलों में बनकर मोहब्बत का खूबसूरत सा एहसास। ठीक वैसे ही जैसे आपसे भले ही यहाँ से विदा लेते हूँ, लेकिन दिलों में मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। बहरहाल 8:42 का वक्त हो चुका है, आप शार को यहीं पर रोकने की मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ठीक 8:45 पर समाचार संध्या और वापस 9 हाजिर हो जाएंगे हम लेकर आपका फेवरेट एंड मोस्ट अवेटेड शो, जिसे आप कहते हैं रेनबो कैफे, आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान और 26

0: 21वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियाम में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए, भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायु सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: ক্রেতা টেলিলক অ্যাপ, ওয়েবসাইট www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की पहली जुलाई

को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1,000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण

0: तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेररिस्ट एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द वाइट

डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई। जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

0: पॉप और रॉक की सिज़लिंग केमिस्ट्री,
1: या फिर मिलियंस ऑफ लिस्टनर्स ने क्रिएट कर दी हिस्ट्री।
0: द वन स्टॉप सेंटर फॉर गंदा म्यूजिक। सिर्फ रेनबो कैफे में हर रात 9 से 10।
1: ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो।
0: धड़कन लखनऊ की।

0: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: क्या हाल है? ठीक है।
2: Exactly my all dear friends, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में और इस पर भी आप सुन रहे हैं इस वक्त आपका अपना फेवरेट चैनल जिसे आप कहते हैं 100.7 FM रेनबो दैट का लखनऊ की। और जहां तक सवाल है इसका कि आपके हालचाल कैसे, मुझे बिल्कुल पता है कि आपके हालचाल एकदम चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं। तो अगर आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो देर किस बात की है, मुझे बता दीजिए ना। बताएंगे कहाँ, FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर कि आप एकदम मस्त हैं, बढ़िया हैं, फाइन हैं, टकाटक हैं, चकाचक हैं। और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ जहाँ पर इस वक्त आपका शो शुरू हो चुका है रेनबो कैफे। एंड यस, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आपकी रचाई।

हाँ जी बिल्कुल, रेडियो कैफे की, रेनबो कैफे की घंटी बज चुकी है, मुझे अच्छी तरीके से पता, और ये इसलिए पता है क्योंकि आपके जो ईमेल्स है ना, ये लगातार मेरे पास आने शुरू हो जाते हैं। रात के 8:59 से ही बड़े सारे ईमेल्स आ चुके हैं, लेकिन मैंने पूछा कि आप हैं कैसे ये मुझे बता दीजिए, और ये बता देंगे तो फिर क्या ही कहने होंगे। मेरे साथ रोशनी रावत, मोनू सेठ भैया और रामराज जी, विकास यादव, वकील अहमद, बाबू अंसारी, मोहम्मद आसिफ एंड विजय पाल यादव, ये सब जुड़ चुके हैं। लेकिन मैंने पूछा आपके हालचाल कैसे, वो तो बताइए मुझे। बहरहाल 9:08 का वक्त हो चुका है, रेनबो कैफे आप सुन रहे हैं, आपकी अपने 100.7 FM रेनबो के साथ। अगर थोड़ी बहुत कसर है अच्छे होने में तो लीजिए फिर, बजा दिया गाना चुस्त दुरुस्त करने के लिए, डांस फ्लोर पर बसा है आपको आना, गाना आपके लिए, सुनते रहिए, जुड़े रहिए।

हैं और उसके लिए बस गाने आप तक हम पहुंचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। आप आ चुके हैं मेरे साथ और बड़े सारे लोगों ने मुझे बता भी दिया है कि हम वो कैसे। अच्छा, मुझसे पूछा है सुल्तान रजा जी ने कि वो तो ठीक है कि आपने पूछा कि आप लोग कैसे, बट ये बताइए कि आप कहाँ थी इतने दिनों तक और कैसी है। तो यही तो थे ना आप, बस दिल से याद करते हम हाजिर हो जाते, बिल्कुल आपके पास थे। और वैसे आपके लिए कुछ प्रोग्राम्स की तैयारियों में लगे रहते हैं और कहाँ जाएंगे हम, आपके साथ ही तो रहते हैं, आपके पास ही तो रहते हैं, आपकी यादों में रहते हैं, आपके ख्यालों में रहते हैं, बस एक बार ध्यान से टटोल कर सोचने और देखने की जरूरत होती है। तो हम बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। और आपने जो हमेशा की तरह लिखा है रॉकिंग रिचा, ये सुनकर पढ़कर मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। आपके साथ साथ जो हैं जुड़े हुए हैं मेरे साथ कौन कौन, सुल्तान रजा जी के साथ जीशान रजा, अफजल रजा, मोनिश सादिक और साथ साथ आपके मदर फादर भी हैं। तो मेरा नमस्ते दुआ सलाम उनको भी कहिए और साथ ही पूरा रजा परिवार है, तो सबकी रजामंदी है, ये अच्छी बात है कि पूरा रजा परिवार साथ में है। और आपने लिखा है, अच्छा तारीख भी मेंशन कर दी है कि इसके पहले वाला प्रोग्राम कब किया था। हाँ, लेकिन आपने बीच में एक डेट कहीं मिस कर दी है, अब की बार जब आइएगा ना तो सारी डेट्स जो है याद करके आइएगा, ठीक है। लेकिन आपने आपका ईमेल भेजा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और साथ में क्या लिखा, एक शायरी भेजी। अच्छा, देखें क्या लिखा है, लिखते हैं, ओ हेलो तुम्हारे लिए शायरी है, अर्ज किया। अच्छा क्या लिखा है, गुलाब जैसे हो गुलाब लगते हो, गुलाब जैसे हो गुलाब लगते हो, हल्का सा मुस्करा दो तो लाजवाब लगते हो, हैं ऐसी क्या बात है। चलिए फिर लीजिए, अब तो हो ही गया, क्या ही कहें, शुक्रिया धन्यवाद करम मेहरबानी इतनी प्यारी सी शायरी के लिए। इंद्रपाल मिश्रा जी भी आ चुके हैं हमारे साथ, लेकिन आपने पूछा आप कैसी हैं, तो आपने इसका जवाब दिया बहुत अच्छे हैं, ये अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छे और हमेशा अच्छे रहें, ये हम चाहते हैं और हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। और आपने हमें लिखा है अमृता मोहली सीतापुर से, हमेशा की तरह आपका ईमेल, थैंक यू सो वेरी मच इंद्र कुमार मिश्रा जी, आप रोज़ जुड़ते हैं और इतने कीमती वक्त निकाल कर अपना कीमती वक्त हम सबको देते हैं, ये अच्छी बात है ना। मोहम्मद आसिफ जी भी आ चुके हैं, हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं और लिख रहे हैं प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, आप अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें, यही दुआ है। अच्छा हम अच्छे रहे, हाँ ठीक है, ये अच्छी बात है, तो हम भी आपसे कह रहे हैं सेम टू यू, आप भी हमेशा बहुत अच्छे रहे। और नाचीज को रिचा कहते हैं, ठीक है, अगर नाम में कहीं कंफ्यूजन है तो आपने पूछा नाम बता दीजिए, तो भैया नाचीज को रिचा कहते हैं, इतना छोटा सा हमारा नाम है दो अक्षर का, है ना, तो बस रिचा इसे याद कर लीजिएगा। मोनू सेठ जी वापस आ गए और लिख रहे हैं, पहले गाने ने पूछा कि हाल हाल, तो अब जब आप ऐसे गाने बजाएंगे हाल तो अच्छे हो जाएंगे आधे का, इसको कहते हैं चालाकी। इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी जो हम प्लान कर लेते हैं ताकि आप सब बहुत अच्छे हो जाएं, अगर कहीं भी डल डल से पड़े हो तो जैसे ही पहला गाना कान में पड़े आपके पैर जो है डांस फ्लोर पर पड़े, ये हमारी सब स्ट्रैटेजीज होती हैं और देखो हम इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। आपने लिखा, वैसे आज बजरंग बली के भंडारे भी खूब खाए रहे, क्या आपकी किस्मत है, अच्छी बात है आपने खाया। और आपने लिखा है, हाल अच्छे बनाए हुए हैं रेनबो कैफे शॉप पर, इस वक्त आप सुन रहे हैं, बजाए हुए हैं आपने लिखा हुआ, ग्राहक को भी साथ साथ सुनाए हैं, अच्छी बात है, अच्छी शायरी करने लगे आप धीमे धीमे, करते रहिए और एक दिन बड़े अच्छे से एकदम रवा रवा हो जाएंगे, क्या समझे। कृष्णकांत सिंह जी भी है मेरे साथ, क्या लिख रहे हैं, आज रेनबो कैफे कुछ खास होने वाला है क्योंकि हम स्टूडियो में आ चुके हैं, सही बताइए। अगर ऐसा कुछ हो तो वापस मुझे बताइएगा, ठीक है। और आपने लिखा है कि ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल का मौका भी है, तो आइए मिलकर सुनते हैं रिचा जी द्वारा प्रस्तुत इस धमाकेदार प्रोग्राम को। वाह वाह वाह, क्या बात है, आपने कितने अच्छे अंदाज में, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आपके साथ आपके लिए लेकर आ चुके हैं ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, वैसे ही आपने लिख के भेजा, मतलब सीखना आप सीख रहे हैं आप सबके सब, अच्छा लगता है देख करके। आपने लिखा, कम ऑन लेट्स प्ले इंटरेस्टिंग म्यूजिक, आ हा, ये देखो अंदाज आ रहा है बिल्कुल बढ़िया वाला आरजे वाला। अच्छी बात है, थैंक यू सो वेरी मच, आपने लिखा, धन्यवाद मुझे दिया, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसरगंज बहराइच से आपका ईमेल है, थैंक यू सो वेरी मच कृष्णकांत सिंह जी, आपका इतना खूबसूरत ईमेल हम तक पहुँचाने के लिए। रणधीर गुप्ता जी आ चुके हैं हमारे साथ, बबीता जी को लेकर के साथ में, और आपके साथ आज सत्यम गुप्ता भी और सुंदरम गुप्ता भी हैं। आपने लिखा है, कार्यक्रम में खुशबू बिखेर दिया है, गाने अच्छे लग रहे हैं, बेहतरीन प्रस्तुति, धन्यवाद दिल से आपका। और आपने लिखा कहाँ से है, ये है ओखला संगम विहार दिल्ली से आपका ईमेल है मेरे पास, दिल से आपका धन्यवाद आपके ईमेल्स के लिए। नीलू क्या हो गया आपको, क्यों तबीयत खराब है आपकी, रेनबो के साथ जुड़ जाइए और तबीयत आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी। और भाई इनका फोन खराब है, इन्होंने ऐसा लिखा है और हमसे कहा है कि आप बोल दें कि फोन कर लें, किसको फोन कर दें। आपने लिखा है, आज बहन तनु शर्मा दुबग्गा लखनऊ से सुन रही है, अच्छा सुन रही है, तो ठीक है उनको बोलिए फिर रात 12 बजे तक उनको रहना है। तनु नीलू की तबीयत खराब है, आप मुझसे बात कर लीजिए, आप कहना चाहती हैं लीजिए, हमने बोल दिया, ठीक है शुक्रिया। लेकिन ध्यान रखें तबीयत और मौसम का, जो मौसम है उसको देखते हुए तबीयत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। बाकी अगर रही सही कोई कसर है ना, तो ये रेनबो कैफे आपके साथ हमेशा तैनात रहता है।

आपको चुस्त दुरुस्त करने के लिए अगला गाना भी आपको भेज रहे हैं। अगर कहीं पैर थोड़े से रुके हैं तो भैया ये देखिए, जब गाना आते ही ना आप फ्लो पर वैसे ही डांस करने लगेंगे, कूद कूद कर वापस से। लीजिए गाना भेज दिया आप सब तक, और 9:17 का वक्त आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त, आपकी रुचा, आपके अपने 107 FM रेनबो पर।

तो रेनबो कैफे का असर है तो उसका जहर तो चढ़ेगा चढ़ेगा, सिर चढ़ के इसका जादू बोलता ही बोलता। तभी तो देखिए आपके इतने सारे ईमेल्स आते हैं कि मुझे लगता है अरे कोई ईमेल छूटे ना, बस आपके साथ हम फटाफट ईमेल्स की तरफ भी मुड़ जाए जुड़ जाए। रुख कर ले गुलफ्सा सिद्दीकी मेरे साथ आ चुकी है और लिख रही है कि आप बहुत अच्छी है और हमको सुनकर और अच्छी होंगी, इसके लिए और धन्यवाद, बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद दिल से आपका, और गाने आपको पसंद आ रहे हैं इसके लिए भी शुक्रिया, और आपने हमें हमेशा की तरह आपका ईमेल लिखा है संडीला से। और आपके साथ साथ कौन कौन है आज, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रोशनी रावत, बबीता राव, नीलू शर्मा, निशा, ममता, महक, और हाँ महक, ममता गौतम, महक अंसारी, ये सारे लोग इस वक्त हमें मिलकर के सुन रहे हैं। तो आपको हम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि आप खुद तो आती हैं और साथ में जो आपके आएं बाएं दाएं रहते हैं ना उनको भी ले आती हैं। इससे अच्छा और काम कोई हो नहीं सकता कि चलो रेनबो कैफे पर बढ़िया प्रोग्राम शुरू हो चुका है और चलना चाहिए, तो हम इसके लिए आपको वापस थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद कहते हैं। ठीक है, सोनू बरवाना जी आ चुके हैं। अच्छा देखिए क्या लिखा है उन्होंने, लिख रहे हैं कि हम श्रोता सब बहुत अच्छे हैं, हालचाल बहुत अच्छे हैं और आज आपके सुपरस्टार हर्षित सेठ का जन्मदिन है। अच्छा तो बधाई में एक सुपर फास्ट गाना तो बनता, तो मेरे ख्याल से तो गाने सारे के सारे सुपर फास्ट बज रहे हैं, आपने देर कर दी, आपको कहना चाहिए तो चलो रेनबो कैफे ऑन कर लो, आज की पार्टी हमारी तरफ से सारे गाने तुम्हारे लिए। देखो दिमाग नहीं लगाया आप, थोड़ा सा सोचना चाहिए था पहले ही, बट कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, उनको बोल दीजिए क्या के रेनबो का वॉल्यूम फुल करके बैठ जाए, उनसे कह दें कि सारे गाने सुनो सब तुम्हारे लिए बजाएं, हमने स्पेशल ट्रीट दिए तुम्हें आज। ठीक है, विकास यादव जी भी आ चुके हैं, वापस आए हैं मेरे पास और लिख रहे हैं कि प्रोग्राम आप यूपी के सुल्तानपुर से सुन रहे हैं, भोजपुरी गाने का इंतजार आपको रहता है, पूरा गाना उस इंतजार में कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता और गाना सुनते ही चले जाते हैं। वाह वाह वाह क्या बात है, तबीयत और प्रोग्राम दोनों मस्त हैं भोजपुरी गाने के इंतजार में। तो भोजपुरी गाने तो आपके लिए बजी चुके हैं, अब तक कई सारे बजे, आगे भी बजी जाएंगे, बट बहुत शुक्रिया आपने आपका ईमेल भेजा, कहां से भेजा, हां सुल्तानपुर से, यस आपने बताया तो मुझे अभी, धन्यवाद आपके ईमेल के लिए, आगे भी आपका ईमेल आता

हमें इसका दिल से बेसब्री से इंतजार रहेगा, है ना। आंचल सेठ भी है मेरे साथ और लिख रही है हम सब बहुत अच्छे हैं दीदी जी, बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे लिख देते हैं, यकीन मानिए। और आपने लिखा कि आप तो अच्छी होंगी, हाँ बिल्कुल अच्छे। अंजू दीदी बहुत दिन से नहीं आई है, उनको मिस कर रहे हैं। अच्छा ऐसी ही बात है, तो चलिए आज आपकी विश को पूरा कर देते हैं। तो वो जाइए, मैं आपको ये वरदान दे रही हूँ कि कल जब आप अपनी आँखें खोलेंगी तो मन की आँखों से आप उन्हें देख पाएंगी, और कानों के जब पर्दे आप खोलेंगी ना तो आप उनकी आवाज़ को सुन पाएंगी। देखना ये मेरी तरफ से आपको आशीर्वाद है, आपकी विश पूरी हो, ठीक है। बहरहाल आपने ईमेल किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका ईमेल आंचल अंकित सेठ रायबरेली सारे लोगों के साथ मिलकर मेरे पास आया है, धन्यवाद दिल से आपका। बाबू अंसारी जी भी आ चुके हैं, और अहमदपुर बाजार बाराबंकी से आपका ईमेल है, प्रोग्राम आपको हन हन हुआ लग रहा है। तो ये जो वर्ड आप निकाल के लाते हैं ना, ये बड़ा अच्छा सा लगता है, जबरदस्त। और आज हमारे गांव की का मेला है तो आ जाइए, अभी तो देखो नहीं आ पाएंगे, अब ऐसी बातें मत करिए, कैसे आएंगे बताइए, आप खुद ही सोचिए, जरा दिमाग लगाइए, है जानबूझ के लिखा है ना, बट कोई बात नहीं लिखा इसके लिए आपने, हमें इनवाइट किया इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। आपने लिखा है कि रेडियो दोस्त का नाम शामिल कर लीजिए, कौन है आपके रेडियो दोस्त? कुलदीप गुप्ता, फैज़ अंसारी और गौश मोहम्मद अंसारी। और ये जो आप डांस करते हो, जो आपने जीआईएफ भेजा है, ये बड़ा मस्त वाला भेजा है आज, मतलब ऐसे डांस कर रहे हैं फिर, ये भी बताइए हमें, ताकि हमें भी अंदाजा हो कि हाँ आपके पैर बिल्कुल ऐसे ही थिरक रहे हैं। अगला ईमेल किसका आ चुका है? सुल्तान रजा जी, आपका ईमेल हमने शामिल कर लिया, आप आने ही सुन नहीं पाए, इसके लिए तो अब क्या ही बताएं, आपने लिखा कि कॉल आ गई थी तो नहीं सुन पाया, कोई बात नहीं हमने शामिल कर लिया, तो आप तसल्ली कर सकते हैं, दिल को दे सकते हैं, और ना यकीन हो तो जो मिस सुन रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, बता देंगे अभी आपको कि हाँ हाँ इसी बहाने उनका भी टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एम के राज लखीमपुर से है मेरे साथ, मुनीश कुमार राज और भानपुर हरवा जिला लखीमपुर खीरी से, हमें FM रेडियो के दीवाने, ये हमने हम तो हैं ही, बट ये भी कह रहे हैं, कौन कह रहा है? मुनेश राज जी कह रहे हैं, हम हैं FM रेडियो के दीवाने, आपकी आवाज से हमें हर कोई जाने। आपने लिखा कि हम ठीक हैं, हम बिल्कुल बढ़िया हैं, आपके जवाब में मैं आपको बता रही हूँ, कार्यक्रम में गाने अच्छे बजेंगे ही, क्योंकि अच्छा और कोई भोजपुरी गाना सुनवा दीजिए, तो कई सारे भोजपुरी बज चुके हैं, लेकिन फिर भी आप रुकिए मेरे साथ रहिए, अगर कहीं आप छूट गया है तो एक आध गाने भी ज़रूर से आप तक भोजपुरी पहुंच जाएंगे, ठीक है। बाकी आपने लिखा है खूब झूमते और ज़्यादा डांस होता है तो गर्मी बहुत पड़ रही है, हाँ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, कभी कभी तो ये सब होता ही है ना, लाइक रेनबो कैफे सुनना है तो ये तो होगा ही, क्या समझे। अरविंद कुमार दुबे जी भी आ चुके हैं हमारे साथ, और आपने लिखा है कि आपकी मुस्कान रेनबो कैफे की दुकान, गाने धमाकेदार, बड़े मौज मस्ती की पहचान, डांस करने का उफान, मन हो रहा है बेईमान शैतान, वाह वाह क्या बात, भोजपुरी हरियाणवी पंजाबी हर तरह के है सामान आपने लिखा है गानों के, हाँ ये अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको स्पेशली रेनबो कैफे में आपको ये सारे गाने सुनने को मिल जाते हैं। और आपने हमें लिखा है मिर्ज़ापुर धर्मादेवा जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, और आपके साथ अरविंद दुबे, दीपा दुबे, गोविंद दुबे, प्रतिमा दुबे, प्रतिष्ठा दुबे, तन्वी तिवारी, श्याम कुमारी, ये सारे लोग मिलकर इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। तो बस ये साथ बना के रखिए, आपके साथ के साथ अगला गाना भी हम आपको भेजे दे रहे हैं, डांस कर रहे होंगे, नजर लग सकती है, तो चलिए काला डोरा बांधिए पैरों में ताकि आपके पैर को नजर ना लगे, और गाना आपके रेडियो सेट पर है, बिल्कुल ध्यान से कान लगा के सुनिए।

राजस्थान की वादियों से ऐसे प्यारे खूबसूरत से गीत बजे, ना आप घूमे आप ना नाचे, ये हो नहीं सकता। वैसे भी जब घूमर की बात आती है तो ये एक अलग ही इसका जो है ना क्रेज होता है, इसकी एक अलग ही बात होती है। 9:42 का वक्त हो चुका है, ईमेल्स मेरे पास लगातार हैं, चलिए वापस उन तक पहुंचते हैं। जितेंद्र नामदेव जी का ईमेल है और आपके साथ साथ बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, खनक नामदेव, नाम कितना प्यारा है खनक नामदेव, वाह, आरूही नामदेव, सौम्या नामदेव और ये सारे लोग हैं। और आपने में ग्राम पोस्ट खन्नौदी जिला शहडोल मध्य प्रदेश से आपका ईमेल भेजा, दिल से धन्यवाद। आपने लिखा है कि आपके आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, आपका आना ही कयामत ढाना है। वाह वाह वाह, क्या बात है, दिल खुश हुआ। इसी बात पर देखो मैंने म्यूजिक थोड़ा सा तेज कर दी, जब कुछ अच्छा होता है तो थोड़ा सा रिदम बढ़ा दिया करते हैं इस तरीके से। महेंद्र दीपन जी, आई होप कि आप जुड़े हैं मेरे साथ और घूमर नखराली ने आपको जो है सराबोर किया होगा राजस्थान की वादियों से, है ना। तो बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं इस वक्त जिला नागौर राजस्थान से हैं और आपका ईमेल आपने भेजा, दिल से आपका धन्यवाद। मोनू सेठ जी वापस आ चुके हैं और आपको आपने कहा कि अंजू जी के आने की अग्रिम बधाई, ठीक है हम बोल देंगे उनको कि आपके लिए बधाइयाँ अभी आ गई हैं, अब आप भी आ ही जाइए। प्रतिभा शर्मा जी आ चुकी हैं हमारे साथ और आपने हमें जिला सीतापुर से आपका ईमेल भेजा है और जो ये लिखा ना, मेरी प्यारी से रिचा मैम जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, ये बहुत अच्छी बात है। ये जो आप लोग लगा देते हैं ना एडजेक्टिव आगे बड़े प्यारे प्यारे से, दिल खुल दे जाते हैं। गाना थी ना उनका दलेर मेहंदी का, क्या दिल कट के ले गई वाला, वही वाला हाल होता है ऐसे कुछ। बट शुक्रिया दिल से आपका। और आपने पूछा कैसी हूँ, तो मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सुबह से याद कर रही थी, अरे वाह कितनी अच्छी बात है, हमें आपने याद किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने टाइम सुनकर बहुत अच्छा लगा, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, धन्यवाद, दिल से याद किया था ना आपने। इसीलिए कहते हैं शिद्दत से आप कोशिश करें तो कायनात भी लग जाती है उस चीज़ को पूरा करने में, आपने तो मैं दिल से याद किया था, हम कैसे नहीं आते, देखो हम आ गए। अगला ईमेल किसका है मेरे पास, ये पहुंचे हैं कमल पांडे जी, क्या लिख रहे हैं आप। आपने में लिखा है ग्राम मोहल्या कला चौराहा जिला सीतापुर से आपका ईमेल है, उत्तर प्रदेश से है और आपको रेनबो कैफे आप जुड़े हैं इससे, पसंद आ रहे हैं गाने, एक से बढ़कर एक बज रहे हैं, आप भी साथ में झूम रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। झूमने वाली बात, हम चाहते हैं कि आप झूमते रहें, गाने बजते रहें और आप यूं ही डांस करते रहें, धन्यवाद उसके लिए हम आपको भेजते रहें क्योंकि आप इतना कीमती वक्त जो हमें देते हैं। विनीत कुमार जी का भी ईमेल आ चुका है और विनीत कुमार जी ने हमें ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से आपका ईमेल भेजा है और गाने आपको अच्छे लग रहे हैं, लिख रहे हैं आप इतना मीठा बोलती हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं आप जब आती हैं तो। चलो बच्चों को आप मेरी तरफ से बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए और उनसे कहिए बस ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें, सुनते रहें, वो रहते हैं साथ में तो और अच्छी एनर्जीज आ जाती है ना। और आपके साथ साथ आज़ाद सेमरी से वीरपाल, अतरौली पट्टी से ओमकार, अतरौली सीतापुर से सुरभि, अच्छा सुरभि सीतापुर से सीमा रावत, राजाजीपुरम लखनऊ से संतोष मौर्य, हरदोई से संजय, अतरौली संडीला से समा परवीन, अंसारी सीतापुर से ममता, हरदोई से और आज़ाद सेमरी से वीरपाल, अतरौली पट्टी से, ये पूरा एक नाम था जो मैंने पहले गलत पढ़ दिया था, आई गेस आई होप कि अब मैंने इसको सही कर दिया होगा, है ना, कर दिया ना सही। अगला ईमेल किसने भेजा है मुझे, ये है नीलू जी वापस आ गई हैं, पेट में दर्द नहीं बंद हुआ, पक्का कुछ अटर सटर खाया होगा, अब आप थोड़ा दवाई वगैरह लें, अपना ध्यान रखें और रेनबो के साथ जुड़ी रहें, यहाँ आप रहेंगी आपका मन लगेगा और जो पेट में जो दर्द है ना उससे आपका ध्यान हटेगा। नेक्स्ट ईमेल किसने मुझे भेजा है, राही मेरे साथ हैं और आप लिख रहे हैं गुड इवनिंग राही, राही है मेरे साथ और आप कैसी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, 8 बजे से लगातार जुड़ी हुई हैं, जुड़ी हैं, गज़ब की गज़ल लगी आपको सारी, इसके लिए भी धन्यवाद। आपने लिखा मेरे दोस्त मुझसे नाराज़ हैं, आप बोल दीजिए नाराज़ ना हो मुझसे, अरे भाई क्यों नाराज़ हैं, ज़िंदगी बहुत छोटी है, खूबसूरत है पर छोटी भी बहुत है, तो एक दूसरे के साथ इसको अच्छे से बिताइए, सॉरी वॉरी बोल दीजिए भाई, और अगर वो नहीं पहल कर रहे हैं तो आप भी कर दीजिए, आप भी कह दीजिए, ठीक है, और कभी कभी झुक जाने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं, मतलब सही जगह, ये मेरा मतलब है, और आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है इसके लिए दिल से धन्यवाद। अमन नवाब भी है मेरे साथ, लिख रही हैं हेलो डियर चादी कैसी हैं आप, अच्छी हूँ अमन, बहुत शुक्रिया आपके लिए। और आप तो लिखा आवाज कितनी अच्छी है सही बताइए। लिखने का रोज सुबह 5 बजे आप आकर मीठी सी आवाज मेरे कान ने बोले अमन सुबह हो गई उठ जाओ। लिख रही ना उठ जाऊं तो आप कहना, ऐसे तो 8 बजे से पहले नहीं उठती, तो अब से उठ जाएगा, कल सवेरे भी आपको अच्छी अच्छी आवाजें सुनाई पड़ेंगी, कानों में जो रस खोलेंगी, तो आप भी उठ जाइएगा क्योंकि सवेरे उठना अच्छा है सेहत के लिए। और आपने लिखा सुपर सॉन्ग, सॉरी जो प्यारी सी तस्वीर भेजी है ना वंस अगेन अमन, इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद, पिछली वाली भी बहुत खूबसूरत थी, ये भी बहुत अच्छी है, इसके लिए भी आपको लॉट्स ऑफ लव।

धन्यवाद, शुक्रिया। तो चलिए फिलहाल तो अभी 9:47 का वक्त हो चुका, एक ईमेल और ले लेती हूँ। शिवराज जी का ईमेल है मेरे पास, ये बबुरिहा पोस्ट बरौली मालिक जिला बाराबंकी से आपने ईमेल भेजा है। आपका लिख रहे हैं एक भोजपुरी, आपने देर कर दी, कितने सारे तो भोजपुरी गाने बजे, आप कहाँ थे, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपने लिखा है कि आपके चाचा कुछ लोग शाम को FM सुनने आते हैं और आपने चाचा का नाम भेजा है, राम नरेश जी हैं और देर रात तक FM सुनते हैं। हाँ तो उनको बोलिए रहना है, 12 बजे तक रहें हमारे साथ। आज का रजनीगंधा भी विशेष है क्योंकि भारतीय सिने जगत की एक बड़ी खास शख्सियत को लेकर आपके साथ हम जुड़ने वाले हैं। एक वर्सटाइल शख्सियत है, वो कौन है वो, उनको जानना के लिए, उनके बारे में सुनने के लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ। कुछ नाम भेजे हैं आपने, पल्लवी, कोमल, अभिजीत, राजू, सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपने ईमेल भेजा लेकिन कोई भी सॉन्ग सुनाया नहीं, कौन सा ईमेल। मैम जी हमने हर मेल में सॉन्ग बोला सुनने के लिए, तो मैं आपको ये बता दूं अगर आपने ऐसा भेजा तो ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है ना, इसीलिए आपका गाना आप तक नहीं पहुंचा। लेकिन अगर आप 2 बजे से 3 बजे के बीच भेजते हैं आपके ईमेल्स या फिर 7 से 8 आप जुड़ते हैं तो वहाँ गुंजाइश रहती है कि हाँ आपके जो गाने आपने रिक्वेस्ट किए हैं वो आप तक पहुँच जाएँ, ठीक है। और कोई किसी से नाराज़ है, किसी से कुछ गलती हुई है तो माफ़ी मांग लीजिए, सॉरी बोल दीजिए, जैसे उन्होंने कहा। ये बात इसलिए कह रही हूँ, पवन सिंह आ चुके हैं, सॉरी कहना चाहते, तो चलिए इनके थ्रू उन तक जहां नाराजगियों के दौर हैं शायद खत्म हो जाए, शायद कुछ कम हो जाए। 9:48 का वक्त, रेनबो कैफे, आपकी अपने 107 FM रेनबो पर, ये आपकी दोस्त आपकी रुचा के साथ, सुनते रहिए, न्यूज़ जुड़े रहिए।

गजब। तो आपके ईमेल से मेरे पास अभी ब्रजेश सिंह दीपू जी का ईमेल आया, कैसरगंज बहराइच से। आप लिख रहे हैं कि रेनबो कैफे का मजा दोस्तों के साथ गांव के बाहर बैठकर ले रहे हो, तहे दिल से धन्यवाद इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए। तो मेरा दिल से धन्यवाद आपको इतना वक्त निकालकर हमें सुनने के लिए, और ऐसे ही सुनते रहिए, हम कोशिशों में अपने चार चांद लगाने की कोशिश करते रहेंगे हमेशा की तरह, फिर तो आप बता ही देंगे। मनोज विश्वकर्मा जी वापस आए और लिख रहे हैं, प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाली मीठी सी आवाज को प्यार भरा गुड इवनिंग दोस्तों, प्रोग्राम की प्रस्तुति जबरदस्त। छत्तीसगढ़ जिला बलौदा बाजार ग्राम तारा शिव मोहल्ला ठाकुर चौक से आपका ईमेल, बहुत शुक्रिया धन्यवाद। महेंद्र जीपन दीपन जी आपने लिखा, थैंक यू सो वेरी मच वो राजस्थानी गाना बजाने के लिए। लिख रहे हैं, दोस्त का बर्थडे था, सबने मिलकर बहुत डांस किया, शुक्रिया धन्यवाद आपके ईमेल के लिए, आगे भी ऐसे ही भेजते रहिएगा। गुलाब शाह है मेरे साथ वापस और लिख रही है, आए हाय ऐसा इन्होंने लिखा है, और लिख रही है कि मजा आ गया, गजब का प्रोग्राम कर दिया, सुनकर अच्छा लगा है, और आप इस वक्त आपके मायके में, तब तो ये बड़ी अच्छी बात है, मायके वालों को लग रहा होगा रेनबो बज रहा है, रेनबो कैफे सुना जा रहा है। तो शान जब जब कुछ अच्छा होता है ना, आप किसी चीज से जो जिसे आप बहुत प्यार करते हो उसकी तारीफ अगर हो तो अच्छा लगता है ना, तो रेनबो की तारीफ हुई होगी तो जाहिर सी बात है कॉलर्स खड़ी किए कि नहीं किए कि आपका रेनबो बज रहा है, उस पर रेनबो कैफे बज रहा है, ये अच्छी सी बात है। तो इंजॉय करते रहिए वहीं पर आपके लोगों के साथ, और साथ साथ रेनबो तो है ही आपके साथ। गीता जी का ईमेल आया, हमार मिलवा काहे छोड़ दी ही दीदी जी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, इतने सारे ईमेल्स के नीचे कहीं गुम हो गया होगा, छुप गया होगा, हम ढूंढ के निकाल करके ले आए, कहीं किसी का ईमेल बचा तो नहीं है। और आपने लिखा, भोजपुरिया तड़का जबरदस्त लगा, कैसन है आप दीदी जी, आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक है हम। ताली बंसारी जी आए, लिख रहे हैं, प्रोग्राम छूटते छूटते बच गया चलिए अच्छी बात है कि आप आ गए, क्योंकि आप लिख रहे हैं पास में मेला देहा, तो जाइए फिर मेला ही घूमिए, फिर क्या ही कह सकते हैं। बट एनीवेज आप आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा यूं ही आते रहे। आपने लिखा, रेनबो तो आपकी आवाज़ सुनते ही है हाथ की उंगलियाँ तुरंत मेल पर क्लिक कर गई, वाह वाह वाह क्या बात, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। रात 12 बजे तक आप रहने वाले हैं मेरे लिए, इसके लिए भी दिल से धन्यवाद, ज़रूरी है। इंडियन सिनेमा की बहुत ही बेहतरीन सी आवाज़ को हम आप तक लेकर आएंगे, एक शख्सियत को, वर्सेटाइल एक शख्सियत है, कौन है जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रिंसी सिंह जी भी हैं हमारे साथ, और सांडी जनपद हरतोई से आपका ईमेल है, प्रोग्राम का प्रसारण नहीं आ रहा, आ रहे ये कैसे हो गया प्रिंसी जी, इतने सारे लोग जुड़ गए मेरे साथ, आप कहाँ रह गई, बट एनीवेज चलिए कोई नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। और ब्रजेश जी का ईमेल वापस आया, आप लिख रहे हैं, धमाकेदार रेनबो कैफे का मज़ा आ गया, बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका ईमेल, मैंने पढ़ा था शायद आप छूट गया उससे, बट कोई बात नहीं, वो तमाम सारे लोग, चूंकि 9:57 का वक्त हो चुका है, वो सारे लोग जिन्होंने आज मुझे ईमेल्स भेजे आपका दिल से धन्यवाद। देख रही हूँ किसी का कोई ईमेल छूटा तो नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ सबके ईमेल शायद, हाँ सबका हो गया, किसी का नहीं छूटा, अगर छूट गया हो तो अगली बार के लिए तैयार रहिएगा, हम जब आएंगे तो कोशिश करेंगे कि वो छूटा हुआ मेल जो आप वापस मुझे भेजेंगे उसको हम पढ़ दें। हाँ देखा कितने समझदार है ना। बहरहाल 9:57 का वक्त हो चुका है, शो को वाइंड अप करने की है बारी, रेनबो कैफे से हम लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, अगला घंटा जो है रजनीगंधा का सफर उस पर शुरू होगा, जहां हम रहेंगे रात 12 बजे तक आपके साथ। और आज के रजनीगंधा में आपको रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारतीय सिने जगत की एक वर्सेटाइल शख्सियत को लेकर हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं, जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है, जिनके गाए गाने, जिनके कंपोज किए गए गाने, या फिर जिनके द्वारा निर्देश

फिल्में जब आप देखते हैं ना तो बस आप देखते ही हैं, सुनते ही हैं और गाते ही रह जाते हैं. 9:58 फिलहाल आज के लिए आपकी दोस्त आपके रिचा को दीजिए रेनबो कैफे से इजाजत, पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए, न्यूज़ जुड़े रहिए.

नमस्कार, रात के 10 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग सप्ताह 15 जून से 21 जून 2026 के अंतर्गत चंदौली के सदर व नियामताबाद विकासखंड में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को निरोगी काया के लिए जीवन शैली में योग अपनाने के लिए प्रेरित किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने कुशल प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में योगाभ्यास किया। योग शिविर में चिकित्सा अधिकारी डॉ सौरभ साहू एवं डॉक्टर जी पी सिंह और योग प्रशिक्षक ने लोगों को विभिन्न आसनों से मिलने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नागरिक सुरक्षा विभाग, जो पूर्व में मात्र 14 जिलों में विद्यमान था, की स्थापना वर्तमान में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में की जा चुकी है। नागरिक सुरक्षा की आवश्यकता वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत और अधिक व्यापक हो गई है। वर्तमान में न केवल पड़ोसी देशों से युद्ध का खतरा विद्यमान है, अपितु आतंकवाद के कारण देश के प्रत्येक नागरिक को सजग रहने की आवश्यकता है। ये बातें उत्तर प्रदेश के होम गार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने केंद्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान सीतापुर रोड पर 12 दिवसीय नागरिक सुरक्षा विभाग के नव सृजित जनपदों के नव नियुक्त स्वयं सेवकों का विशेष सिविल डिफेंस बेसिक ओरिएंटेशन कोर्स का शुभारंभ के अवसर पर कही। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महिला किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महिला किसान मजबूतीकरण परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 14.16 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। परियोजना के तहत अनुसूचित जनजाति की महिला किसानों को कृषि क्षेत्र में सशक्त बनाने, उन्हें आधुनिक एवं स्थायी खेती से जोड़ने तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जनपद गोरखपुर में आयोजित योग सप्ताह कार्यक्रमों के तहत गोरखपुर के सांसद रविकिशन ने आज विभिन्न योग शिविरों में सहभागिता कर लोगों को स्वस्थ एवं संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की।

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन

0: रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: तो रात के 10:04 का वक्त वापस आप सबके साथ हाजिर हो चुकी हूँ मैं, आपकी दोस्त, आपके रचा लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसे आप कहते हैं रजनीगंधा।

वैसे ही रजनीगंधा का जादू तो है, जब जब इसकी सदाएं फिजाओं में गूंजती है ना, तो दिल की बेकरारी दिल के मचलने का सबब जैसे तय हो ही जाता है, खासकर तब जब बात प्यार इश्क मोहब्बत के किस्सों से भरी हो। लेकिन उससे भी ख़ास सबब तब होता है जब किसी ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे रूबरू करने के लिए हम रजनीगंधा के सफ़र में आ जाते हैं। और आज जिन्हें लेकर आए हैं वो तो एक ऐसी शख्सियत हैं जो बहुआयामी, जिन्हें अगर हम कहें तो कतई गलत नहीं होगा। न केवल एक सिंगर बल्कि एक कंपोज़र, फिल्म डायरेक्टर भी आप उन्हें कह सकते हैं। उन्हीं का कंपोज़ किया पहला गीत मैंने आप तक पहुंचाया। शायद आप समझ चुके हों कि मैं आपसे किसकी बात कर रही हूं, लेकिन अगर नहीं समझे तो एक गाना और देते हैं। इस गाने को भी सुनिए, और अगर तब भी ये अंदाज़ा वहाँ तक नहीं पहुँचा तो हम हैं ना उसके लिए, आज के रजनीगंधा में उस शख्सियत को आपसे मिलाने के लिए। रात के 10:09 का वक्त, रजनीगंधा के इस खूबसूरत सफ़र में आपके साथ मैं आपकी दोस्त आपकी रचा, और ये गीत आप तक। बेहद सुरीला सा गीत है जिसे कंपोज किया उन्होंने। चलिए सुनते हैं इस गीत को।

यकीन मानिए, जब भी कभी हवाओं में, फिजाओं में इतना कोई सुरीला सा राग गूंजता है ना, तो दिल बेसाख्ता एक आवाज के पीछे जैसे कहीं चल पड़ता है। वो आवाज जो बहुत मखमली, बेहद भावपूर्ण, गंभीर और सुरीली, जिसके बारे में अगर हम कहें तो कतई गलत नहीं होगा। ये जब धुनें फिजाओं में गूंजती है ना, तो अपने साथ साथ लेकर के आती हैं वो गीत जिसको उन्होंने

गाया भी और कंपोज भी किया अगर हम बात करें तो, ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, याद आया कुछ? जब कभी इस गीत के बोल कानों में पड़ते हैं तो हाँ, याद उनकी ना आए या आप उन्हें पहचान ना पाए, ये हो नहीं सकता। फिजाओं में, हवा में गूंजती ये धुन जो ये कहती है कि ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे। कोहुरा फिल्म की, जो कि 1964 में आई थी, इस गाने में बिस्वजीत चटर्जी और शर्मिली वहीदा रहमान एक दूसरे के साथ इस खूबसूरत से गीत को पर्दे पर अभिनीत करते हुए आपको नजर आते हैं। आज इतने दशक बाद भी ये गाना कहीं लोगों के दिलों में गूंजता है, उस तरह के बेफिक्र रोमांस को फिर से जीवंत कर देता है जो सिर्फ दो दिलों के बीच कहीं पनपते हैं। और फिर कि तमाम सारा जादू जिसकी सुरीली आवाज से आपके कान कहीं मिस्री की तरह उसमें को घुलने लगते हैं, तुरंत ही धोती कुर्ता पहने उनके लंबे कद को लाकर हमारे सामने खड़ा करती हैं। एक ऐसी शख्सियत जो उन गिने चुने कलाकारों में से थी जिन्होंने गायक, संगीत निर्देशक, संगीतकार और फिल्म निर्माता के रूप में बंगाली और हिंदी फिल्मों दोनों की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में हेमंत मुखोपाध्याय के नाम से जाने जाने वाले रवींद्र संगीत के भी महारथी और भावपूर्ण संगीत की एक समृद्ध विरासत को अपने साथ लेकर चलने वाले, छोड़ने वाले कोई और नहीं बल्कि भारतीय सिने जगत में जिन्हें हम हेमंत कुमार और प्यार से हेमंत दा के नाम से जानते हैं। तो आज का रजनीगंधा है नाम उन्हीं के, क्योंकि आज है उनकी बर्थ एनिवर्सरी। और जब हेमंत कुमार साहब की बात आती है, हेमंत दा की बात आती है, तो इतने बेहतरीन नगमे उन्होंने दिए हैं, कई बार कुछ सुने भी हैं, कई बार कुछ अनसुने भी हैं, लेकिन जब जब उन्हें सुना तो हाँ, हमेशा ये चीज़ जहन में आई कि वाकई अगर कोई ये कहता है कि बात तो है तो हाँ, यकीनन बात तो कुछ है। रात के 10:15 का वक्त, रजनीगंधा के सफ़र में आपके साथ मैं आपकी दोस्त, आपकी रुचा, आप हैं मेरे साथ, मुझे यकीन है। वो जो बेकरारी दिलों में पलती है ना उनके संगीत से, उनकी गायकी से, वो मुझे पता है इस वक्त आपके दिलों में भी कहीं पलने लगी है। तो चलिए उन्हीं की फिल्म से ये बेहतरीन सा नगमा आपके रेडियो सेट्स तक।

उनकी फिल्मों के गाने हो, उनकी आवाज़ हो, वो गा रहे हो और कंपोजिशंस उनकी हो, फिर आपके दिल में बेकरारी ना बढ़े, ये कैसे हो सकती है। हाँ, ये है जादू उनका, जिन्हें आज आपके साथ लेकर इस रजनीगंधा के सफ़र में हम हैं। और ये कोई और नहीं बल्कि भारतीय सिने जगत में हेमंत कुमार के नाम से जाने जाने वाले और हमारे आपके द्वारा प्यार से हेमंता कहे जाने वाले, हाँ, हेमंत मुखोपाध्याय जी। संगीत और कला के क्षेत्र में बहुत कम ऐसी प्रतिभाएं होती हैं कई बार जिन्हें बिना संघर्ष किए मुकाम मिला हो, खासकर जब हम बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की। कई सारी जद्दोजहद के बाद कोई मुकाम, कोई एक शख्सियत हासिल कर पाती है। तो अगर हेमंता की बात करें तो उनके साथ भी ऐसा ही रहा, शायद कुछ ज़्यादा ही संघर्ष करना पड़ा, आप ये भी कह सकते हैं। क्योंकि रेशमी आवाज़ का जो जादू था वो तो ऐसा था कि जब उसके स्वर कानों में पड़ जाएं तो समझ लीजिए कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपके कानों में कहीं ठहर जाएंगे। आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे पूरी तरीके से। मगर उसके बाद भी कहीं ये विचित्र सी बात थी कि उन दिनों वो जहाँ भी स्वर परीक्षा के लिए जाते थे, हर जगह उन्हें ठुकरा ही दिया जाता था। कभी आवाज़ का जो कि जो गहराई है, जो भारीपन है, उसको लेकर, या फिर कभी उनके स्टाइल को लेकर, तमाम सारी ऐसी चीज़ें हमेशा उनको झेलनी पड़ी। कोई संगीत निर्देशक उन्हें अपने साथ जोड़ने को तैयार नहीं हुआ करता था उस दौर में। हालांकि तब किसी को कहाँ पता था कि आने वाले वक्त में जिन्हें वो ठुकरा रहे हैं, भारतीय सिने जगत की इतनी वर्सेटाइल एक शख्सियत के तौर पर शुमार होंगे जिनके गाने सदियों तक गाए और सुने जाएंगे। अगर पहले पता हो तो हम चीज़ों को अपने फेवर में ना कर लें। खैर, जहाँ कहीं जाते थे उन्हें उस वक्त रिजेक्शन ही मिलता था। लेकिन मिजाज से साहित्यिक भी थे, रवीन्द्रनाथ ठाकुर के गीतों के दीवाने भी थे और उनके गीतों को कहीं अपने उन्होंने कंठ में बसा भी लिया था। और अच्छी बात ये भी थी कि जो उनके संगीत साथी थे वो भी साहित्यिक रुचि के ही लोग थे। तो जब उन्हें संगीत की स्वर परीक्षाओं में कहीं चयनित नहीं किया गया तो वो कहानियाँ लिखने लगे थे। और चूंकि ये प्रतिभा थी अंदर, तो उस समय की कई प्रतिष्ठित बांग्ला पत्रिकाओं में फिर उनकी जो कहानियाँ थीं वो छपने भी लगीं, प्रकाशित हुई, लोगों ने पसंद भी की। लेकिन संगीत का जो जुनून था ना, वो कहीं अंदर अभी भी था। अपनी आवाज़ पर उनको भरोसा ऐसा था कि हिम्मत नहीं हारी। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब ये दौर चला ना तो फिर रुका नहीं। एक बार चुन लिए गए, गीत गाया तो फिर उनका जादू चला और ऐसा चला कि सिर चढ़कर बोला। संगीत के क्षेत्र में हेमंत कुमार से चर्चित हुए और फिर आपके हमारे सबके बीच आज यूं उनके गानों के तौर पर हमेशा है। कहते हैं ना, जब आप सोच लेते हैं तो राहें और मंजिल आपको मिलती हैं। ठीक वैसा ही उन्होंने सोचा और फिर राह बनी खुद मंजिल, ऐसा कुछ गाना भी निकल कर आया।

वैसे सच है ये बात, अगर आप ठान लेते हैं ना तो राहें आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देती हैं. और वैसा उनके साथ भी हुआ, भले ही बड़े सारे संघर्ष उनको झेलने पड़े, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि भारतीय सिने जगत को हेमंत दास सरीखा एक बहुआयामी व्यक्तित्व भी मिला. आज ही के दिन यानी कि 16 जून 1920 को वाराणसी में उनका जन्म हुआ. और कहते हैं कि परिवार पश्चिम बंगाल के बहारू गांव से आकर 20वीं सदी के शुरुआती दिनों में ही कोलकाता आकर बस गया था. कोलकाता में ही पले बढ़े और शिक्षा भी जो प्रारंभिक थी वहीं पर उन्होंने ली. और फिर वहीं पर उनकी मुलाकात उनके गहरे दोस्त और प्रतिष्ठित कवि, जो कि बाद में एक प्रतिष्ठित कवि के तौर पर शुमार हुए, सुभाष मुखोपाध्याय जी, उनसे भी हुई. इंटरमीडिएट पास करने के बाद हेमंत कुमार ने जादवपुर विश्वविद्यालय में अभियांत्रिकी की पढ़ाई के लिए प्रवेश भी लिया, लेकिन संगीत का जो क्षेत्र था उसमें करियर बनाने की ललक इतनी ज़्यादा थी, इच्छा इतनी ज़्यादा थी कि कहते हैं कि पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी. कुछ दिनों तक साहित्य में भी हाथ आजमाया. जब उनकी कुछ कविताएं, जब उनकी कुछ लिखी हुई जो रचनाएं थी प्रकाशित भी हुई, लघु कथाएं बांग्ला पत्र पत्रिकाओं में भी छपी. और फिर फाइनली कहते हैं कि 30 के दशक में उन्होंने खुद को पूरी तरीके से संगीत के प्रति समर्पित कर दिया, क्योंकि मन वही था, दिल वही था. और ये कुछ वैसा ही था जैसे किसी दिलरुबा को, किसी प्रेमिका को उसका दिलबर या फिर उसका हमदम मिल जाए.

तो एक वक्त के बाद ये बात कहीं उन लोगों के दिल दिमाग में भी ज़रूर आई होगी जिन्होंने किसी वक्त में हेमंत दा को रिजेक्ट कर दिया था ये कहकर कि उनकी आवाज़ या फिर उनकी गायकी वैसी नहीं है जैसा वो चाहते हैं। लेकिन जब वक्त के साथ हेमंत दा इंडस्ट्री में शामिल हुए तो हाँ, ये ज़रूर कहीं दिल से आवाज़ आई होगी कि लगता है कि मुझे मेरा हमदम मिल गया। अच्छा, उनका अगर हम बात करें तो रिकॉर्डेड संगीत से पहला परिचय सन 1933 में कलकत्ता स्थित ऑल इंडिया रेडियो से हुआ। अच्छा, पता है जब भी कभी ऑल इंडिया रेडियो का जिक्र किसी बात में आता है तो ख़ुद पर बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, लगता है कि छोटा सा सही लेकिन इसका हिस्सा है। और ये तमाम सारे बड़े बड़े नाम जब यहाँ से जुड़ कर जाते हैं तो जो है और गर्व महसूस होता है ख़ुद पर कि हम भी इस एक बड़ी सी जो संस्था है उसका छोटा सा हिस्सा है, पर है ज़रूर। तो ऑल इंडिया रेडियो से आपका ताल्लुक रहा, कहते हैं कि जब 13 साल के थे तभी उन्होंने शैलेश दास गुप्ता से प्रशिक्षण प्राप्त किया और साथ ही अनादि घोष दस्तीदार से भी रवीन संगीत को भी सीखा। इसके अलावा उस्ताद फयाज खान से भी उन्होंने शास्त्रीय संगीत का भी प्रशिक्षण था, उसको भी लिया, विधिवत शिक्षा उसकी ली। और कहते हैं कि व्यावसायिक संगीत में कदम रखने से पहले हेमंत दा केवल बंगाली गैर फिल्मी गाने ही रिकॉर्ड किया करते थे जिनमें जनेते जदी गो तुमी और बांग्ला गो बालो मोरे ये गाने बड़े लोकप्रिय हुए, बहुत पसंद किए गए। तो बांग्ला फिल्मों में एक तरीके से कहीं लोगों के जहन में उनका नाम आने लगा था और फिर कुमार कि यानी कि हेमंत कुमार साहब के करियर को तब एक नई दिशा मिल गई बांग्ला फिल्मों की अगर स्पेशली बात करूं तब, जब उन्हें उत्तम कुमार साहब की आवाज़ के तौर पर 1941 में आई बंगाली फिल्म निमाई संन्यास में पार्श्व गायन करने का मौका मिला। तो समझिए ये पहला वो मौका था जहां से उन्होंने एज अ म्यूज़िक एज अ सिंगर खुद को अपीयर किया। हालाँकि ये अभी बांग्ला फिल्मों की बात थी जहाँ पर उनको ये मौका मिला। अपनी गायकी से उन्होंने ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि बरसों बाद भी बंगाली सिनेमा में उस मुकाम को कोई हासिल नहीं कर सका। हालांकि उनके जो हालात थे वो अब बेहतर दिखने लगे थे सिंगिंग को लेकर के, लोगों के कानों में कहीं एक नाम अब गूंजने लगा था, जहन में एक नाम आने लगा था जो कि था उस वक्त हेमंत मुखोपाध्याय के रूप के तौर पर, वहाँ पहचान बना चुके थे। लेकिन मुंबई में पहला बड़ा मौका मिलना अभी बाकी था और फिर एक ऐसा मौका मिलना जो इस गायक और संगीतकार को व्यापक दर्शकों के बीच परिचित कराता। कैसे आया वो मौका, कैसे मुंबई में आकर हिंदी सिनेमा जगत में भी अपनी उन्होंने जगह बनाई, पहचान बनाई, सब आप तक पहुंचेगा। लेकिन बस आपको यहाँ रहना होगा हमारे साथ।

तो उत्तम कुमार साहब की आवाज के तौर पर 1941 में निमाई संन्यास बंगाली फिल्म से शुरुआत कर चुके थे वो एज सिंगर. लेकिन फिर साल आया 1944 क्योंकि अभी हिंदी सिनेमा की तरफ भी तो रुख करना बाकी था. और फिर उस रुख के तहत आया साल 1944 जब हिंदी फिल्म उद्योग में पार्श्व गायक के रूप में उनको जो पहला मौका था वो मिला, उनका पदार्पण हुआ. हिंदी सिनेमा के इतिहास में 1944 में रिलीज हुई फिल्म इरादा को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाता है जब एक गायक के तौर पर उनकी शुरुआत हुई तब. कहते हैं ये वही फिल्म है जिसने दिग्गज गायक हेमंत कुमार को हिंदी फिल्मों में पार्श्व गायक के रूप में पहला ब्रेक दिया था. और इस फिल्म का संगीत प्रसिद्ध संगीतकार पंडित अमरनाथ ने तैयार किया था और गीत लिखे थे अजीज कश्मीरी जी ने, उनके द्वारा लिखे गए थे. हेमंत कुमार ने इस फिल्म में पहली बार हिंदी में गीत गाए और उनके गाए गीत जैसे फिर मोहब्बत के पयाम आने लगे और आराम से जो रातें कटी काफ़ी लोकप्रिय हुई थी. लेकिन अभी वो एक मकाम जो बिल्कुल ये इस्टेब्लिश कर दे कि हाँ वो एक बेहतरीन सिंगर हैं, बेहतरीन गायक हैं और उनको कहते नहीं परिचय के मोहताज वाली बात हो वो ना हो, वो अभी कहीं आना बाकी था. लेकिन जल्द ही वो दौर आया. कैसे और कब आया? बस इस गीत के बाद.

1944 में हिंदी फिल्म इरादा के लिए उन्होंने आवाज दी थी, जिसका संगीत दिया था पंडित अमरनाथ जी ने। कहते हैं कि इस फिल्म के बाद कई सारी और फिल्मों में उन्होंने अपना जो है गायन का कौशल दिखाया, लेकिन अभी भी कहीं वो एक बात नहीं बन रही थी जिसका उनको भी बेसब्री से इंतजार था कि हाँ अब एक एस्टेब्लिशमेंट आ जाए। और फिर चलते चलते देखते देखते आ गया साल 1952। अच्छा, ये साल दो मायनों में खास रहा था, क्योंकि एक बार यहाँ तो पहली बार एक गायक के तौर पर उनको पहचान मिलने वाली थी इसी साल से, जो कि था साल 1952, और अगली पहचान क्या थी आगे इसका हम जिक्र करेंगे आपसे। लेकिन साल 1952 कहते हैं उस वक्त गुरुदत्त द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म जो कि क्राइम नॉयर फिल्म थी रिलीज़ हुई पर्दे पर, और जिसमें SD बर्मन साहब का संगीत था और गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी साहब ने। कहते हैं इस फिल्म में गोवा के लोक संगीत को भी शामिल किया गया और काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। विशेष रूप से हेमंत दागारा द्वारा गाया गया वो गाना जिसका जिक्र अभी हम आगे करेंगे, जिसको उन्होंने साथ में गाया था लता जी के, और काफ़ी हिट हुआ, दो वर्जन्स उसके आए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और भारत में आन और बैजू बावरा के बाद साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी। हालाँकि इस फिल्म के लिए पार्श्व गायक के तौर पर उनको चुनने पर बर्मन दा को शुरू में प्रोडक्शन टीम से विरोध का सामना भी करना पड़ा था, जैसा कि उनके साथ हमेशा होता आया था। लेकिन एक गहरा और बहुत कहते हैं इंटेंस आवाज़ जिसको कह सकते हैं वेलवेट टीम अखली, उसमें कहीं बाद में उन्होंने सबको कन्विंस कर लिया और फाइनली हेमंत दा को चुना गया उस गीत के लिए। वो गीत जिसने न केवल हेमंत दा को भारतीय सिने जगत में पहचान दिलवाई एक पार्श्व गायक के तौर पर, उनकी आवाज़ को सुनने के बाद न केवल स्तब्ध थे लोग, बल्कि उस गीत ने रातों रात हेमंत दा को पार्श्व गायक के तौर पर स्थापित भी कर दिया। और तो और फिल्म के जो नायक थे ना, उनके गाए गीतों ने आगे चलकर न केवल एक अच्छा कोलेब्रेशन आपस में स्थापित किया, बल्कि इस फिल्म के नायक को रोमांस किंग का खिताब भी दिलवाया। जानना चाहते हैं ना कि कौन सा गीत था वो और कौन थे वो नायक, हम बताएंगे भी आपको। लेकिन फिलहाल एक बड़ा प्यारा सा गाना दे रहे हैं और उसके बाद जब लौटेंगे तो जिक्र होगा 1952 में आई उस फिल्म का जिसने रातों रात हेमंत दा को पार्श्व गायक के तौर पर इस्टेब्लिश किया और नायक को आगे आने वाले गानों के जरिए रोमांस किंग का खिताब भी दिलवाया।

तो साल 1952 में जब गुरुदत्त साहब की फिल्म रिलीज हुई जिसने उन्हें रातों रात पार्श्व गायक का तमगा दिलाया, यकीन मानिए उसके बाद हर निर्माता निर्देशक उन्हें बस अपनी फिल्मों का हिस्सा बनाने के लिए याद करने लगा। वो लोग जो एक वक्त में कहीं उन्हें रिजेक्ट करते थे, अब उन्हें हेमंत दा की आवाज़ या फिर वो अपनी फिल्मों का हिस्सा एक के तौर पर चाहिए ही चाहिए थे। बात हम आपसे कर रहे थे कि वो कौन सी फिल्म थी जिसने रातों रात उन्हें हिट कर दिया। जी हाँ, गुरुदत्त साहब की फिल्म जिसको उन्होंने बनाया, जो कि हिंदी भाषा की क्राइम थ्रिलर मूवी के तौर पर देखी जाती है, जिसमें देवानंद साहब और गीता बाली आपको नजर आते हैं। इस फिल्म का एक गाना जिसे हेमंत दा ने अपनी आवाज़ दी, और वो गाना कोई और नहीं बल्कि ये रात ये चांदनी फिर कहाँ। जब कभी आप इस गाने को सुनते हैं कितना इंटेंस सा फील होता है ना इस गाने को सुनकर, तो ये उनकी काबिलियत थी, ये उनकी खूबी थी। जब उन्होंने इस गीत को गाया तो क्रू मेंबर्स जो और भी थे एसडी बर्मन बड़े बर्मन दा के साथ, जिन्होंने पहले मना किया था, सुनने के बाद जब ट्रायल हो रहा था उनको लगा कि अब तो ये गाना हेमंत दा ही गाएंगे, और जब उन्होंने इस गीत को गाया तो कहते हैं कि उनकी आवाज़ का जादू इस कदर चला, उसकी गहराई और भावनाओं ने कहते हैं हर दिल को छू लिया, इस कदर छुआ कि उसके बाद फिर हेमंत दा हर जगह उनके नाम के चर्चे भी होने लगे। और तो और फिल्म में जो नायक थे यानी कि देवानंद साहब, उनके साथ उनके गाए गीतों का कोलैबोरेशन भी आगे गया, और इस तरीके के गाने उन्होंने दिए कि वाकई उन्होंने देव साहब को बनाया रोमांस किंग के तौर पर, इस्टेब्लिश किया, उसका खिताब उन्हें दिलवाया। अब जब इस गीत का जिक्र हुआ है तो गाना अब तक ही ना पहुंचे, ये कैसे हो सकता है। तो चलिए इस बेहतरीन से नगमे को वापस आपके साथ सुनते, वापस इसलिए क्योंकि पहले भी कई बार सुना है लेकिन

जब सुना तब एक अलग अंदाज में सुना था, और आज जब सुनेंगे हम और आप तो किसी और अंदाज में किसी को याद करते हुए उस गीत के साथ भावपूर्ण जो चीज़ें हैं उससे जुड़ते हुए। रात के 10:48 का वक्त, रजनीगंधा इस वक्त आपकी अपने 100.7 FM रेनबो पर। मैं आपकी दोस्त, आपकी रिचा।

इतने खूबसूरत सुरीले गीत आप तक कोई देगा तो आप उन गीतों को कैसे नहीं गुनगुनाएंगे। आप कहीं ना कहीं उन्हें गुनगुनाने के लिए साथ साथ गाने के लिए मजबूर हो ही जाते हैं। और ये करिश्मा, ये कमाल उन शख्सियतों का होता है जिन्हें अक्सर रजनीगंधा के इस पड़ाव पर, इस दौर पर हम लेकर आप तक पहुँचाते हैं, हम सब लेकर आप तक पहुँचाते हैं, आपसे मिलवाते हैं। रात के 10:53 का वक्त हो चुका है। हेमंत दा को सही मायनों में अगर पहचान मिली तो वो देव आनंद साहब की फिल्में ही थी। तो सेम इन द

इस विद अगर आप देखें तो देव साहब के साथ भी रहा, हेमंदा की आवाज़ थी जिसको उन्होंने पर्दे पर अभिनीत किया, तो कहते हैं कि रोमांसगन का खिताब भी उनको मिल गया, तो दोनों ने कहीं एक दूसरे को पूरा भी किया। हेमंदा की भावपूर्ण आवाज़ और देव आनंद साहब की रोमांटिक और स्टाइलिश ऑन स्क्रीन छवि के साथ पूरी तरह मेल खाती थी। उनकी गायकी में जो गहराई और भावुकता थी वो कहीं देव आनंद साहब के किरदारों की कहानी और प्रभाव को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाती थी। हेमंदा और देवानंद की जोड़ी ने 1950 से 60 के दशक में हिंदी सिनेमा के म्यूजिकल लैंडस्केप को कहीं बहुत अधिक समृद्ध किया, पहले भी था और उसका विस्तार किया। साल 1952 की फिल्म जाल का ये गीत जो भी आप सुन रहे थे, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, यकीन मानिए कहते हैं इस गाने ने हेमंदा का जो जादू चला वो इस कदर सिर चढ़कर बोला कि बस फिर हेमंदा हेमंदा। और देवानंद साहब के घर गीतों की बात करें तो फिर ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, या फिर याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, या फिर तेरी दुनिया में जीने से, या

कहाँ। यकीन मानिए, कहते हैं इस गाने ने हेमंदा का जो जादू चला वो इस कदर सिर चढ़कर बोला कि बस फिर हेमंदा हेमंदा। और देवानंद साहब के अगर गीतों की बात करें तो फिर ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, या फिर याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, या फिर तेरी दुनिया में जीने से, या फिर 16 साल फिल्म का वो गीत जो आज भी लोगों की जुबान पर है, कहते हैं उस दौर का सुपरहिट हिट जो है गीत बना माना गया। और सिर्फ अगर हम ये कहें कि उस दौर का, तो ये कहीं कतई गलत होगा, क्योंकि ये केवल उस दौर में हिट नहीं था, आज भी जब आप कभी उस गीत को सुनते हैं तो क्या ऐसा होता है कि उस गीत के साथ आप गुनगुनाए ना, या फिर झूमे ना, या फिर उस गीत का जो आनंद है, उस गीत में जो एक रोमांस है, वो जो एक छेड़छाड़ मस्ती भरी सी बात नज़र आ रही है, उसको आप चेरिश ना करें। ये नहीं हो सकता, ये नहीं होता। और यही जादू है, यही कमाल रहा हेमंदा का। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ और गायकों को अपनी आवाज़ें नहीं दी, हाँ बड़े सारे और ऐसे थे, बड़े सारे ऐसे और अभिनेता थे जिनकी आवाज़ वो बने गायक के तौर पर। फिर चाहे आप प्रदीप कुमार साहब की बात कीजिए, धर्मेंद्र की बात कीजिए, या फिर विश्वजीत साहब की बात कीजिए, ऐसे बड़े सारे नायक उस दौर के रहे जिनकी वो आवाज़ बने, और जब जब उन्होंने गाया तो एक अलग तरीके का चित्र उभर कर कैनवस पर आया फिल्मी दुनिया के पार्श्व गायन के जो एक सफ़र होता है उसमें। 10:55 का वक्त, फिल्म 16 साल के इस गीत का जिक्र हुआ है जो अपने दौर में भी हिट था, आज भी हिट है, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आगे आने वाले कई सदियों तक, कई दौर तक वैसे ही हिट रहेगा। पहुँचा रहे हैं हम आपको, और फर्स्ट हाफ को वाइंड अप करेंगे यहाँ पर, लेकिन हेमंदा की जो बर्थ एनिवर्सरी का सफ़र है ये अगले घंटे भी आपके साथ जारी रहेगा, और मुझे यकीन है कि सफ़र में आप रहेंगे मेरे साथ, आप देंगे मेरा साथ। तो चलिए वो गीत जो फिल्म 16 सावन से आप तक है, जिसको उन्होंने आवाज़ दी, हाँ म्यूज़िक एस डी बर्मन साहब का है, लेकिन यहाँ पार्श्व गायक के तौर पर अभी हम आपका, आपसे उनका जिक्र कर रहे थे। आगे जब मिलेंगे ना तो कैसे फिल्मों की तरफ रुख किया और कैसे म्यूजिक कंपोजर बने, तमाम सारी बातें होंगी।

नमस्कार, रात के 11 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री एवं लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने करते हुए कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण की एक नई कार्य संस्कृति को देखा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया है, जिसके परिणाम स्वरूप करोड़ों नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। श्री खन्ना ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत 4.28 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना प्रदेश के स्थानीय विकास को गति देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय आवश्यकताओं और जनहित को प्राथमिकता देते हुए ऐसे विकास कार्य कराए जा रहे हैं जिनका सीधा लाभ आम जन को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा के आधार पर कराए जा रहे विकास कार्य सड़क, पुल एवं पुलियों के निर्माण से आवागमन सुविधाजनक हो रहा है। वहीं पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य नागरिक सुविधाओं से लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। औद्योगिक नगरी कानपुर नगर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने मीडिया संवाद के दौरान कहा कि भारत सहित दुनिया भर के देश युद्ध से प्रभावित हुए हैं। युद्ध से असुरक्षा का वातावरण बना है, अर्थव्यवस्थाओं को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर दुनिया भर के देश इससे प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दिन से ही कहा था कि भारत शांति के पक्ष में है, भारत बुद्ध में विश्वास रखता है, युद्ध में नहीं। अनुराग ठाकुर ने शिप पर हुए हमले पर कहा कि भारत ने कड़ा संज्ञान लेते हुए अमेरिकी दूतावास से कड़े शब्दों में हमले की निंदा की और कहा कि इस तरह के हमले स्वीकार्य नहीं हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनपद चंदौली में सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान की थीम पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग के निर्देश पर आज जिले के सभी विकासखंड में जन कल्याण एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राज्यसभा सांसद दृशाना सिंह, विधायक चकिया कैलाश आचार्य के साथ ब्लॉक प्रमुखों ने अन्नप्राशन व गोद भराई की रस्म पूरी की। शिविर में बड़ी संख्या में आम लोगों से प्रतिभाग किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की

0: गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
1: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: तो रात के 11:04 का वक्त, एक बार फिर से आप सबके साथ वापस हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त, आपके रचा, आपके अपने कार्यक्रम रजनीगंधा में। और आज का रजनीगंधा तो ख़ास है, क्योंकि आज हम इस सफ़र में जी रहे हैं हेमंत कुमार साहब के लिखे, गाए और निर्देशित किए गए गानों और फिल्मों के जिक्र के तौर पर। तो बस आप मेरे साथ हैं, ये मुझे पता है, कुछ देर और यूँ ही ठहर जाइए बस।

वैसे मैं आपको सच बताएं, दिल तो हमारा यही चाहता है कि अभी आपकी आंखों में नींद ना आए, क्योंकि अभी ये सफ़र जारी है, वो सफ़र जिससे आज हम और आप दोनों रेनबो के ज़रिए जी रहे हैं, जब हम बात करते हैं हेमंत कुमार साहब की, क्योंकि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है और उनके लिखे गए, माफ़ कीजिएगा, उनके कंपोज

किए गए या फिर उनके गाए गए जो गीत हैं ना, वो सीधा वाकई दिल में उतर जाते हैं जब भी कभी आप उन्हें सुनें, तो ये नहीं हो सकता कि आप उनके साथ गुनगुनाएं ना। कुछ ऐसा ही करिश्मा रहा है उनका, उनके संगीत का। या कई बार आप ये भी देखने को मिला, जब उनके संगीत की बात आई तो कभी कभी कुछ ऐसी फिल्में होती थी जिसकी कहानी में भले ही दम ना हो लेकिन उनके संगीत में ऐसा करिश्मा होता था जिसकी बदौलत वो फिल्में हिट हो जाया करती थी। आगे भी एक हम जिक्र करेंगे आपसे, तब आप समझ पाएंगे कि ये बात मैंने क्यों कही थी। लेकिन अगर देखें तो बहुत छोटी सी उम्र में, यानी कि टीन एज से ही संगीत में रुचि रखने वाले हेमंत दा एक ऐसे सिंगर और कंपोज़र थे जिनकी प्रतिभा की को हम जितना भी कम नापेंगे वो हमेशा कम ही होगी। उनकी प्रतिभा के कायल संगीत प्रेमी तब भी थे जिस दौर में वो थे और आज भी हैं, जब भले ही वो हमारे बीच नहीं हैं। उनकी गायकी में सुरों का कमाल तो था ही, साथ ही पवित्रता भी सीधी ऐसी जो दिल में घर कर जाए। हर आम खास को अपनी आवाज़ से दीवाना बना देने वाले हेमंत दा हिंदी संगीत और सिनेमा का एक ऐसा नाम रहे जिनकी आवाज़ ने कई लोगों की मोहब्बत की गुलिस्ता बना दिए। जब वो अपनी दर्द भरी आवाज़ में, मखमली आवाज़ में, गंभीर आवाज़ में गीतों के जरिए पुकार लगाते थे तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके गाए गीत सीधा आपके दिल तक ना उतरे। जैसे कहीं दूर से कोई पुकार कर आपको आवाज़ दे रहा है और ये कह रहा है कि हाँ, मुझे तुम्हारा इंतज़ार है, आओ और बनो इस महफिल का हिस्सा। 11:10 रजनीगंधा आपके अपने 107.7 FM रेडियो पर आज आपकी दोस्त रजा के साथ हेमंत कुमार बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर।

हेमंदा की मखमली आवाज़ फिजाओं में गूंजती है ना, तो हर दिल कहीं एक पल के लिए ठहर जाता है, क्योंकि वो सुनना चाहता है, उसका हिस्सा बनना चाहता है। हेमंदा ने 50 और 60 के दशक में हिंदी फिल्मों में एक ऐसा संगीत दिया जिसके कायल संगीत प्रेमी आज भी हैं, और उनकी आवाज़ और संगीत इतना ज़बरदस्त था कि इंसान खुद को उससे कहीं जोड़ ही लेता था। और शायद यही वजह भी थी कि मशहूर संगीतकार सरल चौधरी साहब ने एक बार उनके लिए कहा भी था कि अगर भगवान भी ज़मीन पर आकर गाता तो शायद हेमंदा की आवाज़ में ही गाता। वही लता मंगेशकर जी भी उनकी गायकी की इतनी मुरीद थी कि कहा करती थी कि जब हेमंदा गाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई पुजारी कहीं मंदिर में बैठकर अपने गीतों को आवाज़ दे रहा हो।

यकीन मानिए, इस गाने को सुनते सुनते कहीं जैसे इस गीत के साथ आप बंद से जाते हैं, ठहर जाते हैं। इस गाने में है वो खासियत। आवाज़ की बात करें या फिर कंपोजिशन की बात करें, दोनों ही कहीं आपको एक दूसरे से जोड़ देती हैं, आपको ठहरने के लिए मजबूर भी कर देती हैं। तो एक अध्याय जो उनके पार्श्व गायक के तौर पर था उसको वो जी रहे थे, जो कि शुरू हुआ था साल 1952 में। और अभी तक जितने भी गाने आपने सुने उसमें लगभग सारे गीत वो हैं जिनमें उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। लेकिन इसी साल यानी कि साल 1952 में एक सफ़र उनके संगीत की दुनिया का और भी शुरू हुआ था। जहाँ साल 1952 में पार्श्व गायक के तौर पर उनको पहला मौका मिला, इसी साल मैंने आपसे कहा था ना साल 1952 को याद रखिएगा, क्योंकि ये साल ख़ास है, क्योंकि दो उपलब्धियां उनको इसी साल हासिल हुई थी जो वो चाहते थे। और जो दूसरी उपलब्धि थी साल 1952 में, तब उनके साथ आई जब हिंदी भाषा की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म लेकर पर्दे पर आए निर्देशक हेमंत गुप्ता। जी हाँ, फिल्म जिसको कि बंकिम चंद चटर्जी द्वारा 1882 में लिखे गए प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास पर आधारित किया गया था, जिसमें पृथ्वीराज कपूर,

भरत भूषण, प्रदीप कुमार, गीता बाली और अजीत मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म के साथ जहां हेमंत दा को पहली बार संगीत को कंपोज करने का मौका मिला, तो मैं आपको बता दूं कि प्रदीप कुमार साहब के लिए भी हिंदी सिनेमा में एज अ हीरो ये पहला मौका था जब उन्होंने अपना अपीयरेंस दिया, जब डेब्यू किया इस फिल्म के जरिए। फिल्म के संगीत निर्देशक हेमंत कुमार साहब थे और फिल्म के साथ हेमंत कुमार ने एस मुखर्जी के फिल्मिस्तान स्टूडियो से एक संगीतकार के तौर पर खुद को स्थापित कर लिया था। और फिर यहाँ से, जिस फिल्म के बारे में अभी मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से उनका संगीत निर्देशक का सफर शुरू हुआ। कहते हैं फिल्म का गीत वंदे मातरम, शायद आप समझ चुके होंगे मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ, पर ठहर जाइए, अभी हम आप तक पहुँचाएंगे उस चीज़ को, जिसे लता मंगेशकर जी ने गाया था। कहते हैं लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाने में कामयाब रहा और बेहद लोकप्रिय भी हुआ। इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई, तो वहीं 1947 में स्वतंत्रता के समय इसे राष्ट्रीय गीत भी घोषित किया गया। जी हाँ, हेमंत कुमार द्वारा संगीतबद्ध और लता मंगेशकर जी द्वारा गाए गए वंदे मातरम गीत को सर्वकालिक विश्व के शीर्ष 10 गीतों में दूसरा स्थान भी मिला। और ये सिर्फ और सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि उनका ही जादू था, जिनका जिक्र हम अभी आपसे कर रहे हैं, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी यानी कि हेमंत दा की बात अगर करें, जब उन्होंने एज अ म्यूजिक कंपोजर खुद को एस्टैब्लिश किया। और फिल्म कोई और नहीं, वो थी आनंद मठ, जिसका गीत भारतीय सिने जगत में तो कई बार सुना गया, लेकिन जब बात भारतीय, जब देश की आती थी, तो वंदे मातरम गीत को राष्ट्रीय गीत भी घोषित किया गया। 11:20 का वक्त हुआ है अभी इस वक्त। आगे का किस्सा, कैसे एक म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर पुख्ता पहचान उन्होंने पाई, और वो दौर जिसका मैंने जिक्र किया था कि उनके गीत भारी पड़ जाते थे फिल्मों के ऊपर, कैसा और क्या कहानियां हैं इन सब के पीछे, जानना है तो बस आपको यहीं बने रहना पड़ेगा 107.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की, जहां इस वक्त आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त, आपकी रजा।

साल 1952 में आई फिल्म आनंद मठ के जरिए संगीत निर्देशन का मौका उनको मिल चुका था। संगीत निर्देशित कर चुके थे हेमंदा और कहते हैं इस फिल्म के संगीत की ख्याति हवा में खुशबू की तरह फैल चुकी थी। आलम ये रहा कि न केवल तमाम निर्माता निर्देशक उनसे अपनी फिल्मों के गीतों को संगीतबद्ध करवाना चाहते थे। अब देखिए इसे ही विडंबना कहते हैं, कभी किसी दौर पर कोई व्यक्ति या फिर कोई चीज़ जब आपको बहुत छोटी सी लगती है, हो सकता है तब आपको उसकी वैल्यू ना हो, उसकी कद्र ना हो, लेकिन भगवान या फिर नियति ऊपर वाला क्या सोच के रखता है ये आप भी नहीं जानते। इसीलिए कहते हैं कि पता नहीं कब कौन कहाँ आपके काम आए या फिर काम की चीज़ हो, ये आप भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो वो लोग जो पहले उन्हें रिजेक्ट कर रहे थे, फिर एक ऐसा वक्त आया कि कतार लगने लगी, हर निर्माता निर्देशक हेमंत कुमार को अपनी फिल्मों में लेना चाहता था, या तो एक पार्श्व गायक के तौर पर या फिर एक म्यूज़िक कंपोज़र के तौर पर। कई बार तो आलम ये भी रहा कि उनका संगीत इतना ज़्यादा लोकप्रिय होता था कि कहानी पर भारी पड़कर भी पड़ता था, उसको सफल करवाने के लिए भी जरिया बनता था। इससे जुड़ा भी एक बड़ा ही बेहतरीन किस्सा है जो कि साल 1954 से निकल करके आया था। क्या है वो किस्सा, अभी जब लौटेंगे इस गीत के बाद तब उसका जिक्र भी करेंगे। रात के 11:26 का वक्त हुआ है, बस आप कुछ देर और यहीं रहें हमारे साथ और फिर ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा।

अनुपमा फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे हैं, वो गीत जिसको कंपोज किया हेमंत दा ने, है ना, सीधा दिल में उतरने वाला, रूह की गहराइयों का तक छूने वाला गीत। तो ऐसे कई सारे गीत उन्होंने दिए हिंदी सिने जगत को, जिन्हें जब आप सुनते हैं तो वो आप न केवल उनसे जुड़ते हैं बल्कि गहरे कहीं जुड़ते चले जाते हैं। तो आनंद मठ के साथ फिल्मी दुनिया में अब एज अ म्यूज़िक कंपोज़र उनको मौका मिल चुका था, और ऐसा मौका मिला कि जहाँ से कहते हैं पीछे मुड़कर उन्होंने फिर नहीं देखा। और इसमें चार चांद तब लगी जब आया साल 1954, क्योंकि ये वो मौका था जिसने पूरी तरीके से इस्टेब्लिश कर दिया हेमंत दा को। वो गायक के तौर पर तो इस्टेब्लिश हो ही चुके थे पहले, और अब एक म्यूज़िक कंपोज़र के तौर पर उनकी एक विशेष पहचान भारतीय सिने जगत में बन चुकी थी। कहते हैं 1954 में हिंदी फिल्म का संगीत उन्होंने तैयार किया, वो फिल्म जिसे फिल्मिस्तान कंपनी ने निर्मित किया था और जिसका नेतृत्व कर रहे थे शशधर मुखर्जी। फिल्म में वैजयंती माला और प्रदीप कुमार ने मुख्य भूमिकाएं भी निभाई, और जिस फिल्म का जिक्र हम आपसे इस वक्त अभी कर रहे हैं वो फिल्म आंशिक रूप से टेक्नीकलर से निर्मित भी की गई थी। फिल्म का साउंड ट्रैक हेमंत कुमार द्वारा तैयार किया गया था, और कुल 13 गाने इस फिल्म में थे, जिसमें से एक गीत तो ज़बरदस्त हुआ, सुपरहिट हुआ, लोगों ने उसको बेहद सुना, बेहद सराहा। और कहीं ना कहीं वही गीत जब ये फिल्म नहीं चल रही थी उसको चलाने में कारगर हुआ। किस्सा उस वक्त का है, कहते हैं जब ये फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों की कसौटी पर खरी नहीं उतरी, पसंद नहीं आ रही थी लोगों को फिल्म, लेकिन फिल्म के गाने ज़बरदस्त थे तो हर कोई कहीं ना कहीं उन गीतों को गुनगुना रहा था, स्पेशली उस गीत को जिसका जिक्र जिसे अभी आप सुनेंगे यही मेरे साथ। तो कहते हैं कि जब कुछ ये एक विडंबना हुई कि फिल्म चल नहीं रही है, गाने तो पसंद किए जा रहे हैं, तो डायरेक्टर साहब जो थे उन्होंने उस दौर में, चूंकि रिकॉर्ड्स का दौर हुआ करता था, फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी ने करीब 1000 रिकॉर्ड्स होटल और रेस्टोरेंट्स में फ्री में बंटवा दिए कि भाई सुनो, सराहो, और क्या पता जो उन्होंने सोचा है वो काम कर जाए। और हुआ भी ऐसा। कहते हैं कि वहाँ पहुँचने वाले लोगों को गाना ऐसा पसंद आया, जब कभी लोग जाते थे रेस्टोरेंट्स में जाते थे या फिर कहीं ऐसे होटल्स में जाते थे, ये गाना बजता था, उसको सुनते थे तो लोगों के जहन में वो गाना बसता गया, बैठता गया, बैठता गया। फिर बात चली कि गाना किस फिल्म का है, और जब फिल्म का जिक्र आया तो देखने के लिए सिनेमा घर पहुँच गए लोग। और फिर इस तरीके से वो फिल्म जो चल नहीं रही थी, कहीं हेमंत दा का संगीत उस फिल्म पर भारी पड़कर उस फिल्म को सफल करवाने का जरिया भी बन गया। कहते हैं ना, इसके बाद ना फिल्म केवल सराही गई बल्कि गाने की पॉपुलैरिटी ने हेमंत दा के करियर को भी पूरी तरीके से सवार दिया। ये वो गाना था जब कभी बजता है ना तो वो जो बीन है ना धुन नागिन की, वो भी जहन में आ जाती है, उसके साथ कहीं आप झूमते भी नज़र आ जाते हैं, और जितनी बार भी ये गाना बजता है हाँ तो आपको कहीं ना कहीं झूमने पर मजबूर करता ही करता है। फिल्म थी नागिन, और गीत कौन सा, ये जिसे अभी आप सुनने जा रहे हैं। अच्छा, इस गीत में बीन का भी इस्तेमाल हुआ है, इसको भी ध्यान से सुनिए, इसके पीछे भी जुड़ी हुई बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, जब लौटेंगे ना तब फिर आपको उसके बारे में बताएंगे, उसका जिक्र भी करेंगे। फिलहाल ये गीत जिसने फिल्म नागिन को करवाया हिट।

अच्छा, ईमानदारी से दिल पर हाथ रखिए, मुझे बताइए कि आप में से कितने सारे लोगों ने बचपन में इस गीत को सिर्फ सुना नहीं है, बल्कि इस गीत में बजने वाली धुन के साथ कहीं आप नागिन की तरह लहराए भी हैं। तो ये जादू होता है किसी भी शख्सियत का कि वो आपको कहीं मजबूर करते हैं कि आप उनकी धुन के साथ या फिर उनके गीतों के साथ जुड़ते चले जाएँ। अच्छा, ये धुन अभी आपने सुनी, जाहिर सी बात है आपके दिमाग में भी ये ख्याल होगा कि बीन की आवाज़ है तो बीन से ही इसको प्रोड्यूस किया गया होगा, लेकिन आपको पता है ऐसा नहीं था। एक इंटरव्यू में खुद हिमंदा ने ये कहा था कि एक बार कि ये जो फिल्म थी दो जनजातियों के बीच संघर्ष पर आधारित फिल्म थी जिसका संगीत उनको तैयार करना था, समस्या ये थी कि बीन का इस्तेमाल करना है और वो नहीं चाहते थे कि बीन जो पर्टिकुलर बीन है उसका इस्तेमाल किया जाए। फिर क्या करा जाए, उस वक्त उनके साथ कल्याण जी वीर जी शाह जो कि उनके सहायक थे, दोनों ने मिलकर एक स्ट्रैटेजी प्लान की कि बीन तो बजानी है, वो तो एक टच देना है, लेकिन जो बीन है उससे नहीं बजाना। फाइनली हारमोनियम और क्लेवलाइन एक वाद्य होता है, देखो मैं बोलने में हड़बड़ा रही हूँ या गड़बड़ हो रहा है, लेकिन ये क्लेवियोलाइन एक वाद्य है जिसकी मदद से उन दोनों ने मिलकर बीन जैसी धुन की नकल करी। मतलब कहीं से आपको लग सकता है कि ऐसा हो सकता था, लेकिन ये हुआ, और ऐसा कि हम और आप जान भी नहीं पाए तब तक जब मैंने इस बात को पढ़ा नहीं था आप तक पहुंचाने के लिए कि ये बीन का जो एक लहरा दिया गया ये पर्टिकुलर बीन नहीं है, बल्कि हारमोनियम और दूसरा जो वाद्य यंत्र है क्लेवोलाइन, जी हाँ, उसके माध्यम से निकाला गया एक स्वर था जो हम तक आप तक पहुंचाया गया। और ये कहीं हेमंदा का ही जादू था, हेमंदा का ही कमाल था कि उन्होंने इसको इस फिल्म में दिया। और कहते हैं नागिन का जो संगीत था वो अप्रत्याशित रूप से हिट हुआ, इतना ज़्यादा पसंद किया गया ये गीत तन डोले मेरा मन डोले कि उस समय की जो चार्ट बस्टर लिस्ट थी उसमें भी शुमार रहा, काफ़ी समय तक सुना गया। और 13 गाने इस फिल्म के थे, कई सारे गाने पसंद भी किए गए। अभी हाल ही में कुछ सोशल मीडिया पे आपने कुछ गाने ऐसे भी सुने जिसमें एक गाना बड़ा चर्चित था, मेरा दिल ये पुकारे आजा, ये गीत, या फिर वो जो अक्सर लोगों को कहीं थिरकने पर मजबूर भी करता है उसकी सुरीली सी धुन के साथ, जो जब ये गाना बजता है, जादूगर सैया छोड़ो मोरी भैया। तो चलिए इसी फिल्म से दूसरा ट्रैक आपको दे रहे हैं एक बार फिर से इस गीत में के साथ, झूमिए और याद कीजिए उस एरा को, उस चार्म को, उस एक जो जादू था जिसमें हेमंत दास सरीखे संगीतकार या फिर पार्श्व गायक हमें और आपको सबको मिले।

मुझे पता है कि वक्त बीत रहा है लेकिन मेरी बस आपसे गुजारिश है इल्तिजा है कि कुछ देर आप यहीं मेरे साथ और रहें क्योंकि अभी हेमंदा से जुड़ी कुछ बातें और भी हैं जो आप तक पहुंचानी हैं। मन डोले मेरा तन डोले की सफलता के बाद आलम यह हो गया था कि हेमंदा हिंदी सिनेमा और संगीत के सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाले संगीतकार भी बन गए थे। एक मौका तो ये भी आया, व्यस्तता इतनी ज़्यादा बढ़ी कि बहुत बार उन्हें रोज़ाना हवाई जहाज़ पकड़कर मुंबई और फिर कोलकाता के बीच सफ़र तय करना पड़ता था क्योंकि दोनों ही स्ट्रीम में वो लगातार सक्रिय थे, बंगाली फिल्मों में और हिंदी दोनों में। मशहूर लेखक पंकज राज की अगर किताब की बात करें तो अपनी किताब धुनों की यात्रा में जिक्र करते हैं इस बात का कि एक बार एयर इंडिया ने उन्हें डेली पैसेंजर का खिताब तक दे दिया था। कारण वही कि वो रोज़ जाते थे, रोज़ सफ़र करते थे। वहीं हेमंदा के संगीत का परवान लोगों के दिलो दिमाग में चढ़ता जा रहा था और हेमंदा ने गरगानों का जिक्र करें तो एक बार ज़रा फिर कह दो मुझे शर्मा के तुम दीवाना, जो कि आपने सुना था फर्स्ट हाफ में, या फिर है अपना दिल तो आवारा, या फिर बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, भवरा बड़ा नादान है, या फिर न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, या पिया ऐसो जिया में समाए गए रहो, जैसे कई सारे गानों को ना केवल अपनी आवाज़ दी बल्कि उनको कंपोज भी किया। तो अभी जो गाना हम आपको देने जा रहे हैं ये साहब बीवी और गुलाम से है ये गाना, जिसको कंपोज उन्होंने किया गुरुदत्त साहब की फिल्म, लेकिन कंपोजिशन हाँ अगेन हेमंदा का है।

तो न जाने कितनी बार आप तक इस गीत को पहुंचाया, और जितनी बार भी पहुंचाते हैं तो हमेशा ये लगता है कि वाकई बहुत खूबसूरत कंपोजिशन है। और जब बात हेमंदा की आ रही है तो उनके बनाए हुए तो सारे गीत एक से बढ़कर एक आप तक पहुंच ही रहे हैं। तो पार्श्व गायन का एक मौका उनके पास जब आया तो उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन नगमे गाए भी, और जब एज अ म्यूज़िक कंपोजर अपीयर हुए तो वहाँ भी उन्होंने एक अच्छी छाप, अमिट छाप छोड़ी। अच्छा, फिल्मों की बात करें तो हम किसी अभिनेता के अभिनय के चुनाव की जब सराहना करते हैं तो मन में एक शंका हमेशा ज़रूर रहती है कि ये जो कुछ भी वो पर्दे पर अभिनीत कर रहा है ये सब कुछ उसका अपना है या फिर डायरेक्टर उसको बता रहा है कि तुम इसको ऐसा करो। यही चीज़ एक संगीतकार या फिर गायक के साथ भी होती है कि जब एक निर्देशक उससे कहता है कि भाई ये तुम्हें गीत गाना है, संगीतकार उनसे कहता है गीत गाना है, तो अपना ही सब कुछ होता है या फिर निर्देशक के दिशा निर्देश पर होता है। ये तमाम सारी बातें होती हैं। यही बात फिल्म संगीत पर लागू है, यही बात फिल्मों पर लागू है, किसी विशेष गीत या किसी विशेष वाक्यांश को लेकर ये चीज़ें आती हैं। लेकिन जब बात हेमंदा की आती है ना तो जो दिशा निर्देश उनको मिल रहे हैं वो तो अलग है, बट खुद का भी एक कहीं एक्सपेरिमेंट करना करने की आदत हमेशा उनकी रही। अभी हम आपको एक गीत सुनाने जा रहे हैं, न जाने कितनी बार आपने इस गाने को सुना होगा, गाया भी होगा, लेकिन कभी उस एक शब्द पर, उस एक बात पर गौर नहीं किया जिसे अभी आप करेंगे। गीत वो जो 20 साल बाद जिसको उन्होंने डायरेक्ट किया था उस मूवी से है, और गाना हर बार सुना जाने वाला, सराहा जाने वाला, ज़रा नज़रों से कह दो निशाना चूक ना जाए। इस गाने के पहले अंतरे से पहले संवाद का एक अंश है जो आधा बोला और आधा गाया गया है। कैसे? जब वो कहते हैं कि हैरत में पड़ गया हूँ, हैरत जब वो बोलते हैं तो उस वक्त उस हैरत के बीच का जो एक कहीं पॉज आया है ना, उसको बहुत अगर आप ध्यान से सुने तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक आह ली है, हैरत में पड़ गया हूँ। यकीन मानिए जब आप अब सुनेंगे इस गीत को ना तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये खूबी है, ये काबिलियत है किसी एक ऐसी शख्सियत की।

जिसके अंदर अथाहा इमेंस एक कहीं पॉसिबिलिटीज़ हैं चीज़ों को बेहतर बनाने की, उन्हें बेहतर करने की. तो ये गाना हम आपको दे रहे हैं, इस गाने को सुनिए, क्योंकि यकीनन ये हेमंत दा का ही जादू है. जब वो एक सिंपल वर्ड जहाँ आता है हैरत, उसको भी ऐसी हैरत के साथ कहते हैं कि लगता है कि हाँ वाकई किसी ने आह भरी हो. गाना आप सबकी रेडियो सेट पर, और अब जब सुनिएगा ज़रा कान से और ध्यान लगा कर.

दोस्तों हेमंत कुमार एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी थे। 50 के दशक में उन्होंने बांग्ला और हिंदी फिल्मों में संगीत निर्देशन के साथ साथ गाने भी गाए और फिर इस बीच चलते चलते आया साल 1959 जब उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा और हेमंता बेला प्रोडक्शन के नाम से अपनी फिल्म कंपनी की स्थापना भी की और इस फिल्म के बैनर तले मृणाल सेन के निर्देशन में एक बांग्ला फिल्म नील आकाशे नीचे का निर्माण भी किया। कहते हैं कि इस फिल्म को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल भी मिला और इसके बाद उन्होंने अपने बैनर तले 20 साल बाद कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर, खामोशी जैसी कई हिंदी फिल्मों का निर्माण भी किया जिसके गीत लोगों के दिलों में हमेशा गूंजते रहे। उनकी आवाज की खासियत थी कि उसकी कोमलता और भावुकता जो भक्ति और प्रेम के गीतों में चमकती थी। उन्होंने अपने करियर में कई बेमिसाल

गाने भी गाए, फिर चाहे फिल्म नागिन हो, अनपढ़ हो, बेबाक हो, जहाँ उन्होंने लता मंगेशकर, आशा भोसले, गीता दत्त, सरीखी जो गायिकाएं थीं उनको अपने साथ गाया, डुएट भी गाए, तो वहीं सोलो गीतों ने हिंदी सिनेमा को एक नया आयाम भी दिया। 20 साल बाद कोहरा, साहब बीबी गुलाम, खामोशी, जानवी जैसी फिल्मों के संगीत भी दिया जो क्लासिकल और लोक धुनों का मिश्रण भी थी। तो वहीं उन्होंने अनिल बिस्वास, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सलिल चौधरी और एसडी बर्मन सहित अन्य प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ भी काम किया। 70 के दशक के बाद

उन्होंने अनिल बिस्वास, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सलिल चौधरी और एसडी बर्मन सहित अन्य प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ भी काम किया। 70 के दशक के बाद उनके करियर का कहते हैं कि पतन शुरू हुआ, जो कि एक नियति भी है वक्त के साथ। कहते हैं ना, एक चक्का जो कभी ऊपर की तरफ चलता है, फिर एक दौर ऐसा भी आता है कि कहीं हम नीचे भी जाते हैं उससे। तो यहाँ भी ऐसा हुआ, 70 के दशक तक आते आते करियर का पतन शुरू हो गया था। और फिर 1979 में हेमंत दाने कहते हैं 40 और 50 के दशक में जो गीत उन्होंने सलिल चौधरी साहब के संगीत निर्देशन में गाए थे, उन गानों को दोबारा रिकॉर्ड करवाया और फिर उसे लेजेंड ऑफ ग्लोरी 2 के रूप में जारी भी किया। और मज़े की बात और कमाल की बात ये भी रही कि ये एल्बम भी काफ़ी सफल रहा, वैसे ही जैसे जिस दौर में उन्होंने गीत गाए थे। जब ये रिलीज हुआ तो लोगों ने उसको भी उतना ही सराहा। 80 के दशक के दौरान कहते हैं कि स्वास्थ्य उनका बिगड़ने लगा था, फिल्में अब कम चल रही थीं और अब एक मौका यूँ भी था कि कहीं सेहत का दौर भी थोड़ा डाउन होता चला गया। 1989 में हेमंत कुमार साहब माइकल मधुसूदन अवार्ड लेने ढाका गए थे, कहते हैं जहाँ उन्होंने एक संगीत समारोह का हिस्सा भी बने, उसका हिस्सा भी उन्होंने लिया। पर जब वो वहाँ से लौटकर भारत आए, नियति का एक जो कहते हैं ना दंश, आप उसको बोल सकते हैं कि यहाँ पड़ा उनके ऊपर दिल के दौरे के तौर पर। और फिर हेमंत कुमार, जो कि भारतीय सिने जगत की एक बहुआयामी शख्सियत रहे, जिन्होंने न केवल गीत गाए, संगीत रचनाएं की, बल्कि तमाम सारी फिल्मों का निर्देशन भी किया, हमसे, आपसे, सबसे हमेशा हमेशा के लिए कहीं जुदा हो गए। लगभग 5 दशक तक अपने मधुर संगीत से श्रोताओं को एक अलग तरीके का आनंद, आप अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, जो उनके गीतों के जरिए डुबो दिया करता था, देने वाला महान संगीतकार और पार्श्व गायक और निर्माता निर्देशक इस दुनिया से जा चुका था। लेकिन आप भी जानते हैं और हम भी कि ऐसी शख्सियतें कहीं नहीं जाती। अच्छा, जब वो गए 26 सितंबर का वो दिन, देव साहब से भी कहीं कनेक्ट होता था। और 1989 26 सितंबर इस दुनिया से वो हमेशा हमेशा के लिए जा चुके थे। लेकिन अगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछेंगे तो दिल से आवाज़ फिर यही आएगी कि नहीं, वो हैं, हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। उन्हीं का फिल्म का एक गीत मैं आपको सुना रही हूँ, ना ये चांद होगा ना ये तारे रहेंगे, जो कहीं इस बात की बानगी भी है कि भले ही लोग आएं जाएं, रहें ना रहें, लेकिन जो कारवां पीछे छोड़ते हैं ना, वो हमेशा हमारे साथ चलता है। 11:57 का वक्त हो चुका है। रजनीगंधा का ये आखिरी गीत मैं आपको दे रही हूँ, हेमंदा की खूबसूरत सी आवाज़ से सजा हुआ। बर्थ एनिवर्सरी आज रजनीगंधा के इस दौर में हमने और आपने दोनों ने मिलकर इसको जिया है। उम्मीद करती हूँ कि ये कार्यक्रम आपके दिल के करीब रहा होगा और वो तमाम सारे लोग जो आज मेरे साथ जुड़े हैं, जो आज के इस सफ़र का हिस्सा बने हैं, दिल से धन्यवाद। अमन, रोशनी, अहमद, अभी, अवस्थी, वारिस अली खान साहब, कुलदीप कुमार, प्रिंसी, वर्जीश एंड यस सिद्धांत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज के सफ़र का हिस्सा बनने के लिए। और आज के इस आखिरी गीत के साथ मैं लूँगी आपसे इजाज़त, फिर मिलने के लिए दोबारा रजनीगंधा के इसी दौर में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर।

नमस्कार। रात के 12 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश में बढ़ते तापमान और जारी लू की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षा परिषद के अधीन आने वाले और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 24 जून तक बढ़ा दिया है। प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रतिवर्ष 20 मई से 24 जून तक रहेगा और नियमित शैक्षणिक गतिविधियां 25 जून से पुनः आरंभ होंगी। ये निर्णय बच्चों को भीषण गर्मी से बचाने और नए शैक्षणिक सत्र की सुचारू और व्यवस्थित शुरुआत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि मऊ, मधुबन तथा पूरे पूर्वांचल की रेल सुविधाओं को सुदृढ़ एवं जनोपयोगी बनाने के लिए उनके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शर्मा ने बताया कि हाल ही में उन्होंने पूर्वांचल की रेल सेवाओं के विस्तार एवं यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रेल मंत्री से कई महत्वपूर्ण मांगें की थीं, जिन्हें रेल मंत्री ने सहर्ष स्वीकार किया था। उन्हें अब धरातल पर उतारने की दिशा में तेजी से कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी मुहर्रम को लेकर कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि ये मातम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं। मुहर्रम के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन, नई परंपरा की शुरुआत तथा कान फोड़ू, डीजे, ढोल, ताशों के अनियंत्रित प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने शांति भंग करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रवेश पत्र खाने पर किराए में 50% छूट देने की घोषणा भी की है। भाजपा लखनऊ महानगर द्वारा चलाए जा रहे विशेष जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत आज राजाजीपुरम में ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉ. के लक्ष्मण, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं मंत्री नरेंद्र कश्यप, भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने वरिष्ठ जनों एवं प्रबुद्ध नागरिकों से संपर्क कर मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। और अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:12 पर और सूर्यास्त शाम 7:01 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम रेडियो प्रसारण सेवा का एक लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:50 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।